मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 27 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा के कार्यक्रमों के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र विशाल। शुभ प्रभात।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के

0: अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं समूह स्वर में देशगान से।

भारतीय संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सूरदास की रचना अंबर कुमार के स्वर में।

0: आज की वंदना अब यहीं पर संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत डॉक्टर उमा शंकर नगाइच का आलेख। वाचक है अरविंद सोनी।
1: भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारा देवता है। अर्थात अतिथि को देवता के तुल्य सम्मान दो। तैत्तरीय उपनिषद में माता पिता एवं आचार्य के साथ साथ अतिथि को भी देवता के समान सम्मान देने का उपदेश दिया गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव एवं अतिथि देवो भव। अतिथि में तिथि शब्द आया है, आ धन तिथि, आ यानी नहीं, तिथि दिन या समय, अर्थात जिनके आने की कोई तिथि दिन या समय निश्चित या पूर्व निर्धारित न हो, वो अतिथि हुआ जो अचानक अकस्मात उपस्थित हो जावे। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इस विषय का विस्तृत विवेचन करते हुए लिखा है, अतिथि उसको कहते हैं जिसकी कोई निश्चित तिथि न हो। अथर्व वेद में कहा गया है, एशवा अतिथिर्यच्छो त्रियस्तस्मात् पूर्वो नाशनीयात्, अतिथि वेद विद ब्राह्मण के तुल्य है, इसलिए उससे पहले गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार, संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोद के अन्नम चैव यथाशक्ति संस्कृत्य विधिपूर्वकम् तृणानि भूमि रुदकम् वाक चतुर्थी च सुनृता

0: एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचनः। मनुस्मृति के अनुसार आए हुए अतिथि के लिए यथाशक्ति आसन, जल और अन्न सत्कृत करके विधि पूर्वक दें। तृणासन, विश्राम के लिए स्थान, जल और मीठा बोल, इन चार बातों की कमी तो सत्पुरुषों के घर में कभी नहीं होती। कठोपनिषद में अतिथि सत्कार के महत्व का प्रतिपादन करते हुए आचार्य यम की पत्नी उनसे कहती है, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चा इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्चा सर्वान् एतद् व्रंगते पुरुषस्याल्प मेधसो यस्या नश्नन वसति ब्राह्मणो गृहे। घर आए अतिथि का समुचित आदर सत्कार न होने पर मनुष्य की आशा, अज्ञात प्राप्त वस्तु की चाहना, प्रतीक्षा, ज्ञात प्राप्य वस्तु की चाहना, संगतम, सत्संगति से प्राप्त होने वाला फल, सुनृताम, प्रिय वचन बोलने का फल, इष्ट, यज्ञ का सुफल, आपूर्त, समाज के कल्याणार्थ किए कर्मों का फल, संतान और पशु आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर यमाचार्य ने अपने घर पर 3 दिन तक भूखे रहने वाले ब्राह्मण अतिथि को प्रसन्न करने के लिए नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहा। इस पर नचिकेता ने यमाचार्य से पितृदोष, स्वर्ग सुख की साधना तथा आत्मज्ञान के लिए 3 वरों की याचना की। गृहस्थ व्यक्ति से अन्न, जल एवं आवास आदि सुविधाओं का लाभ लेने वाले अतिथि का अनिवार्य कर्तव्य सुनिश्चित करते हुए कहा गया है कि यदि अतिथि गृहस्थ के घर 1 दिन या रात्रि विश्राम करे व अन्न जल का सेवन करे, तब उस सद्गृहस्थ की कल्याण कामना करते हुए उसे सत्य एवं धर्मयुक्त ज्ञान का उपदेश अवश्य करें, अन्यथा वो अतिथि पाप का भागी होगा। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार को यज्ञ के समान पुण्य कर्म माना गया है। अकस्मात घर पर आ जाने वाले अतिथि का सेवा सत्कार करना अतिथि यज्ञ कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में अतिथि यज्ञ का विस्तृत विवेचन करते हुए कहा है, अब 5वां अतिथि यज्ञ अर्थात जिसमें अतिथियों की यथावत सेवा करनी होती है उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, अतिथि कहते हैं। इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक परंपरा में अतिथि सत्कार को यज्ञ के समान पुण्य कर्म एवं अतिथि को देवता के समान मानते हुए कहा गया है, अतिथि देवो भव।
1: कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अतिथि, इस विषय पर डॉक्टर उमा शंकर नगाइच का आलेख, वाचक थे अरविंद सोनी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध रामकथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सामयिक चर्चा। विषय है ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ ही वातावरण में नमी की कमी होने लगती है, तेज हवाएं और लू चलने लगती हैं। इन सभी क्रियाओं से खेत में सिंचाई द्वारा दिया गया पानी बाष्पीकरण और पादप सर्जन द्वारा नष्ट होने लगता है। फसलों में पानी की कमी महसूस होने लगती है। सिंचाई जल का महत्व देखते हुए सिंचाई के लिए जो नालियां बनाई जाएं, वह कम चौड़ी और गहरी बनाई जाएं। नालियां अगर पक्की बना दी जाएं तो और अच्छा रहता है, जिससे पानी का रिसाव नहीं हो पाता है। नालियां बनाते समय हल्का ढलान अवश्य रखें, जिससे नालियों में पानी न रुकने पाए और न ही रुक रुक कर बहे। नालियों में जो खरपतवार घास उगाते हैं, उनके द्वारा भी पानी का नुकसान होता है। समय समय पर खरपतवारों को हटाते रहें। फसल में पानी फसल की आयु और फसल की जल मांग के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। फसल में पौधे छोटे होने पर हल्की सिंचाई करें और जब पौधे बड़े हो जाएं तो अधिक पानी दें। कुछ फसल के पौधे जिन्हें सूखा सहन करने की क्षमता अधिक होती है, उनमें हल्का और अधिक अंतराल के बाद सिंचाई करें। यदि पौधे दिन के समय मुरझाए हुए और उनकी पत्तियां नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई दें, जब पौधों की स्थिति देखकर समझ लेना चाहिए कि भूमि में नमी की कमी है। भूमि के लक्षण देखकर भूमि का फटना, मिट्टी का भुरवापन देखकर सिंचाई करें। प्रत्येक फसल पानी की कमी के प्रति अपने जीवन की कुछ अवस्थाओं में दूसरी अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती है। फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर अवश्य सिंचाई करें, जिससे फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। गर्मियों के मौसम में सिंचाई सामान्यतः एक सप्ताह के अंतराल पर करते हैं। फसल में पानी कितनी गहराई पर दें, सिंचाई की गहराई, भूमि की किस्म, भूमि में उपस्थित ढलान उगाई जाने वाली फसल पर निर्भर करता है। यदि सही विधि, सही समय और सही मात्रा में पानी देकर हम फसलों से काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। सिंचाई कभी भी करें और कोई भी मौसम हो, सिंचाई हमेशा यह ध्यान रखकर करनी चाहिए कि पानी का अधिक से अधिक सदुपयोग हो और कम से कम दुरुपयोग। फसल में सिंचाई रात के समय या सुबह शाम के समय करनी चाहिए। इस समय धूप भी कम रहती है और हवा भी कम चलती है, जिससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है। जहां पर भूमि ढलान वाली हो, वहां पर स्प्रिंकलर विधि अपनानी चाहिए, जिससे पानी की बचत होती है। जहां पर फलदार पौधे लगाए हों, वहां पर ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करना चाहिए, इससे भी पानी की काफी बचत होती है। बॉर्डर विधि से फसल में सिंचाई करने पर प्रत्येक बॉर्डर में 75 से 80% तक पानी पहुंच जाने पर बॉर्डर बंद कर देना चाहिए। शेष भाग की उपस्थित बॉर्डर में पानी से ही सिंचाई की जा सकती है। पूरे खेत में पानी एक समान लगे, इसलिए सिंचाई आखिरी वाले बॉर्डर से शुरू करनी चाहिए। इस क्रम से सिंचाई करते ऊपर आते जाएं, जिससे पानी कहीं कम कहीं अधिक की समस्या नहीं आती है। गर्मी के मौसम में पानी के महत्व को देखते हुए फसल की सिंचाई करें और सावधानी रखें तो कम पानी में अधिक फसल की सिंचाई की जा सकती है और अधिक से अधिक फसलों से उत्पादन लिया जा सकता है।
0: कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई प्रबंधन। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। पहले सुनिए ये जानकारी। यूपीएससी एग्जाम से जुड़ी ये सूचना आप सभी के लिए। लोक सेवा आयोग यूपीएससी नई दिल्ली की ओर से ये सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन आज किया जाएगा। शहर के 21 परीक्षा केंद्रों पर कुल 6652 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन बैग तथा किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का कोई भी सामान नहीं रखा जाएगा। परीक्षा कक्ष में जूते मोजे पहनकर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्लीपर व सैंडल पहनकर ही जा सकेंगे। साथ ही पारदर्शी पानी की बोतल अपने साथ ले जाने की अनुमति रहेगी। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। परीक्षा की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सभी 21 परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को सुबह 8:00 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर कार्यालय ग्वालियर के कक्ष क्रमांक 113 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ये कंट्रोल रूम 24 मई को सुबह 7:00 बजे से परीक्षा समाप्ति तक निरंतर कार्यशील रहेगा। परीक्षा संबंधी किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0751244-6214 पर संपर्क किया जा सकता है।

0: की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: ए भाई,
5: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
6: ये था सूचना परक कार्यक्रम दर्पण का आज का अंक। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। संस्कृत में
7: अथवार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सह प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतॄणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका

0: अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्य प्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामी सप्त दिवस पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े पांचवें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड

0: का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये
2: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं। प्रातः 7:20 पर श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात और प्रातः 8:15 मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज कलाकार होंगे रतन लाल कुशवा व साथी। आप सुनेंगे इनके गाए लोकगीत। सूचनाओं और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का प्रसारण होगा प्रातः 9:00। प्रातः 9:30 सिंधी कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रातः 10:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। दिन में 11:00 से इस सभा के शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होंगे, जिनके अंतर्गत दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होगा। दिन में 1:30 पर लोक संगीत और दिन में 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम मुस्कान दिन में 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 5:00। इस सभा के भी सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही प्रसारित किए जाएंगे, जिनमें 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होगा। 5:33 पर श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी आप हमारे केंद्र से सुनेंगे, जिसमें आज चर्चा के विषय होंगे दांपत्य जीवन में मधुरता रखें और प्रधानमंत्री आवास योजना। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता गर्भावस्था में ध्यान देने योग्य बातें। वार्ताकार होंगी डॉक्टर प्रतिष्ठा डालमिया। रात्रि 8:00 से इस सभा के दूसरी सभा के शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही प्रसारित होंगे, जिनमें रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। रात्रि 8:30 फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिलाते हैं, आज प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज कलाकार होंगे रतनलाल कुशवाहा व साथी। आप सुनेंगे इनके गाए लोकगीत।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और जनमानस को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए प्रत्येक नगर में गीता भवन के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित और आधुनिक शहर बनाने की घोषणा की।
1: हमने अपने बच्चों के प्रोत्साहन को देने के लिए उनके साथ भी समय बिताया। विकास के लगभग 550 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण किया। 1,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति सिंगरौली में हुई है। आने वाले समय में सिंगरौली सुव्यवस्थित शहर में सबसे अच्छा शहर बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: इससे पहले डॉक्टर यादव ने 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पहले रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन आने वाले कुछ समय में यह रक्षा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरेगा। उन्होंने कल महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सांवली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
2: सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि COVID-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं का 20,680 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। टुषा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंच गई। इससे पहले आरोपी समर्थ सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी पर कल प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने समस्त जिलों में गंगा दशमी पर्व पर आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा में और अन्य मंत्री जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शिवपुर में भी कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जिले भर में दीपदान, जल स्रोतों का पूजन, कलश यात्राओं के आयोजन के साथ रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले के ग्राम कसीहवा में शॉर्ट सर्किट से हुए एक हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु की घटना पर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि मृत बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी सीधी की ओर से परिजनों को 20-20 हज़ार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दे दी गई है। वहीं रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के सागौर ग्राम में कल 3 बालिकाओं की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वे गांव के पास एक कुएं पर नहाने गई थीं। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। रांची में 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नितिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नितिका ने 4.10 मीटर की शानदार छलांग लगाकर न केवल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया बल्कि एशियन गेम्स 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क भी हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने 9 से 12 जुलाई तक ऑर्डोस चीन में आयोजित होने वाली प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नितिका आकरे को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आईपीएल में लखनऊ में खेले गए मुकाबले में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2:30 बजे और दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। गुना जिले में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में भेल दशहरा मैदान पर कल मशहूर संगीतकार एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। रहमान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खंडवा से होकर गुजरने वाली जयपुर और हैदराबाद के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब स्थायी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा। गुना के जिला पंचायत विश्राम गृह में 26 मई को युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्त्री रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। तुषार शर्मा की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। ये समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका रेडियो मित्र विशाल। श्रोताओं, आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक जाने माने संगीतकार के संगीत से सजे कुछ यादगार फिल्मी गीत, और आज इनका जन्मदिन भी है। श्रोताओं, 70 के दशक में जब हर तरफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी और RD वर्मन जी जैसे दिग्गज संगीतकारों का डंका बज रहा था, अचानक उस समय तीन संगीतकारों ने अपने सुरीले संगीत से तत्कालीन सिने संगीत परिदृश्य में हलचल मचाई। इनमें से एक थे प्रकृति की गोद में रचे बसे मधुर संगीत देने वाले रविंद्र जैन, दूसरे भारतीय और पाश्चात्य संगीत का युक्ति संगत प्रयोग करने वाले बप्पी लहरी, और तीसरे मधुर लहराती बलखाती धुनों के विशेषज्ञ राजेश रोशन। जी हाँ, राजेश रोशन, जिनका आज जन्मदिन है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं के संगीत से सजे कुछ यादगार गीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म देश परदेश से, स्वर है किशोर कुमार का।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, राजेश रोशन, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से अपनी बहुमुखी प्रतिभा प्रमाणित कर दी थी, फिल्म थी कुंवारा बाप। फिल्म के सभी गीत अपने आप में विविधता लिए हुए थे। उनमें से एक गीत समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग पर फिल्माया गया, ये प्रयोगशील गीत था। तो आइए अपने इस कार्यक्रम में सुनते हैं ये यादगार गीत। स्वर है मोहम्मद रफ़ी, महमूद और साथियों का, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का।

0: हाय हाय हमारे सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के, ये माँ को दे दू मंदिर में रख दू। पंडे ने देखा वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई दी लाख दुहाई, वो एक न माना पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम न आया। सड़कों पर बेचा गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला कचरे में डाला, फिर बारिश आई अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की मेरी छाती धड़की, एक तीर लगा मैं वापस भागा।

0: आगे क्या बोलूं यारा मैं पापी दिल से हारा,
1: आगे क्या बोलूं यारा मैं पापी दिल से हारा।
0: बेटा तेरे किस्से पे दिल मेरा रोए, दिए तेरा मुन्ना भाई हो, दिए तेरा

श्रोताओं, कुंवारा बाप के बाद राजेश रोशन की संगीत से सजी फिल्म जूली आई और इस फिल्म के आते ही वे संगीत जगत में छा गए। इस फिल्म के लिए उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। तो आइए कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म जूली से ये गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं और आवाज़ किशोर कुमार की।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: श्रोताओं, फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने संगीतकार राजेश रोशन के संगीत से सजे कुछ यादगार गीत। हम आपको बता दें, आज इनका जन्मदिन है। यदि हम बात करें इनके व्यक्तिगत जीवन की, तो श्रोताओं बता दें कि राजेश रोशन जाने माने संगीतकार रोशन के बेटे हैं। उनके बड़े भाई राकेश रोशन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, जो अपने समय के प्रसिद्ध अभिनेता भी रहे हैं। अभिनेता ऋतिक रोशन राजेश रोशन के भतीजे हैं। राजेश रोशन बचपन में संगीतकार नहीं बल्कि एक सरकारी नौकर बनना चाहते थे, पर पिता के देहांत के बाद उन्होंने संगीत में रुचि लेना शुरू कर दिया। राजेश रोशन की पहली गुरु उनकी माँ इरा रोशन थी। पिता की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने अपने नाम के पीछे से नागरथ सरनेम लगाना छोड़ दिया। उन्होंने अपने पिता को याद रखने के लिए उनके ही नाम को अपना सरनेम बना लिया। राजेश रोशन, राकेश रोशन और ऋतिक रोशन, ये तीनों आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। श्रोताओं, फिल्म नटवर लाल का संगीत राजेश रोशन ने ही दिया था। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था। ये मौका उन्हें राजेश रोशन ने ही दिया था। तो आइए सुनते हैं ये यादगार गीत

0: कई साल पहले की ये बात है।
1: बोलो माँ, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ।

श्वेता स्वभाव से विनम्र, सरल और अंतर्मुखी। राजेश जी के पास प्रतिभा तो थी, लेकिन निर्माताओं के पास जाकर काम मांगना और इस काम को हासिल करने के लिए नए नए पैंतरे आजमाना उनकी फितरत नहीं थी, जैसा कि सिनेमा का दस्तूर है। आउट ऑफ साइट यानी आउट ऑफ माइंड, फलतः उनके पास काम सीमित हो गया। और सबसे निराशाजनक बात ये थी कि उनका जो गति पहले चल रही थी, अब वो थोड़ी सी कम हो रही थी। अपनी शैली से वे विमुख से लग रहे थे। 90 का दशक आते आते वे केवल अपने भाई राजेश रोशन की फिल्मों के संगीतकार बनकर ही रह गए। हालांकि इन फिल्मों का संगीत भी सिने प्रेमियों के दिनों पर राज कर रहा था। तो आइए सुनते हैं फिल्म कामचोर से इस गीत को, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने संगीतकार राजेश रोशन के संगीत से सजे कुछ यादगार गीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म करण अर्जुन से इस गीत को। आवाजें हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत इंदिवर का है और

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। इसके ठीक बाद आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
5: Expanded commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित

0: काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
6: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान

0: देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी। होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
4: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared US perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President, Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company, Jeff Shockey, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling, supply chains, innovation and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister JP Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June.

0: Headlines once again. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against four accused in Nashik DCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderweer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं रतन लाल कुशवाह व साथी। आप सुनेंगे इनके गाए लोकगीत। इनके साथी सदस्य हैं मन्नू, अमर सिंह और महेंद्र कुमार। कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं ये लेद।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रतन लाल कुशवाहा व साथियों के गाय लोकगीत। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं ये चौकड़ियाँ।

इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। आज के कार्यक्रम में कलाकार थे रतनलाल कुशवाहा साथी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:58 होने को है। इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होंगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह में कहा कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सांवली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत आने वाले कुछ समय में रक्षा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरेगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मसौदा नियमों पर अगले महीने की 30 तारीख तक आपत्तियां या सुझाव मांगे हैं। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम

0: खास खबरें।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए सूचनाओं और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर लेकर आज मैं हूं आपका रेडियो मित्र विशाल। सबसे पहले आपके हाल। तो भाई आजकल जिस तरह का मौसम है इससे तो सभी के हाल बेहाल ही हैं। भीषण गर्मी का दौर जारी है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह की पूर्वानुमान लगाया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मौसम और ये भीषण गर्मी का दौर थमे और राहत की बूंदें हमें सराबोर कर दें और हमें थोड़ी सी सुकून दें। गर्मियों का मौसम है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर ही बिताएं, अपने अपनों के साथ बिताएं। और फिर जब आप घर पर होते हैं और अपनों का साथ होता है तो वैसे भी संडे हो या कोई अन्य दिन सब कुछ अलग ही हो जाता है। तो अच्छे अच्छे से इन दिनों को मनाइए और साथ ही साथ गर्मी में बाहर जाने से थोड़ा सा बचिए। अगर बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। तो बात तो ये तो है, बात है मौसम की, लेकिन यदि हम आज की बात करें तो आज एक ख़ास दिन हम सभी मना रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि परिवार के साथ हर दिन खास हो जाता है, तो आज परिवार से ही जुड़ा एक दिवस मनाया जा रहा है। आज है इंटरनेशनल ब्रदर्स डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस। श्रोताओं, भाई वो रिश्ता है जो बिना कहे हर दर्द समझ लेता है। बचपन की शरारतों से लेकर जिंदगी की जिम्मेदारियों तक भाई हमेशा साथ चलने वाला साथी होता है। कभी दोस्त बनकर हंसाता है तो कभी परिवार की स्थिति को बेहतर बनाने में भाई ही सबसे आगे होता है। भाई के साथ सिर्फ रिश्ते का नहीं, भरोसे और सुरक्षा का भी एहसास होता है। हम जिंदगी में चाहे जितनी भी बदल जाएं, लेकिन भाई के कंधों पर रखा हाथ हमेशा अपनेपन का एहसास और मुश्किल परिस्थिति से निपटने का सहारा बनता है। आज के दौर में जहां भाई भाई के रिश्तों में दूरियां बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन आज भी परिवारों में भाइयों की मेहनत और त्याग को समझते हुए उनके प्रति सम्मान और परिवार के साथ बनाए रखने की भावना बनी हुई है। बाधाओं के आने के बावजूद रिश्तों की गहराई को बनाए रखना उसकी मजबूती का प्रमाण है और जिसे आज कई सारे परिवार निभा भी रहे हैं। श्रोता, भाई केवल एक रिश्ता नहीं है बल्कि जीवन की हर राह में साथ चलने वाला वो साथी है जो बिना कहे हमारे हर दर्द को समझ लेता है। कभी डांट में प्यार छुपा होता है तो कभी छोटी नोकझोंक में अपनापन। मुश्किल समय में जो सबसे पहले साथ खड़ा हो वो अक्सर भाई ही होता है। और इसी रिश्ते को मजबूती देता आज ये दिवस हम मना रहे हैं। तो आप भी इस दिवस पर अपने भाइयों के लिए कुछ ना कुछ तो आज कर ही सकते हैं। और वैसे भी आज रविवार है, तो आप भी इस दिवस पर अपने भाइयों के साथ आज का दिन बिताइए और इन यादगार लम्हों को जिंदा दिली के साथ जिए। श्रोताओं, यदि हम बात करें हमारे धर्म ग्रंथ की, श्री रामचरितमानस के में भारतृ प्रेम यानी भाइयों से जो प्रेम है उसके महत्व पर कई सारे दोहे रचे गए हैं। भरत सरिस प्रिय को जग माही, एहि सगुन फल दूसर नाही। भगवान राम के लिए भरत जैसा प्रिय इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। वही राम करही भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखा वही नीति। यानी भगवान राम अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अनेक प्रकार की अच्छी

अच्छी बातें तथा नीति सिखाते थे। यानी इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि जब भाइयों में आपस में प्रेम होता है तो वो नीतिगत बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अपने भाई को प्रेम के साथ साथ कुछ अच्छी नीतिगत बातें भी सिखाते हैं ताकि उनके भाई आगे जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़ें। जब रामचरितमानस में मेघनाथ की शक्ति लगने पर लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तब भगवान राम व्याकुल हो जाते हैं और ये दोहा इसी बात को उजागर करता है, जो जनतेऊ बन बंधु बिछ्योहु पिता वचन मन त्येऊ नहीं ओहु। अर्थात मुझे यदि पहले से पता होता कि वन में भाई से वियोग होगा तो मैं पिता की आज्ञा भी नहीं मानता। तो ये तो जो विचार रखे गए हैं तुलसीदास जी ने, इसमें ये बताया गया है कि भगवान राम भी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो कितने अधिक विचलित हो जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि यदि मुझे ऐसा पता होता कि मेरे भाई से मेरा वियोग होगा तो मैं अपनी पिता की आज्ञा को भी नहीं मानता। यानी इस प्रकार का प्रेम भाइयों के प्रति रामचरितमानस में उजागर किया गया है। वहीं ये भी बताया गया है कि यदि भाई के साथ नहीं मिले तो आप किस तरह सब कुछ खो सकते हैं। जैसे कि रावण जब अपने भ्राता विभीषण की बात नहीं मानते हैं, उसका अनादर करते हैं और उसे अपने देश से निकाल देते हैं, तब वही भाई के कारण, उसी भाई के कारण वे काल का त्रास बनते हैं। यानी इस बात को इंगित किया गया है कि भाई के समान कोई नहीं है। और आज का दिवस, जैसा कि आप सभी आज इंटरनेशनल ब्रदर्स डे है, भाई दिवस मना रहे हैं, तो आज के दिन तो भाइयों के साथ बेहद ज़रूरी है। और आज के दौर में, आज का जो हमारा परिवेश है उसमें भी बेहद ज़रूरी है कि हम इस बात के महत्व को समझें कि हमें सब कुछ मिल सकता है लेकिन हमारे जो खास हैं, हमारे जो अपने हैं, वो हमें कभी नहीं मिल सकते। इसलिए इस रिश्ते की आत्मीयता को समझें और अपने भाइयों के साथ प्रेम करें। तो कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसा ही गीत सुना रहे हैं जिसमें भाई आपस में एक दूसरे के मित्र भी हैं और एक दूसरे को समझाइश भी दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। यहीं पाओगे महशर में जवां मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ, है हिंदुस्तान मेरा। तेरी खिदमत में ऐ भारत, ये सर जाए ये जा जाए, तो समझूंगा कि मरना है हयाते जादवा मेरा। श्रोताओं, ये गज़ल उस वीर स्वतंत्रता सेनानी की है जिन्होंने देश को सर्वोपरि माना और हंसते हंसते देश के खातिर फांसी के फंदे पर झूल गए। जी हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक करतार सिंह सराभा का जन्म सन 1896 में आज ही के दिन पंजाब के लुधियाना में हुआ था। सन 1912 में उच्च शिक्षा के लिए ये अमेरिका गए। वहाँ भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव ने इन्हें झकझोर दिया, जिसके बाद वे गदर पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने गदर पत्रिका का संपादन भी किया और सन 1914 में भारत लौटकर ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया और आदर्श बन गए उन वीर सेनानियों के जो देश पर मर मिटने के लिए तैयार थे। श्रोताओं, करतार सिंह सराभा जी, जिन्हें मात्र 19 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ाया गया था, और प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह उन्हें अपना आदर्श भी मानते थे। 16 नवंबर सन 1915 को सराभा हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। जज ने उन्हें मुकदमे का निर्णय सुनाते हुए कहा कि इस युवक ने अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक अंग्रेज शासन को उलटने का प्रयास किया, इसे जब और जहां भी अवसर मिला अंग्रेजों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया। इसकी अवस्था बहुत कम है किंतु अंग्रेजी शासन के लिए बड़ा भयानक है, ऐसे विचार थे अंग्रेजों के। उनके मित्र परमानंद उनके बारे में बताते हैं कि सराभा के जेल के जीवन में सराभा को कोठरी में जब भी हथकड़ियों और बेड़ियों से युक्त रखा जाता था तो उनसे सिपाही बहुत डरते थे। उन्हें जब बाहर निकाला जाता था तो सिपाहियों की बड़ी टुकड़ी उनके आगे पीछे चलती थी। उनके सिर पर मृत्यु सवार थी किंतु वे हंसते मुस्कुराते रहते थे। सराभा के संबंध में उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने सराभा को अमेरिका में देखा। वे गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुख्य थे, बड़े साहसी और वीर थे। जिस काम को कोई भी नहीं कर सकता था उसे करने के लिए सराभा हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें कांटों की राह पर चलने में सुख मालूम होता था तो मृत्यु को गले लगाने में आनंद प्राप्त होता था। सराभा जब अमेरिका से जहाज में बैठकर भारत आ रहे थे तब रास्ते में ही उनके बहुत से साथी गिरफ्तार कर लिए गए, पर वे किसी भी तरह बचकर पंजाब आ गए और कुछ ही समय में अपने देशभक्ति एवं वीरता के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उन्होंने पंजाब के क्रांतिकारियों को संगठित किया और चारों ओर घूम घूम कर फौजियों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। यदि भेद न खुलता तो सारे भारत में एक साथ क्रांति की अग्नि की लपटों में ब्रिटिश शासन जलकर राख हो जाता। सराभा भी भारत माँ के एक ऐसे लाल थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए असंख्य कष्ट सहे और यहाँ तक कि अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तब उन्होंने ये शब्द कहे, हे भगवान, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं भारत में उस समय तक जन्म लेता रहूं जब तक कि मेरा देश स्वतंत्र ना हो जाए।

और यही कहते कहते हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे वीर सपूत का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी जयंती पर हम नमन करते हैं ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी को। और अब हम बात करते हैं आज की, तो आज 24 मई है, आज एक और खास दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रमंडल दिवस। श्रोताओं, हर साल मार्च के दूसरे सोमवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जबकि भारत और कुछ अन्य देशों में इसे विशेष रूप से 24 मई को मनाया जाता है। 24 मई को महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन 1819 में होता है। ये दिन उस 56 स्वतंत्र देशों के संगठन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बीच शांति, समानता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इसे पहले एम्पायर डे के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत सन 1902 में महारानी विक्टोरिया के निधन के बाद उनके सम्मान में की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया। इस दिन का मुख्य लक्ष्य सभी सदस्य देशों के लोगों को एकजुट करना, साझा मूल्यों का सम्मान करना और वैश्विक भाईचारे तथा मानवता को प्रोत्साहित करना है। साथ ही आज एक और खास दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। हर साल 24 मई को यह दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 मई 2024 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। श्रोताओं, मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बकरी की प्रजाति है मारखोर। ये अपने बड़े घुमावदार सींगों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मारखोर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है सांप खाने वाला जीव। ये मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाए जाते हैं। भारत में ये मुख्य रूप से पीर पंजाल और काजीनाग, जो कि जम्मू कश्मीर है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम इस जीव के पर्यावरण संतुलन में महत्व को समझें और इसके बचाव के लिए आगे आएं। तो ये तो थी आज से जुड़े, आज के दिवस से जुड़ी कुछ रोचक बातें। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। और अब हमारे युवा साथियों के लिए एक जानकारी, प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हुई ये जानकारी है। विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अब सुनहरा अवसर है। राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सत्र 2026-27 यानी जनवरी से जून 2026 के लिए पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर एवं पीएचडी अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदन पत्र 25 मई को शाम 6 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये छात्रवृत्ति योजना प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 20 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें जनवरी जून एवं जुलाई दिसंबर सत्र के लिए 10-10 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। आवेदक का 10वीं एवं 12वीं मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। स्नातकोत्तर एवं पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम 60% अंकों की पात्रता निर्धारित की गई है। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष तथा पीएचडी के लिए 35 वर्ष निर्धारित है। स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष तथा पीएचडी के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित विद्यार्थी केवल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए पात्र होंगे तथा संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश अथवा ऑफर लेटर होना अनिवार्य रहेगा। योजना के तहत शिक्षण शुल्क, वीजा शुल्क, बीमा प्रीमियम, हवाई यात्रा व्यय सहित अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए अधिकतम 40,000 अमेरिकी डॉलर तक की सहायता दी जाएगी। विद्यार्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता, विश्वविद्यालय की रैंकिंग एवं साक्षात्कार के आधार पर मेरिट अनुसार किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी आवेदन पत्र स्वयं, वाहक, डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल में निर्धारित समय सीमा तक जमा कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो ये तो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और अब जैसा कि आज विश्व भाई दिवस है, तो इस दिवस को मनाइए, अपने भाइयों के साथ सुरक्षित घर पर रहिए, क्योंकि बाहर भीषण गर्मी का दौर जारी है, लेकिन उम्मीदों के बादल छाएंगे। इसी आशा के साथ अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचना और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सिंधी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: आयूं उत्तर प्रदेश में थियो। उन्हनि जे पिता जन जो नालो हो मोतीलाल नेहरू जी, जेके हिकु ॼातल सुञातल वकील हुया। उन्हनि जी लंदन जे हीरो स्कूल ऐं कैम्ब्रिज कॉलेज में पंहिंजी बैरिस्टर जी पढ़ाई पूरी कई। 1919 में महात्मा गांधीअ सां उहे प्रेरित थिया ऐं स्वतंत्रता आंदोलन में अची विया। उन्हनि जो असहयोग आंदोलन ऐं नमक सत्याग्रह जहिड़नि घणेई आंदोलन में बि उन्हनि जो सहयोग रहियो ऐं लॻभॻि 10 सालनि ताईं उहे जेल में रहा। 15 अगस्त 1947 खां वठी 27 मई 1964 ताईं देश जा पहिरियां प्रधानमंत्री बि रहिया। उन्हनि देश में IIT, एम्स, इसरो जहिड़ियूं वॾियुनि वॾियुनि संस्थाउनि जी नींव रखी। उन्हनि देश जी अर्थव्यवस्था खे मज़बूत ठाहिण लाइ पंचवर्षीय जहिड़ियूं योजनाउनि खे बढ़ावो ॾिनो। दोस्तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिकु महान लेखक बि हुया। उन्हनि खे ॿारनि सां ख़ासि लॻाव हो ऐं उन्हनि खे ॿार प्यार सां चाचा नेहरू बि चवंदा हुया। इन करे ई उन्हनि जे जनम ॾींहं खे 14 नवंबर खे असां देश में बाल दिवस जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। त दोस्तो, अचो 27 मई उन्हनि जी पुण्यतिथीअ ते उन्हनि जा जेके ॾेखारियल रस्ता आहिनि उन्हनि खे अपनायूं, त उहा ई उन्हनि लाइ सची श्रद्धांजलि हूंदी। दोस्तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जन खे ॿारनि सां प्यारु हूंदो हो। ॿार चाचा नेहरू हुननि खे चवंदा हुआ त अचो इन ई ते ॿुधूं था ॿारनि जो ई सुहिणो गीत आयो फूकड़नि वारो। डोलन राही जन जो ॻायल ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत।
1: आयो आयो आयो यारो मुल्क सॼे में नाले वारो फूक।

0: दोस्तों इन गीत खां पो बुधंदासी ओम प्रकाश टहलियाणी जन जो काव्य पाठ।
1: मेहरबानी कविता, ढो सुठो लगो असा नई तही जहाँ बार मथे था अचन इन प्रोग्राम के कंपेयर था कन।
2: धन्यवाद भाउ।
1: तासा मुखातिब थी मां पेंजो कविता पाठ प्रारंभ तो कया।
2: बिल्कुल।
1: गजल पेशा मतलाए नेणन जादर नेठ दरे, नेणन जादर नेठ दरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे।
2: वाह वाह।
1: नेणन जादर नेठ दरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। शेर दिसो, ख्वाब दिसण जो ढंग न हो, ख्वाब दिसण जो ढंग न हो, रहयुस निंड खां परे परे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। नाहक पहंजन जी गोला, नाहक पहंजन जी गोला, केर जिए गद केर मरे, नाहक पहंजन जी गोला, केर जिए गद केर मरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। ही शेर दिसो, उन्य उन्य सदा जिन नजरन में, उन्य सदा जिन नजरन में, तिन सा किन जो हाँ ठरे, उन्य सदा जिन नजरन में, तिन सा किन जो हाँ ठरे। जार विछायण जी साजिश, जार विछायण जी साजिश, सयादन सा केर करे,
2: तमाम सहनो।
1: जार विछायण जी साजिश, सयादन सा केर करे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। झूना थी व्या रांदीका, झूना थी व्या रांदीका, हिकड़ो न हिकड़ो रोज खरे, झूना थी व्या रांदीका, हिकड़ो न हिकड़ो रोज खरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। मक्ता का पैरी एक बशीर बेब, किन यारन घर माओ दिसी, किन यारन घर माओ दिसी, मुँ जहड़ो हर बार गरे, किन यारन घर माओ दिसी, मुँ जहड़ो हर बार गरे। कविता माओ असा बोलिए के चवंदा याद।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: किन यारन घर माओ दिसी, मुँ जहड़ो हर बार गरे, यार अची वन महफिल में, तो बिन मुहिंजी की नसरे, यार अची वन महफिल में, तो बिन मुहिंजी की नसरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। हाँ पखी घर हलणो आ, हाँ पखी घर हलणो आ, नंढड़ा नंढड़ा पेर भरे, नेणन जादर नेठ दरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे।
2: वाह वाह वाह वाह, तमाम सुहिणी।
1: मेहरबानी कविता, हिकड़ो ही गजल दिसो। याद ईंदे ई बस हली अचजे, याद ईंदे ई बस हली अचजे, दिल न भरजे वरी वरी अचजे, याद ईंदे ई बस हली अचजे, दिल न भरजे वरी वरी अचजे। हाल बीमार जो था रोज पुछो, हाल बीमार जो था रोज पुछो, का दवा भी कदें खणी अचजे,
2: वाह वाह ॾाढी सुंदर।
1: हाल बीमार जो था रोज पुछो, का दवा भी कदें खणी अचजे, दिल न भरजे वरी वरी अचजे। हाय हाय कातिल अदा ऐं बाहे अखियूं, हाय कातिल अदा ऐं बाहे अखियूं, दिल करे थी बरी ठरी अचजे, दिल न भरजे वरी वरी अचजे। ऐं घाव घाव आशिक ॾियण छॾे बि नथो, घाव आशिक ॾियण छॾे बि नथो, हल वरी हिकु दफ़ो मरी अचजे। घाव आशिक ॾियण छॾे बि नथो, हल वरी हिकु दफ़ो मरी अचजे। ऐं ख़ाली पैमानो भरिजी वेंदो वरी, ख़ाली पैमानो भरिजी वेंदो वरी, मैं कदे मां न बुत बणी अचजे।
2: वाह वाह वाह वाह मजो अची वियो।
1: खाली पैमानो भरजी वेंदो वरी, मैं कदे मान बुत बणी अचजे, दिल न भरजे वरी वरी अचजे। ऐं मक्ता है, भल परावा पखी लगन पंहिंजा, भल परावा पखी लगन पंहिंजा, झुंड पंहिंजे फिरी घिरी अचजे, झुंड पंहिंजे फिरी घिरी अचजे, दिल न भरजे वरी वरी अचजे, यादि ईंदे ई बसि हली अचजे। अचो हिकिड़ो ग़ज़ल ॿियो बि ॿुधूं। तुंहिंजी ॻाल्हियुनि खे ॿुधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे, तुंहिंजी ॻाल्हियुनि खे ॿुधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे, डोड़ा तो लाइ बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे, तुंहिंजी ॻाल्हियुनि खे ॿुधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे, डोड़ा तो लाइ बीहण जी कंहिंखे फुर्सत
2: आहे।
1: ऐं ख़ूबसूरत गुल भली वण ते लुॾी केॾो, ख़ूबसूरत गुल भली वण ते लुॾी केॾो, अख खणी तो ॾे ॾिसण जी कंहिंखे फुर्सत आहे, डोड़ा तो लाइ बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे। ऐं भल अदब खे प्यार रखनि जीअरो कलम वारा, भल अदब खे प्यार रखनि जीअरो कलम वारा, पर किताबनि खे पढ़ण जी कंहिंखे फुर्सत आहे, डोड़ा तो लै बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे। ऐं का गिला कंहिंजी न किल किल चोट अखरनि जी, का गिला कंहिंजी न किल किल चोट अखरनि जी, अहिड़ी दुनिया ते वधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे, डोड़ा तो लै बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे। ऐं मज़हबी माण्हुनि, मज़हबी माण्हुनि सिंधियुनि खे छॾियो चीरे, मज़हबी माण्हुनि सिंधियुनि खे ई छॾियो चीरे, घाव गहरनि खे भरण जी
2: कंहिंखे फुर्सत आहे,
1: घाव गहरनि खे भरण जी
2: कंहिंखे फुर्सत आहे,
1: कंहिंखे फुर्सत आहे। ऐं मक्ता आहे, मोह माया खां पखी, मोह माया खां पखी न्यारो सदा रहजे, मोह माया खां पखी न्यारो सदा रहजे, अहिड़ा पर खोले उॾण जी कंहिंखे फुर्सत आहे, अहिड़ा पल खोले उॾण जी
2: कंहिंखे फुर्सत
1: आहे, डोड़ा तो लै बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे। महिरबानी भेण कविता, महिरबानी सभिनी। सिंधी जिंदाबाद।
0: हिन काव्य पाठ खां पोइ ॿुधंदासीं हिकु सुहिणो गीत, सिक आहे या सूर, कमला केसवानी जंजो ऐं सतराम रोहिड़ा जंजो गायल ऐं गोर्धन भारती जंजो लिखियल सी अर्जुन जंजी म्यूज़िक में ॿुधंदासीं सुहिणो गीत।

दोस्तों अचण वारी 28 मई ते ईद उल अजा जैके असा बकरीद जे नाले सां भी जानंदा आहियूं इस्लाम धर्म जो ही तमाम महत्वपूर्ण ॾिण आहे। ही ॾिण असांखे करुणा त्याग सेवा समर्पण ऐं भॻवान जे प्रति समर्पण जो संदेश ॾींदो आहे। दोस्तों छा तव्हांखे ख़बर आहे त भारत सरकार राज्य सरकार सां मिली करे वक़्त वक़्त ते अल्पसंख्यक समुदाय आहिनि उन्हनि जे कल्याण लाइ तमामु योजनाऊं हलाईंदी आहे। इन्हनि योजनाउनि जो मक़सदु इहो आहे त देश में शिक्षा रोज़गार विकास आर्थिक सहायता ऐं समाज जो कल्याण थिए। दोस्तों सरकार हर तबक़े लाइ हर माण्हूअ लाइ अलॻि अलॻि योजनाऊं हलाईंदी आहे। जीअं जेके ॿार पढ़नि था पहिरीं खां ॾहीं क्लास ताईं उन्हनि लाइ अलॻि योजनाऊं हूंदियूं आहिनि। जेके ॾहीं खां वधीक क्लास था पढ़नि उन्हनि लाइ अलॻि योजनाऊं आहिनि। अलॻि अलॻि इस्पतालूं खोलंदियूं आहिनि, अलॻि अलॻि कॉलेज खुलंदा आहिनि, नई रोशनी जहिड़ियूं योजनाऊं जंहिंमें माइयुनि खे उन्हनि खे विकास लाइ उन्हनि खे ट्रेनिंग ॾेई वेंदी आहे जीअं उहे अॻियां वली पंहिंजे पेरनि ते बीह सघनि। सीखो कमाओ योजना जंहिंमें सेखारे करे उन्हनि खे नौकरी ॾेई वेंदी आहे जीअं उन्हनि जे घर जो ख़र्च बि हले। घटि व्याज ते उन्हनि खे पैसा ॾींदा आहिनि अगरि उन्हनि खे पंहिंजो धंधो चालू करिणो आहे, कमु चालू करिणो आहे त उहो बि चालू था करे सघनि। जेके ग़रीब ॿार आहिनि पढ़ी नथा सघनि, जंहिंखे UPSC SSC बैंक जे जहिड़ा एग्ज़ाम जी तयारी करण लाइ उन्हनि लाइ योजनाऊं आहिनि। दोस्तो तमामु अहिड़ियूं योजनाऊं आहिनि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। त दोस्तो चवण जो मक़सदु इहो ई आहे त देश में अगरि कहिड़ो ॿारु पढ़णु चाहे त उन लाइ योजना अलॻि आहे। कहिड़ी माई अगरि चाहे मूंखे कमु करिणो आहे ज़ाइफ़ा त उहो पंहिंजो कमु थी करे सघे। केरु अगरि उधमी आहिनि, नया ॿार आहिनि जंहिंखे लॻे थो की मूंखे पंहिंजो बिज़नेस चालू करिणो आहे पर मूंखे उन बिज़नेस लाइ पैसा कोन्हनि, त गवर्नमेंट उन लाइ योजनाऊं आहिनि चालू कयूं आहिनि। पर दोस्तो सुजाॻी ज़रूरी आहे। योजनाऊं ॾाढियूं आहिनि, असांखे फ़ाइदो तॾहिं मिलंदो जॾहिं असां में सुजाॻी हूंदी। अगरि असांखे ख़बर आहे त फ़र्ज़ु आहे त असां पंहिंजे जेके रिश्तेदार मिट माइट दोस्त यार आहिनि सभिनि में ॿुधायूं कीअं उन्हनि जो फ़ाइदो वठी था सघूं, कीअं उन्हनि जा पोर्टल आहिनि, कीअं उन्हनि जा फॉर्म भरे करे उन्हनि जा जेको फ़ाइदो आहे मिली सघे थो। दोस्तो इन ॼाण खां पोइ ॿुधंदासीं भगवंती नावाणी जंहिंजो ही सुहिणो गीत सारे जग जा, गोवर्धन भारती जंहिंजो लिखियलु, सी अर्जुन जंहिंजी म्यूज़िक में, सिंधुअ जे किनारे फिल्म जो ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत भगवंती नावाणी जंहिंजो।

दोस्तो, हिन गीत सां गॾु ई अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थियो आहे। पर दोस्तो, हलंदे हलंदे मां हिकु नंढी हिदायत तव्हांखे ॾियणु चाहींदसि त ॿाहिरि ॾाढी उस आहे, लू जा थपेड़ा था हलनि। दोस्तो, सावधानी रखो, पंहिंजो ख़्यालु रखो जेतिरो थी सघे, अगरि ॾाढो ज़रूरी न आहे। दोस्तो, मजबूरी आहे, नौकरीअ ते वञिणो आहे, कम ते वञिणो आहे, अगरि ज़रूरी न आहे त घर खां ॿाहिरि न निकिरो, पंहिंजो ध्यानु रखो। हिन सां गॾु ई अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थियो। वरी जल्द मिलंदासीं हिकु नए समाचार सां, हिकु नई ख़ुशीअ सां। जेसिताईं पंहिंजी रेडियो साथी कविता चांदवानीअ खे ॾींदा इजाज़त। जय झूलेलाल, सभ जो भलो।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर रोजाना सुनिए 5:02 पर युववाणी। युवा प्रस्तोताओं और रेडियो एंकर्स का शानदार अंदाज, युवा ख्वाबों को साकार करती सक्सेस स्टोरीज, युवा मनोभावों को व्यक्त करती कविता, कहानियां और देश विदेश की रोचक जानकारी, साथ ही दिलकश फिल्मी गाने, तो सुनना ना भूलिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये

दतिया जिले में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और दोपहर के समय सन्नाटा छा जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी के वर्मा ने बताया है कि अत्यधिक गर्मी और लू जानलेवा हो सकती है। गर्मी के दिनों में धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद और हल्के रंग के ढीले सूती वस्त्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन करके एवं पानी पीकर ही घर से बाहर निकले। बाहर जाते समय भी अपने साथ पानी रखें और गर्मी के दिनों में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्हें धूप में घर से बाहर न निकलने दें और समय समय पर पानी पीने के लिए प्रेरित करें। दतिया जिले में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन कल किया जाएगा। युवाओं से दस्तावेजों के साथ इसमें शामिल होने की अपील की गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में जिले की कानून व्यवस्था के संबंध में 28 मई को एक बैठक का आयोजन भी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा वृद्धजनों के सम्मान, मनोरंजन, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल जिले में की गई है। रेडक्रॉस भवन में संचालित आनंद घर डे केयर सेंटर में वृद्धजनों के लिए सप्ताह के सातों दिन अलग अलग विभागों के समन्वय से विभिन्न रचनात्मक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा रतनगढ़ माता मंदिर रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक जांच और छापामार कार्यवाही बीते दिनों की गई। टीम के द्वारा संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान कई वाहन चालकों द्वारा खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। वे बिना अनुमति और बिना वैध परिपत्र के खनिज का अवैध परिवहन, उत्खनन और भंडारण कर रहे थे। अभियान के दौरान प्रशासन की टीम ने ग्राम इंदरगढ़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1500 घन मीटर रेत जब्त की। बाद में इन अवैध रेत भंडारों को नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई। दतिया स्थित जिला जेल में मुलाकात कक्ष में लीगल एड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। स्थापित हेल्प डेस्क में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक लीगल एड डिफेंस काउंसिल में नियुक्त अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हेल्प डेस्क में नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा मुलाकात कक्ष में बंदियों के परिजनों को मौके पर ही कानूनी सलाह और सहायता तथा केस की जानकारी और अपील संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दतिया जिले से अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग जाति के 532 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि 91,59,000 रुपये का भुगतान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला दतिया के द्वारा जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित दिव्यांगजनों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आगामी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से तैयार किए जाएं। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े द्वारा जनगणना के तहत चल रहे मकान सूचीकरण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र देकर बीते दिनों सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सटीक मकान सूचीकरण न केवल जनगणना के लिए बल्कि भविष्य में विकास योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सभी सुपरवाइजरों और फील्ड कर्मचारियों से अनुरोध किया कि जनगणना का कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भरोसेमंद रिकॉर्ड बने। जिला स्तरीय परियोजनाओं, न्यायालयीन मामलों में समन्वय और विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान न्यायाधीश विजय चंद्र की अध्यक्षता में जिला मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्रा ने मॉनिटरिंग सेल की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन व्यवस्थाओं और जिला स्तर पर चल रहे विकास कार्यों के बीच समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि जनहित से जुड़े कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूर्ण हों। श्री चंद्रा ने बताया कि 21 अगस्त से 23 अगस्त तक 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पक्षकारों की सहमति से बैंकिंग, सिविल, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता विवाद, रेरा, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया नियंत्रण आदि जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। दतिया जिले में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया कि संपर्क अभियान में बिलों का सुधार किया जा रहा है। दतिया जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का था, वाचन था अभिषेक कटियार का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन

किशन, न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपका रेडियो मित्र विशाल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अर्पण से। स्वर लता मंगेशकर का, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा, निशा मिश्रा। संदलपुर आतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी, चांदनी, दीपक यादव। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, PR जैन। दिल्ली बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। जिला खरगोन सनावत, मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म अर्पण से इस गीत को।

श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए से। आवाज़ है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीतानंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सभी की है। गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतिशा और मैक्स। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना। पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओवेराय। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव। फुंदी बाई बागरी से नैना सत्यनारायण, कपिल शोमा। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, काना, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर और इनके मित्रजन। आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली, शैलेश ग्वाड़कर, सुमित, कुमारी ध्वनि ग्वाड़कर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता, सिद्धांत और अर्जुन ग्वाड़कर। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश ग्वाड़कर। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म एक दूजे के लिए से इस गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्यासा सावन से। स्वर लता मंगेशकर का है, गीत संतोष आनंद का और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता मित्र। जय जिनेंद्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलअत जहानाज, फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया शाहीन और नाजिया नूरी नाज। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म प्यासा सावन से इस गीत को।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत गुलजार का है और संगीत खयाम का। पसंद हमारे इन सभी श्रोता मित्रों की है। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल और डुग्गू भाविक सिक्का, विदिशा मध्य प्रदेश से बालाजी ऑर्किड से, विवेक तृप्ति विदेहराज उषा जी किरण पर्व, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतुमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोला मानी, मोहम्मद उमर कासमी और मोहम्मद शादाब खत्री, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही महराज जहां। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से इस गीत को।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म निकाह से। आवाज़ सलमा आगा की है, गीत हसन कमाल का और संगीत रवि का।

पसंद हमारे इन सभी श्रोता मित्रों की है। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरवाला, जिला फिरोजपुर, पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप गुरलाल और अविराज सिंह। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोड़के। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी और बेबी बाय हिमाक्ष। बटीडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया और इनके मित्रजन। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन वर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर इस गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनते हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से 10:58 तक। इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425702768। नंबर एक बार फिर 9425702768। आपके व्हाट्सएप संदेशों का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म रज़िया सुल्तान से। गीत जहाँ निसार अख्तर का है, संगीत खय्याम का और स्वर है लता मंगेशकर का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रज़िया सुल्तान से इस गीत को। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा था आप सभी ने। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतन और सुलोचना भगत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आप तो ऐसे न थे से। आवाज़ मनहर की है, गीत निदा फाजली का और संगीत उषा खन्ना का। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा है आप सभी ने। कस्बा वाराणा, जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू। मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली, तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर मुलाणी और इनके

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं पर समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने वाले हैं। अब से लेकर सभा की समाप्ति तक इस सभा के शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होंगे। पहले सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भोपाल केंद्र है प्रस्तुत।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गरीब, युवा, नारी और किसान सरकार की प्राथमिकता है और गरीबों का कल्याण, बहनों का सम्मान तथा किसानों के हित में जो भी मदद संभव होगी वह की जाएगी। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में किसानों की संख्या के मामले में अब तक 13,000-10,000 किसानों से गेहूं खरीदकर देश में पहले स्थान पर है। वहीं मात्रा के मामले में अब तक 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर देश में दूसरे स्थान पर है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू त्विशा शर्मा की मौत के मामले का सर्वोच्च न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ कल इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी पर कल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पहला सत्र प्रातः 9:30 से और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 से 4:30 तक संचालित रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा घोषित राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार 2024 और 2025 में दक्षिण पन्ना वनमंडल को जैव विविधता स्वामित्व रखने वाले सर्वश्रेष्ठ विभाग की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले एक जरूरी बात, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम अब रिकॉर्ड किया जाता है सुबह 10:30 से 11:00 और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और एसटीडी कोड है 075।

0: हल्का हल्का सुरूर है।
1: ये जो हल्का हल्का सुरूर है, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
0: गर्मी बहुत पड़ रही है सर।
1: गर्मी बहुत पड़ रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 44-45 का
1: 44, 45, 46 जो कभी हम लोग नहीं देख पाते थे, अब उसका
0: वातावरण।
1: इसमें का कहीं ना कहीं गर्मी जो इतनी ज्यादा पड़ रही है, इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं।
0: हाँ, वही तो, जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है।
1: आप जैसे जागरूक श्रोता अगर ये जानते हैं, तो इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या?
0: वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष हरे हरे वृक्ष होने चाहिए, लगाना चाहिए, और
1: जी जी जी जी
0: हमारे खेत पले हुए हैं।
1: ठीक है, तो आपका गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार सर।

अरे कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, अरे मुझे एक शराबी बना दिया।

0: फोन कर इस गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हमारी बात किन से हो रही है हम जानना चाहेंगे।
1: जी सर नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह।
0: प्रेम सिंह बोल रहे हैं
1: जी सर,
0: नागदा उज्जैन से। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर मैं फिल्म का नाम है हमराज और गाने के बोले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
0: नीले गगन के तले, बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया है। लेकिन अभी तो मौसम है बड़ा गरम गरम सा हो रहा है कुछ।
1: जी बिल्कुल काफी गरम हो रहा है। हाँ, हाँ, टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 45 डिग्री के करीबन चल रहा है।
0: जी जी
1: करीबन जी। मतलब 20 दिन से ऐसा ही लगभग मौसम हो रहा है और काफी गरम तेज हवाएं भी चल रही है।
0: जी जी, लेकिन हमने इसलिए मौसम की गर्म की बात की क्योंकि ये जो गीत फिल्माया गया है नीले गगन के तले, एक शरद ऋतु में फिल्माया गया है ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे कि मेरे घर के पास में दो बड़े बरगद के पेड़ हैं।
0: जी
1: वहाँ पे मतलब काफी पक्षी आते हैं, शाम के समय आते हैं, सुबह के समय आते हैं। तो उनकी जब चहचहाट होती है ना, तो मतलब उस समय शाम का जब समय होता है ना, तो काफी अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो कुदरत जो हमें देती है, कुदरत की जो ध्वनियाँ होती है, चाहे पंछियों की हो चाहे पेड़ों की सरसराहट की हो, उसका एक अलग ही मजा होता है ना।
1: जी बिल्कुल। तो उन जो पक्षी आते हैं ना, उनके लिए हमने मतलब है ना
0: जी,
1: दो तीन टब में पानी भर के रखा हुआ है और ऐसे मतलब
0: बहुत बढ़िया
1: ऊपर के लटका रखे है मतलब पेड़ के नीचे, ताकि उनमें बैठे वो और पानी पिए। और मतलब कुछ ऐसे पक्षियों के लिए मतलब दाने भी बिखेर रखे हमने की वो पानी भी पिए, मतलब वहाँ पे बैठे और वो अपना दाना भी खाए।
0: प्रेम सिंह जी आप तो गांव में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, उसके बावजूद हम क्या करते हैं, छत पर एक सकोरा रखते हैं, एक पीछे गार्डन में रखते हैं और एक आगे रखते हैं, और उसके अलावा चिड़िया गिलहरी और कबूतर पूरे सब आके उसमें बिल्कुल पानी पीना खाना और आवाज देते हैं, आपको बताएं सवेरे सवेरे से हमको।
1: जी बिल्कुल, अगर उसमें पानी खत्म हो जाता है ना सर,
0: तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: बोलते हैं उनकी भाषा में बोलते हैं, तो हमें मतलब पता चल जाता है कि इनके बर्तन में पानी खत्म हो गया है,
0: बिल्कुल
1: दाने खत्म हो गए तो डालना है हमें।
0: तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपका जो गीत है आपकी पसंद का हमराज फिल्म का आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें जी, सुने।
1: पल पल की दोस्ती का वादा है आपसे, अपनापन कुछ ज्यादा है आपसे, मत सोचना कि भूल जाएंगे आपको, जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे, ये वादा है आपसे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी बात किससे हो रही है?
1: मैं पालदाना का इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ सर।
0: मोहम्मद रफी मंसूरी, बताइए मोहम्मद रफी साहब, आप क्या सुनना चाहेंगे? आप तो खुद गानों के सरताज हैं, नाम आपका मोहम्मद रफी है।
1: जी शुक्रिया। ये फकीरा का सुनवा दीजिएगा सर, हम तो झुककर सलाम करते
0: हैं। हाँ, बहुत बढ़िया गाना है और बहुत दिनों में सुनने में आएगा ये।
1: हाँ ये हिडन गाने रहते हैं सर कुछ।
0: बहुत बढ़िया, एक अलग तरह के की पसंद है आपकी, आप कव्वाली बेस्ड गाने आप थोड़े से पसंद करते हैं मुझे।
1: हाँ, कव्वाली शरारत और मस्ती भरे जो गाने रहते हो।
0: तो ये खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, गीत का आनंद लीजिए।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: नमस्कार।
2: नमस्ते सर।
1: फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
2: नमस्ते, गंगा मेरा बात करी नीमच से।
1: कैसी हैं गंगा जी आप?
2: अच्छे हूँ मैं सर, आप कैसे हो?
1: हाँ मैं भी बढ़िया हूँ। आज क्या सुनना चाहेंगी?
2: सर मूवी का नाम है हम किसी से कम नहीं और गाने का बोल है चांद मेरा दिल।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गीत पसंद किया है आपने। इसी गीत को पसंद करने की कोई खास वजह?
2: जी सर, हमारी सिस्टर को बहुत पसंद है ये सॉन्ग।
1: अच्छा।
2: हम उसके लिए सुन रहे हैं।
1: गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, आपके सिस्टर और आप दोनों गीत का आनंद लें। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करेगी सुने।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते,
1: महेंद्र वर्मा बात कर रहा हूँ, मंदसौर।
0: महेंद्र वर्मा, स्वागत है महेंद्र जी का। क्या करते हैं महेंद्र जी, आप हमारे श्रोता जानना चाहेंगे?
1: सर मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ।
0: क्या क्या बनाते हैं आप, वेल्डिंग करके या केवल?
1: सर वो गेट की फ्रेम आती है और वो सब आता है ना, वो सब बनाते हैं सर।
0: अच्छा, तो ये आपकी खुद की शॉप है या फिर आप कहीं किसी के पास काम करते
1: हैं?
0: शौक क्या क्या है आपके और?
1: सर हमारा शौक स्विमिंग करना है।
0: स्विमिंग, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो वहाँ तो कुछ आसपास नदी या कुछ इस तरह के का है, तालाब वगैरह क्या है आपके?
1: सर मंदसौर में।
0: मंदसौर में
1: वाटर पार्क है ना, मंदसौर में
0: वाटर पार्क में।
1: ओके, और वहाँ शिवना नदी भी है, वो पशुपतिनाथ मंदिर है ना वहाँ पे।
0: मतलब नेचुरल स्विमिंग का आनंद लेते हैं आप। तो आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: सर मूवी का नाम है टेबल नंबर 21 और गाने के बोल है मन मेरा।
0: तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: कालीचरण यादव बोला सर, संदलपुर आंतरी से।
0: कालीचरण यादव जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं ग्वालियर के पास गाँव, मेरा आंतरी संदलपुर।
0: संदलपुर, क्या करते हैं कालीचरण जी आप?
1: मैं पान की खेती में काम करता हूँ। पान की पान होता है हमारे गांव में, देसी पान होता है, ग्राम संदलपुर में।
0: जी जी जी, तो ये पान की खेती में काम करते हैं या खेती आपकी खुद की है?
1: खुद की खेती करते हैं ना हम।
0: जी
1: होते हैं हमारे,
0: क्या होते हैं फिर से बताइए थोड़ा सा।
1: देसी प्राण होता है हमारे गांव में, दिलक गांव रात्रि संदलपुर में।
0: हाँ हाँ हाँ, तो इसकी तो आपने पूरा पॉली हाउस के अंदर करते हैं या ओपन में करते हैं इसको?
1: उसमें पत्थर की दीवार होती है, उसमें ऊंचाई में, उसमें फिर तैयार करके चाशमा चाहना करना पड़ती है, बांस लगाना पड़ती है, बहुत मेहनत का काम।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बांस लगाना पड़ती है, मंडप बनाना पड़ते हैं, है ना? हाँ हाँ, नहीं पॉली हाउस के अंदर हमने इसकी खेती देखी है।
1: आपने कहाँ देखी थी सर?
0: ये हरदा में। जी, तो आज क्या सुनना चाहेंगे कालीचरण जी?
1: मेरे को गाना सुनना है, खुद का सुना दो। जब प्यार किसी से होता है, 100 साल पहले मुझसे प्यार था, लता रवि के बारे में गाना है, पुरानी पिक्चर है।
0: हाँ, ये देवानंद और आशा पारेख की फिल्म है। तो चलिए, आपका गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: नमस्कार, फोन करेगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: मैं ग्राम परसेंटा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं आपका दोस्त बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। सर
0: क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: तो सर दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, ये है ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया था, अभी तो यही था अभी खो गया।
0: गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हेलो, राधे राधे सर।
0: जी नमस्ते।
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं, किससे बात हो रही है हमारी?
1: राधे राधे, राजनंदिनी बात कर रही हूँ।
0: राजनंदिनी, तो क्या सुनना चाहेंगी राजनंदिनी जी आप?
1: सर, मूवी का नाम है संघर्ष, गाने के बोले पहली पहली बार बली है दिल का हार।
0: और कुछ कहना चाहेंगी राजनंदिनी जी?
1: जी सर, कहना चाहेंगे अभी घर में बहुत पड़ रही है तो कृपया घर नहीं रहे।
0: जी, गर्मी बहुत पड़ रही है लेकिन जो काम है हम लोगों को वो तो करना ही होते हैं। बिल्कुल, लेकिन लेकिन गर्मी के लिए, इसे बचने के लिए जो एहतियात है वो बरत सकते हैं हम लोग, है ना? अगर पैदल जा रहे हैं तो छाता लेकर जा सकते हैं, गाड़ी पर है तो टोपी लगा सकते हैं, है ना? और उसके
1: चीजों का सेवन करें, छाछ पिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल, मठा पिए, नारियल पानी पिए, इस समय
1: इलेक्ट्रोल अपने साथ में हमेशा रखें,
0: इलेक्ट्रोल ग्लूकोज हमेशा अपने साथ रहे तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: बहुत अच्छी बात है
0: जी। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजनंदिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: मैं श्रीताप जाखड़े बोल रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र से। ये
0: श्रीताप जाखड़े। जाखड़े साहब आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: भूमध्य रेखा का गाया हुआ गाना सुनना है, मधुमती का।
0: मधुमती फिल्म का कौन सा गीत?
1: मधुमती का है, टूटे हुए बागों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने।
0: टूटे हुए ख्वाबों ने। ये सैड सॉन्ग सुनने का क्या कारण है? आपने कोई वजह है इसकी कुछ?
1: हाँ, हमको तो मतलब ये पुराने गाने बहुत पसंद है ना सर।
0: पुराने गाने आपको पसंद है इसलिए सुनना चाहते हैं।
1: हाँ,
0: गीत बहुत अच्छा है।
1: सलीम चौधरी साहब का संगीत है।
0: तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: अभी आपने सुना मधुमति फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। पसंद करने वाले श्रोता थे महाराष्ट्र से श्रीताप जाखड़े। मधुमति फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब अपने रेडियो मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त होती है। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू आज जबलपुर के एक दिवसीय प्रवास पर हैं। वे यहां सामाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ कल भोपाल के तुषार शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति के मौत के मामले की सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर आज निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जनगणना के प्रथम चरण में भोपाल नगर निगम सीमा में 7 लाख से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है। इसके साथ ही 3,285 जनगणना ब्लॉकों में से 2,800 मकानों का सूचीकरण कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट बना रहेगा। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में 2:30 बजे से होगा। वहीं दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले जिस गीत को हमने लिया है उसके सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। अमित खातकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवलेखा, पारसमणि और संदीप पाटिल। इसी गीत को सुनना चाहा है वसंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। इन्होंने ये हमें ख़त लिखा प्रेमिलागंज आटोल ज़िला रतलाम से। और आप सभी ने सुनना चाहा है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में दिल है तुम्हारा फिल्म का नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये।

भाटेपारा नंदेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जाविद्र कुमार, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, आप सभी ने सुनना चाहा है आंखें फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो आइए अब सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

0: कभी कभी।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी से मोहम्मद सादिक मुश्ताक, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकना खत्री, अलमश खत्री, रमेश कौर और शादाब खत्री ने। एक और हमें ख़त मिलता है झारखंड से, लिखने वाले हैं विकास शर्मा, ज्योति, मीना, नीरा सिंह और इनकी परिवार के सभी सदस्य। इन्होंने सुनना चाहा है पिघलता आसमान फिल्म का नगमा, आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल इंदिवर के और धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।

नेपाल पहले सागर से तिलकराना, मीनाराना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि। आप सभी ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक, लता मंगेशकर की आवाज़ों में दिल तो पागल है फिल्म का नगमा। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर के युगल सुरों में दिल तो पागल है फिल्म का ये नगमा।

अय्यूब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, आसमा, सालिया, शुएब खान, मुस्तबा, रऊफ और शरीद। गांधी बाग अकोला से रमेश और वैशाली। आप सभी ने सुनना चाहा है सोनू निगम की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम दिल तो बच्चा है जी।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत में आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र का 11वां भाग।

0: प्रणाम श्रोतागण, आप सबके साथ मैं भी प्रस्तुत हूँ पंचतंत्र की कथाओं का रसास्वादन करने के लिए। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पंचतंत्र का चौथा प्रकरण लब्ध प्रणाशम, जिसे पंडित विष्णु शर्मा ने इस प्रकार प्रारंभ किया। समुत्पन्नेषु कार्येषु
1: समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते स एव दुर्गतरति जलस्थो वानरो यथा। अर्थात कार्य में विपत्ति के आ जाने पर जिस व्यक्ति की बुद्धि क्षीण नहीं होती है वह दुर्गम मार्गों को भी पार कर सकता है। जैसे जल में निवास करने वाले रक्तमुख नाम के वानर ने अपनी बुद्धि के द्वारा एक बहुत बड़ी विपत्ति को पार कर लिया। वत्सगण सुनो, समुद्र के किनारे सभी ऋतुओं में फलने वाला एक विशाल जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर रक्तमुख नाम का एक वानर निवास करता था। किसी दिन संयोग से कराल मुख नाम का एक मगर समुद्र से निकलकर उस वृक्ष के नीचे कोमल बालुका भूमि पर बैठ गया। उसे देखकर रक्तमुख ने कहा,

0: महाशय, आप मेरे घर आए हुए अतिथि हैं। आइए इस अमृत के समान मधुर जामुन का आनंद लीजिए। अतिथि तो नारायण का रूप होते हैं।
1: अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है मित्र, मैं अवश्य मीठे जामुन खाऊंगा। आज से हम मित्र हैं, मैं तुम्हें शास्त्र पाठ सुनाया करूंगा। वाह, अरे वाह मित्र वाह, ये तो सचमुच बड़े स्वादिष्ट है। मैं कुछ फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। हाँ, अरे वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी, वो बेचारी अकेली घर में रहती है, ऐसे फल उसे कहाँ मिलते हैं।
0: अवश्य मित्र, परंतु तुम्हारे भाग का तुम खा लो, मैं भाभी के लिए और मीठे जामुन तोड़कर ला देता हूँ, और भाभी को देवर की ओर से प्रणाम देना मित्र।
1: अवश्य दूंगा मित्र, अवश्य दूंगा, आज मैं चलता हूँ भाई। प्रिय प्रिय, अरे कहाँ हो तुम? अरे शीघ्र आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ।
2: नाथ,
1: देखो देखो,
2: वाह क्या स्वाद है। तुम इन अमृत तुल्य फलों को कहाँ से लाए हो?
1: भद्रे, रक्तमुख नाम का वानर मेरा अत्यंत घनिष्ठ मित्र हो गया, वही प्रेम पूर्वक प्रतिदिन इन फल को देगा, वो इसी फल वृक्ष में रहता भी है।
2: अच्छा। जो सदा इन अमृत तुल्य फलों को खाता है उसका हृदय भी अमृत के समान होगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उसका हृदय ला कर दो, ताकि उसे खाकर मैं अमर हो जाऊं और तुम्हारे साथ आनंद भोगती रहूं।
1: प्रिय, ऐसी बात न कहो, वो मेरा भाई है, इस बात को मैं स्वीकार कर चुका हूँ, वो रोज फल देता है, मैं उसे मार नहीं सकता। इस निरर्थक आग्रह को तुम छोड़ दो।
2: इससे पूर्व कभी तुमने मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं किया। जान पड़ता है वो कोई वानरी है, तुम्हें उससे अनुराग हो गया है, इस

0: कारण तुम दिन भर वहीं रहते हो।
1: ये तुम क्या कह रही हो? तुम व्यर्थ ही संदेह कर रही हो।
0: आज मैं तुम्हें भली भांति समझ गई हूँ। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रसन्न मन से नहीं दे रहे हो और मेरे मन की कोई इच्छा भी पूरी नहीं करते हो। धूर्त, तुम्हारे हृदय में मेरी ही तरह कोई दूसरी प्रियतमा है।
1: नहीं नहीं प्राण प्रिय, अब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर चुका हूँ और दासता के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझ पर इतना प्रसन्न क्यों हो रही हो?
0: देखो, इस प्रकार मेरे चरणों में बैठकर झूठे प्रेम का ढोंग करना व्यर्थ है। यदि वो सचमुच वानर है तो उसके प्रति तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह क्यों? यदि तुमने मुझे उसका हृदय लाकर नहीं दिया तो आज से मेरा अनशन है।
1: क्या करूं? अरे अरे, मैं उसे कैसे मार सकता हूं?
2: आओ आओ मित्र, आज इतने दिनों बाद क्यों आए? क्या बात है, सदा की भांति प्रसन्न नहीं हो, इस उदासी का क्या कारण है?
3: मित्र, तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत डांटा फटकारा।
2: हाँ?
3: उसने मुझसे कहा है कि मैं कृतघ्न हूं।
2: क्यों बोला?
3: और मैं उसे अपना मुंह न दिखाऊं।
2: अरे रे रे, ऐसी क्या बात हो गई?
3: क्योंकि भैया, मैं रोज तुम्हारे घर आकर चावन खाता हूँ और तुम्हारा कोई भी उपकार नहीं करता, कभी तुम्हें घर भी नहीं ले जाता, इसलिए आज मैं तुम्हें घर लेकर ही चलूंगा, अन्यथा वो मुझसे परलोक में ही मिलेगी।
2: ओह, ये बात है। अरे मित्र, इसमें कौन सी आपत्ति है? चलेंगे, कभी चलेंगे, जरूर चलेंगे।
3: नहीं नहीं मित्र, आज ही चलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तुम्हारी भाभी तुम्हारी प्रतीक्षा में चौका सजाकर सुंदर गहनों और वस्तुओं से श्रृंगार करके द्वार पर वंदनवार सजाकर उत्कंठा पूर्वक बैठी है।
2: मित्र, मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूँ, परंतु हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, जल के भीतर कैसे जा सकते हैं? आप भाभी को यहाँ ले आए जिससे मैं प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद ले सकूं।
3: रक्तमुख भाई, समुद्र के भीतर एक अत्यंत रमणीय टापू पर मेरा घर है।
2: अच्छा,
3: तुम मेरी पीठ पर बैठकर अत्यंत सुख से निर्भय होकर वहां पहुंच सकते हो।
2: यदि ऐसी बात है तो विलंब क्यों, शीघ्र चलें। लीजिए, मैं आपकी पीठ पर चढ़ जाता हूँ।

0: भाई तनिक धीरे धीरे चलिए, जल की इन लहरों से मेरा शरीर भीगता जा रहा है, ऐसा लगता है मैं अभी डूब जाऊंगा।
1: अब तुम्हें ऐसे बीच सागर में ले आया हूं, ये अब मेरे वश में है, कहीं इधर उधर भाग नहीं सकता।
0: संभाल के थोड़ा।
1: अब मुझे असली अभिप्राय कह ही देना चाहिए ताकि ये अपने इष्ट देव को स्मरण कर ले।
2: रक्तमुख, स्त्री की बातों का विश्वास दिलाकर मैं तुम्हें यहां मारने के लिए लाया हूं। तुम अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो।
0: भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिससे आपने मेरे वध का निश्चय किया?
2: मेरी स्त्री ने कहा है कि नित्य मधुर जामुन को खा खा कर तुम्हारा हृदय स्वादिष्ट हो गया है, इसीलिए वो तुम्हारे हृदय मांस को खाना चाहती है।
0: दुष्ट, अभी बताता हूं। भद्र, यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना हृदय जामुन वृक्ष की कोटर में सुरक्षित रखा है, मैं उसे लाकर भावी को समर्पित कर देता। आप मुझे हृदयहीन बनाकर यहाँ क्यों लाए? हम वानर हृदय को सुरक्षित रखने के लिए अपने शरीर से अलग ही रखते हैं।
2: अरे मित्र, यदि ऐसी बात है तो फिर मैं पुनः तुम्हें उसी जामन वृक्ष पर पहुंचा देता हूँ। तुम मुझे अपना हृदय

0: दे देना ताकि मैं अपनी दुष्ट पत्नी के अनशन को तोड़ सकूं।
1: हे प्रभु, शीघ्र ही किनारे पहुंचा दो।
0: लो मित्र, तट आ गया। अरे तुम तो पहले ही कूद गए हैं। अरे वृक्ष पर भी पहुंच गए।
1: आज बड़े भाग्य से मेरे प्राण बच गए और मैं सकुशल लौट आया।
0: अरे मित्र, ए मित्र,
1: हाँ?
0: अरे अपना वो हृदय तो मुझे दे दो जिसे खाकर तुम्हारी भाभी अपना अनशन व्रत तोड़ दे।
1: मूर्ख विश्वासघाती, क्या किसी के दो हृदय होते हैं? तुम इस जामुन के पेड़ के नीचे से शीघ्र ही चले जाओ और फिर कभी इधर ना आना।
0: अरे अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। चलो पुनः प्रयत्न करता हूं। संभव है मेरे कहने में आकर वो पुनः मेरा विश्वास कर ले। अरे मित्र, अरे मैंने तो तुम्हारी मित्रता की परीक्षा ली थी। तुम्हारी भाभी को हृदय की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
1: दुष्ट, यहां से तत्काल चले जाओ। अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। प्रियदर्शन सर्प से कह दो कि अब गंगदत्त पुनः कुएं में जाने वाला नहीं है।
0: क्या मतलब? अरे जरा साफ साफ समझाओ।
1: किसी नगर में गंगदत्त नाम का एक मेंढक रहता था। उसने अपने कुटुंबजनों से अपमानित होकर प्रियदर्शन नाम के एक सर्प को उन सभी कुटुंबजनों को मारने के लिए नियुक्त किया।
0: अच्छा, अच्छा।
1: उस सर्प को उसी कुएं में रहने का प्रबंध भी कर दिया। जब उस प्रियदर्शन सर्प ने उसके सारे कुटुंबजनों को खा लिया, तब गंगदत्त के परिवारजनों को खाना प्रारंभ कर दिया। गंगदत्त अपने किए पर पश्चाताप करने लगा, किसी तरह कुएं से निकलकर भागा। प्रियदर्शन के लाख समझाने और मित्रता की दुहाई देने पर भी वो कुएं में नहीं लौटा। इस कारण मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगा कराल मुख।
0: मैं जानता हूं मित्र, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, परंतु यदि तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं अनशन करके यहीं पर प्राण त्याग दूंगा।
1: तुम्हारे जो मन में आए करो, परंतु तुमने जो कपट किया है वो अक्षम्य है। तुम स्त्रैण हो, पत्नी की बातों में आकर तुमने अपने मित्र के प्राणों को लेने की सोची। सच है, स्त्री की बातों में आकर पुरुष उन्हें क्या क्या नहीं दे डालता, क्या क्या नहीं करता। तुमने नंदवर रुचि की कथा सुनी है?
0: नहीं तो।
1: तो सुनो, किसी राज्य में नंद नाम का अत्यंत प्रसिद्ध बलवान और पराक्रमी राजा राज्य करता था। अनेक राजाओं की मुकुटमणियों की ज्योति से उसका पाद पीठ जगमगाया करता था। उसका यश संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था। उसका वररुचि नाम का एक मंत्री था।
0: अच्छा?
1: वो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। एक बार उसकी स्त्री के साथ उसका कलह हो गया।
0: अच्छा।
2: पिए, ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे रुष्ट हो गई? कल से तुम्हारे स्वभाव में ये परिवर्तन देख रहा हूँ।
3: आप मुझसे न ही पूछे तो उचित होगा। इस समय मैं अपने आपे में नहीं हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दें।
2: पिए, तुम जैसे भी प्रसन्न हो सकती हो कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करूँगा।
3: यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुने। अगर आप अपना सिर मुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर जाएं, तो मैं प्रसन्न हो सकती हूँ।
4: वर रुचि ने वही किया, फिर उसकी स्त्री मंदारी प्रसन्न हुई। इधर संयोग वश महाराज नंद से उनकी महारानी कुपित हो गई थी। किसी भी प्रकार महाराज उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे।
5: महारानी, आप क्यों क्रोधित हो रही हैं? आपको ये करना क्या शोभा देता है?
6: महाराज, मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये आप मुझे ना समझाएं। मैं भी महाराज अधिराज अमर शक्ति के एकमात्र पुत्री हूं। महारानी की क्या मर्यादा है ये मैं आपसे नहीं सीखूंगी।
5: प्रिय, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुम्हें मनाऊं।
6: आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपके मुख पर लगाम लगाकर दौड़ाती हूँ। मेरे दौड़ाते समय यदि आप घोड़े की तरह हिन हिन आएंगे तो मैं आप पर प्रसन्न हो जाऊंगी।
5: अरे आप क्या कह रही हैं?
4: विवश होकर राजा ने वही किया जो महारानी ने कहा, तदंतर वो भी प्रसन्न हो गईं।

दूसरे दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज नंद के समक्ष जब वररुचि आए तो उनको मुंडित देखकर राजा ने पूछा,

0: वरुचि, किस उपायों पर तुमने ये मुंडन कराया है?
1: महाराज, स्त्रियों के आग्रह से मनुष्य क्या नहीं करता। जिस पर्व में वो घोड़ी की तरह हिनहिनाता है, मैंने उसी पर्व में मुंडन करवाया है।
0: अच्छा।

0: दुष्ट मकर, तुम भी नंद और वर रुचि की तरह स्त्रैण हो, इसलिए उनके कहने से तुमने मुझे मारने का प्रयास किया।
1: मगरमच्छ अभी वार्तालाप कर ही रहा था कि किसी जलचर ने आकर कहा कि उसकी स्त्री जो अनशन पर बैठी थी वो उसे देर होती देख और स्वयं को तिरस्कृत समझकर मर गई। कराल मुख वज्रपात के समान शब्दों को सुनकर शोक से व्याकुल हो उठा।
2: ओह, मुझे अब आगे पर ये क्या विपत्ति आ गई। मित्र, मैंने जो तुम्हारा अपराध किया है इसके लिए क्षमा कर दो। अब मैं स्त्री के वियोग में अग्नि में प्रवेश करके प्राण दे दूंगा।
0: अरे भाई, ये तो मैं पहले ही जान गया था कि तुम स्त्री से वशीभूत हो। अब तो पूर्ण विश्वास भी हो गया। मूर्ख, ये तो आनंद का अवसर है। ऐसी स्त्री के मर जाने पर तो उत्सव मनाना चाहिए।
2: हे वानर, तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु मैं क्या करूं? मुझ पर तो एक साथ दो विपदाएं आ पड़ी हैं। एक तो स्त्री के मर जाने से मेरा घर भी नष्ट हो गया है, दूसरा मेरे मित्र से मनोमालिन्य हो गया है।
1: इसी वार्तालाप के बीच एक अन्य जलचर ने आकर मगरमच्छ से कहा कि तुम्हारे घर में किसी दूसरे मगरमच्छ ने आधिपत्य कर लिया है।
2: हाय हाय, अरे मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा मित्र भी शत्रु बन गया है, उधर मेरी स्त्री भी मर गई, साथ ही मेरे घर में भी किसी ने आधिपत्य कर लिया। पता नहीं अभी और क्या क्या होने वाला है। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं? साम दाम दंड भेद किसका प्रयोग करूं?
0: अरे कृतघ्न पापी, मेरे मना करने पर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुम्हारे जैसे मूर्ख को मैं कोई उपदेश भी नहीं देना चाहता। यद्यपि स्त्री संसार में सबसे प्रिय होती है, तथापि उसके कहने से मित्रों और भाइयों को समुद्र में नहीं डुबोया जाता।
2: भद्र, विद्वानों का कथन है, एक साथ सात पग चलने से ही सज्जन दूसरों को अपना मित्र मान लिया करते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे साथ बहुत दिनों तक बैठा हूं, अतः पुरानी मित्रता को सामने रखकर इस विश्वासघाती मित्र को उचित परामर्श देने की कृपा करो।
0: भद्र, यदि ऐसी बात है तो वहां जाकर उस मगर के साथ युद्ध करो। युद्ध में अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि भाग्य से जीवित बच गए तो घर के साथ साथ यश भी मिलेगा।
2: अच्छा।
0: नीति शास्त्र में कहा गया है कि समान शक्ति संपन्न शत्रु के साथ युद्ध करके उसे शांत करना चाहिए।
1: कराल मुख ने वानर के विचार को सुनकर युद्ध करने का निश्चय करके घर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वो अपने घर में घुसे आतताई के साथ युद्ध करने को प्रवृत्त हो गया, और अपनी दृढ़ता और साहस से उसने पुनः अपना घर प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगा।

सच ही कहा गया है। बिना पुरुषार्थ के अनायास ही प्राप्त होने वाली लक्ष्मी से यदि सुख मिल भी जाता है तो उससे उतनी प्रसन्नता एवं तुष्टि नहीं हो पाती जितनी कि पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की हुई लक्ष्मी से होती है। रसिकजन, कैसी लगी ये कहानी हमें अवश्य बताएं। लब्ध प्रणाशम नामक ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रकरण अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय सुनना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत उमरिया जिले के ग्राम खेरवा टोला में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु हो गई और कुछ नागरिक घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतक के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा घायलों के निःशुल्क उपचार एवं आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जनगणना के प्रथम चरण में भोपाल नगर निगम सीमा में 7 लाख से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है। साथ ही 3,285 जनगणना ब्लॉकों में से 2,800 मकानों का सूचीकरण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर भोपाल के रविंद्र भवन में कल सुरों की लोक सूफी शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पलता शर्मा ने बुंदेली विवाह गीत से की, उसके बाद मशहूर सूफी गायक उस्ताद मुनव्वर मासूम ने कव्वाली पेश की। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोलवाल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, अपनी चर्चा में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं दुनिया में शांति, सद्भाव और एकता का प्रतीक राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमन

1901 में महारानी विक्टोरिया ने अपने जन्मदिन के मौके पर रखा। उनकी मृत्यु इसी वर्ष हो गई। सन 1902 में सर्वप्रथम एम्पायर डे यानी साम्राज्य दिवस मनाया गया, लेकिन सन 1958 में हैरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे कर दिया। तब से इसे कॉमनवेल्थ डे के नाम से ही जाना जाता है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। बहनों, यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि विश्व के सभी देशों को आपसी सहयोग, भाईचारे और समानता की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज पूरी दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं आतंकवाद फैल रहा है, तो कहीं जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में शांति और एकता का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि विश्व में शांति होगी तभी विकास संभव होगा। यदि देशों के बीच प्रेम और सहयोग रहेगा तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। राष्ट्रमंडल केवल देशों का समूह नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी भाषाएं अलग हो, संस्कृति अलग हो या रहन सहन अलग हो, फिर भी हम सब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। भारत जैसे देश ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है का संदेश दिया है। आज युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनाएं। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के बजाय हमें मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। बहनों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम उनके विचारों को अपनाएं तो समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। हमें अपने जीवन में सहनशीलता, दया और सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। बहनों, विश्व शांति केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और सद्भाव की भावना रखे तो दुनिया निश्चित रूप से अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण बन सकती है। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान दें। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हमारे त्यौहार के विषय में। बहनों, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक है। हमारे त्यौहार केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि वे हमारी परंपराओं, आस्था, संस्कारों और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक होते हैं। गंगा दशहरा भी ऐसा ही पावन पर्व है, जो इस वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आईं और लोगों के पापों का नाश किया। इसलिए इस दिन गंगा स्नान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और जीवन का आधार है। गंगा हमारे खेतों को सींचती हैं, लोगों को जल प्रदान करती हैं और भारतीय सभ्यता को जीवित रखती हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में गंगा को माँ कहा गया है। गंगा दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी नदियों और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आज नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। यदि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना चाहते हैं तो हमें गंगा सहित सभी नदियों को स्वच्छ रखना होगा। त्यौहार समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। परिवार और समाज के लोग मिलकर पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। आज के आधुनिक युग में कुछ लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। हमें अपने त्योहारों के महत्व को समझना चाहिए और नई पीढ़ी को भी इनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाना ही अपने देश की पहचान को बचाना है। बहनों, गंगा दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आइए हम सभी माँ गंगा का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें और अपनी महान संस्कृति को आगे बढ़ाएं।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं अपनी क्षमता खुद पहचाने और इसे कैरियर बनाए के विषय में। बहनों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेष प्रतिभा अवश्य होती है। किसी को संगीत पसंद होता है, किसी को खेल, किसी को चित्रकला, तो किसी को विज्ञान और तकनीकी। लेकिन अक्सर लोग अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते और दूसरों की नकल करने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाते। बहनों, सफलता का पहला कदम है स्वयं को पहचानना। जब हम अपनी रुचि को और क्षमता को समझ लेते हैं, तब सही दिशा में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यदि किसी बच्चे की रुचि खेल में है और उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए कहा जाए, तो वह कभी पूरी खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज के समय में करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। पहले लोग केवल कुछ सीमित क्षेत्रों को ही अच्छा करियर मानते थे, लेकिन अब संगीत, अभिनय, फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंंग, एनिमेशन, खेल, लेखन, यूट्यूब, डिज़ाइनिंग और कई नए क्षेत्रों में भी शानदार अवसर है। बहनों, हमें अपनी कमजोरी से डरने की बजाय अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा को सफलता में बदल सकता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। विद्यार्थी को चाहिए कि वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखे और उसी दिशा में मेहनत करे। माता पिता और शिक्षकों को भी बच्चों की रुचि को समझना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हर व्यक्ति अनोखा है। यदि हम अपनी क्षमता को लें और उसे सही दिशा दें, तो निश्चित रूप से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी अपनी प्रतिभा को पहचानें, उसे निखारें और अपने सपनों को साकार करें। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातों के विषय में। बहनों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर देशवासियों को ऐसे संदेश देते हैं जो केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। वैश्विक तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागरिकों से 7 महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। इनका मुख्य उद्देश्य विश्व मुद्रा भंडार की बचत करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये 7 बातें इस प्रकार हैं। पहली, ईंधन की खपत कम करें। पेट्रोल डीजल के उपयोग को सीमित करें। जहां संभव हो वहां मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और कार पुलिंग को अपनाएं। दूसरी, सोने की खरीदारी टालें। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए कम से कम 1 साल तक अनावश्यक सोना न खरीदें। विदेशी यात्राओं में कमी। गैर जरूरी विदेश यात्राओं और विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने से बचें। चौथी, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। दफ्तरों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि ईंधन और समय की बचत भी हो। उन्होंने यहाँ पर हमें यह भी बताया कि इसका प्रयोग हम लोग कोरोना काल में कर चुके हैं। पांचवी, खाद्य तेल का कम उपयोग करें। सेहत और देश के आयात बिल को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक खाद्य तेल के उपयोग में कमी लाएं। छठवी, प्राकृतिक खेती को अपनाएं। किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने की अपील की गई है। सातवीं, स्वदेशी अपनाएं। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ब्रांडों के बजाय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। बहनों, इसमें उन्होंने लोगों से खाद्य तेल का कम उपयोग करने और सोने की खरीदारी से बचने की अपील की है, जो हम बहनों से सीधा जुड़ा है। बहनों, यदि हम खाद्य तेल की बात करें तो आजकल लोग तला भुना भोजन अधिक खाने लगे हैं। इससे मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कई अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। यदि हम तेल का सीमित उपयोग करें और संतुलित भोजन अपनाएं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं।
बहनों, प्रधानमंत्री जी का यह संदेश केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश हित से भी जुड़ा है। भारत को खाद्य तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है। यदि खाद्य तेल की खपत कम करेंगे तो देश का विदेशी मुद्रा खर्च भी हम कम कर पाएंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना मजबूत होगा। इसी प्रकार सोने की अत्यधिक खरीदारी भी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। भारत में लोग सोने को निवेश और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अत्यधिक सोना खरीदने से देश का पैसा विदेशों में जाता है, क्योंकि लगभग 90% सोना आयात किया जाता है। बहनों, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लोग अपनी बचत को उत्पादक कार्यों में लगाएं, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, स्टार्टअप और देश के विकास से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें समझना चाहिए कि छोटी छोटी आदतें भी देश के विकास में बड़ा योगदान दे सकती हैं। यदि हर नागरिक जिम्मेदारी से संसाधनों का उपयोग करे तो भारत तेजी से प्रगति कर सकता है। बहनों, प्रधानमंत्री जी के संदेश केवल सलाह नहीं, बल्कि देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमें स्वस्थ जीवन अपनाना चाहिए, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए और देश हित में सर्वोपरि रहना चाहिए। आइए हम सभी एक जागरूक नागरिक बने और देश के विकास में अपना योगदान दें।

बहनों, 25 तारीख को गंगा दशहरा है और इस दिन शिवपुरी अंचल में मंदिरों में भी आम खरबूजा दान करने का चलन बहुतायात में है और इन दिनों बाजार में खरबूजे और आम बहुत ही आ रहे हैं। तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं खरबूजे की कुल्फ़ी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप पका हुआ और बारीक कटा हुआ खरबूजा, 1/2 लीटर फुल फैट दूध, 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, चीनी स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच ली है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी मिला रहे हैं। 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, सजाने के लिए बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल हों, 2 बड़े चम्मच मलाई। अब एक भारी तले के बर्तन में दूध डालकर मध्यम आँच पर 10-12 मिनट तक पकाएं। बीच बीच में चलाते रहें ताकि दूध तले में ना लगे। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क और चीनी डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं। गैस बंद करें और दूध को पूरी तरह ठंडा होने दें। खरबूजे के टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर इसकी स्मूदी बना लें। अब ठंडे दूध में खरबूजे की प्यूरी मिलाएं, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। मिश्रण को कुल्फी मोल्ड या ना हो आपके पास तो आप छोटे ग्लासों में भरकर ऊपर से फॉइल पेपर से पैक करके और इसमें एक स्टिक लगा सकती हैं। 6-8 घंटे या रात भर के लिए इसे फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें। सुबह आप इसे डीमोल्ड करें और तैयार है आपकी ठंडी ठंडी खरबूजे की कुल्फ़ी। चलिए बहनों, अब बनाते हैं आम और नारियल से बनने वाले टेस्टी से लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ताज़ा या सूखा हुआ नारियल, जिसे आप कद्दूकस कर लें, 3/4 कप आम का गाढ़ा पल्प, 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1 बड़ा चम्मच घी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच दूध पाउडर। सजाने के लिए नारियल का बूरा। एक नॉनस्टिक पैन में घी गर्म करें, इसमें किसा हुआ नारियल डालकर 2 मिनट हल्का भून लें। अब आम का पल्प डालें और लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट पकाएं। मिश्रण में कंडेंस्ड मिल्क और इलायची पाउडर डालें और गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण पैन के किनारे छोड़ने लगे तो गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें। हाथ में थोड़ा घी लगाकर छोटे छोटे लड्डू बना लें। सूखे नारियल के बूरे में रोल करें, ऊपर से मनचाहे ड्राई फ्रूट से सजाकर 20 मिनट फ्रिज में रखें और ठंडे ठंडे सर्व करें। आप चाहे तो ये दोनों रेसिपी गंगा दशहरा पे बनाकर बजाय आम और खरबूजे चढ़ाने के भगवान को इसका भोग लगा सकती हैं। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सुधीर बाबू पांडे के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुधीर बाबू पांडे के द्वारा गाए हुए इस लोकगीत के साथ। मैं तो

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुधीर बाबू पांडे द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में

0: होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुखविंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म स्टैनली का डब्बा से।

हितेश सोनिक का संगीत अमोल गुप्ते के लिखे बोल सुखविंदर सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म कैंडी का डब्बा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान और आमिर खान की आवाज़ में फिल्म तारे ज़मीन पर से।

0: शंकर एहसान लॉय का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल आमिर खान और शान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तारे ज़मीन पर से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ में नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेंजोंगा की 5 धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह लेख खांग चेंजोंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना के रक्षक के रूप में चित्रित करता है और इसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा हुई और क्वाड बैठक से पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र प्राथमिकता बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का जल्दी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने सिंगरौली जिले के विकास के बारे में चर्चा की
1: और ये आने वाले समय की दृष्टि से हम इसका मास्टर प्लान बना रहे हैं सिंगरौली के लिए और विकास के लेकर के मध्यप्रदेश सरकार के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं। बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी आएंगे और जिस प्रकार से हमने अपने निवेश और रोजगार को लेकर के गत वर्ष काम किया था उसके बलबूते पर ये पूरे हमारे आसपास के जिलों को भी रोजगार यहाँ मिले, इस तरह का प्रबंधन कर रहे हैं।
0: भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले का उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ भोपाल पहुंची है। इससे पहले आरोपी समर सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GSTC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल स्थित रेल उत्सव हाल मदन महल में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 211 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत मलोथर में प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत रात्रि चौपाल आयोजित की गई। प्रभारी कलेक्टर ने ग्रामवासियों से संवाद कर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्यपालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
4: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।

0: उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों बोलो
1: मुस्कान। सुनने वाले सभी बच्चों को प्रीति दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, अभी तो आप सभी की छुट्टियां चल रही हैं, तो कोई दादी के हाथ के पकवान खा रहा होगा, तो कोई नानी या मामी के हाथ का, कोई तीर्थ यात्रा पर होगा, तो कोई किसी पर्यटन स्थल का आनंद ले रहा होगा। पर इन सब के साथ आप सबको इंतजार होगा आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मुस्कान का, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको आपकी दीदी कई सारी जानकारियां साझा करती हैं। साथ ही आपके साथ आपके कई साथी अपनी अपनी कविता कहानी के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं आज के मुस्कान के सफर पर और साझा करते हैं आज की तारीख से जुड़ी जानकारी। तो बच्चों, आज यानी 24 मई को हम हर साल राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। अब हमारे बच्चे ये जानना चाहते होंगे कि ये राष्ट्रमंडल दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो बच्चों, ये दिवस वे सभी राष्ट्र मनाते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, या यूं कहें कि ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, यानी जिन देशों पर अंग्रेजों का शासन था वे सभी देश इसे मनाते हैं। हमारे भारत पर भी अंग्रेजों का राज था, इसलिए हम भी राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। इसे 24 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का इस दिन जन्मदिन होता है। जानते हैं बच्चों, हमारा देश 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसमें शामिल हुआ। अभी लगभग 54 देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा हैं। बच्चों, अब हमारे आज के मुस्कान के सफर का अगला पड़ाव है, हमारा अगला क्रम। आओ जाने, क्योंकि इस समय हमारे बहुत से बच्चे यात्रा कर रहे होंगे, घर से बाहर जा रहे होंगे, या फिर कोई नई चीजें सीखने भी जा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा की, जानेंगे कि कैसे आपको अपना ख्याल रखना है। बच्चों, सबसे पहले तो हम जब भी कहीं बाहर जा रहे हों तो अपनी मम्मी के साथ पैकिंग करवाने में सहयोग करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको भी पता हो कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। यात्रा के दौरान अपने बड़ों का साथ कभी ना छोड़ें, हमेशा उनकी नज़रों के सामने बने रहें। अगर कोई व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते वो हमें खाने पीने को दे तो कभी ना लें। अगर कोई कुछ गलत व्यवहार करे तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं, उनके फ़ोन नंबर याद रखें। अगर किसी कारणवश हम खो जाएं, तो अपने आसपास पुलिस को खोजें और उनके माध्यम से अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करें। अगर आपने अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को सीखने के लिए इन छुट्टियों में कोई क्लास ज्वाइन की है, तो वहां आते जाते समय या क्लास में भी अगर आपको किसी का भी कोई व्यवहार ठीक नहीं लगता तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं। बच्चों, अगर आप किसी भी वजह से अकेले घर से बाहर जा रहे हैं तो घर में पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक लौटेंगे। रास्ते में जाते समय भी अपने चारों तरफ का ध्यान रखें ताकि आप सुरक्षित बने रहें। बाकी मम्मी पापा के साथ जाते समय तो हम सुरक्षित होते ही हैं और उनके साथ अपने सफर का आनंद बड़ी खूबसूरती के साथ लेते हैं।
0: बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी कई सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे अपनी अपनी कविता और कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम बारी बारी से जानेंगे बच्चों से कि वो हमारे लिए क्या तैयार करके आए हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बातें हो जाएं। तो बच्चों, गर्मी की छुट्टियाँ कैसी बीत रही हैं? अच्छा, बारी बारी से सब बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है इन छुट्टियों में।
2: मैं बैडमिंटन सीख रही हूँ, मैं डांस सीख रही हूँ,
3: मैं फुटबॉल सीख रहा हूँ।
0: इसका मतलब है सभी बच्चे अपनी अपनी छुट्टियों का उपयोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो उनके आगे कुछ ना कुछ काम तो आने वाला है। अच्छा, ये बताओ, ये हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हमारे लाइफ में क्या काम आ सकती हैं, क्या सिखाती हैं हमें?
3: अनुशासन।
0: और क्या सीख सकते हैं?
2: कॉन्फिडेंस।
0: कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। कि आगे जाके अगर हमें कभी कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ये जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हमें ये काम आ जाता है आगे जाके कि हम कोई भी निर्णय बड़े आराम से ले सकते हैं। अच्छा, अब सब बच्चे अपना अपना नाम बताते जाएंगे और क्या तैयार करके आए हैं वो बताते जाएंगे। बेटा, आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम अनन्या जैन है। मैंने एक लघु कथा, उसका शीर्षक है पुरानी किताब।
0: अच्छा, अब हमारे साथ अनन्या है और अनन्या हमारे लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हैं।
3: स्कूल की लाइब्रेरी में आर्यन को एक बहुत पुरानी किताब मिली। उसने पन्ने पीले पड़ चुके थे और ऊपर धूल जमी थी। बाकी बच्चे नए किताब और रंगीन किताबें चुन रहे थे, इसीलिए किसी ने उस किताब की तरफ ध्यान नहीं दिया। आर्यन उसे घर ले आया। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने महान लोगों के शीर्षक और सफलता की कहानियाँ थी। हर पन्ने पर नई नई सीख छिपी थी। अगले दिन शिक्षक ने पूछा, तुमने सबसे अच्छा क्या चीज़ सीखी? आर्यन मुस्कुराकर बोला, सर, पुरानी चीज़ें हमेशा बेकार नहीं होती, उनमें अनुभव और सीख छिपी होती है। उस दिन से कई बच्चे भी लाइब्रेरी की पुरानी किताबें पढ़ने लगे।
0: बहुत ही अच्छी कहानी थी। इस कहानी का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ कभी पुरानी नहीं होती। दूसरी बात ये कि पढ़ने की जो आदत हमारी ख़त्म हो गई है, वो पढ़ने की आदत हमें दोबारा से डालनी चाहिए। पढ़ना ये नहीं है कि हमने अपना कोर्स कवर कर लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया, बल्कि हमारे कोर्स में जो चीज़ें नहीं हैं वो भी नई नई चीज़ें हमें सीखना है, पढ़ के जानना है। और एक और चीज़ इस कहानी से हम सीखते हैं कि जो अनुभव होता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। किसी भी चीज़ का अनुभव हो, चाहे वो हम अपने घर के बड़ों से ले सकते हैं अनुभव, और चाहे अपने खुद के अनुभव से। अब हमारे साथ कौन जुड़ा है, अपना नाम बताओ बेटा।
4: मेरा नाम यशी जैन है।
0: यशी, यशी आप क्या तैयार करके आए हो?
4: मैंने एक लघु कथा तैयार करी है जिसका शीर्षक है समय की कीमत।
0: बहुत अच्छे, चलो एक और छोटी सी कहानी हमारे बच्चों के साथ साझा कर रही हैं यशी।
4: आरव हमेशा अपना काम कल पर टालता था, होमवर्क अधूरा रहता था और परीक्षा में भी उसके कम अंक आते थे। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बंद घड़ी दी और कहा, जो समय रुक जाता है वह किसी के काम नहीं आता। आरव बात समझ गया और उसने समय से पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। अब उसे समझ आ चुका था कि समय की कदर ही सफलता की पहली सीढ़ी है।
0: तो भाई बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये छोटी सी जो कहानी यशी ने हमें सुनाई कि समय कितना कीमती है, हमें समय का एक भी पल नहीं गंवाना चाहिए। अब आगे कौन क्या सुना रहा है?
5: हम दोनों साथ एक की कहानी सुनाएंगे। पहले ये आदी है, फिर आदी मैं।
0: अच्छा, तो कहानी तैयार की है कि कविता?
5: कविता
0: अभी, क्योंकि ये कहानी बोली थी। अच्छा, दोनों जन ने एक ही कविता तैयार की है। बिल्कुल सुनेंगे तुम दोनों की कविता। पहले दोनों जन अपना अपना नाम बताओ। क्या नाम है आपका?
5: शानवी जैन।
0: शानवी, और आपका?
6: कृषिका जैन।
0: कौन सी कविता है?
6: काका लाए एक कार।
0: काका लाए एक कार। तो बच्चों तैयार हो जाओ दोनों से एक ही कविता सुनने के लिए। आधी एक सुनाएगी और आधी दूसरी सुनाएगी। काका लाए एक कार।
6: लाए एक कार, लेकर उसको गए बाजार। एक दो तीन चार, उसके पहिए पूरे चार। पांच जगह हम गए घूमने, छह गोलगप्पे खाए हमने।
5: सात बार शीशी की, आठ गिलास पानी पिया। नौ बजे हम घर को आए, पूरी बात बताए सबको। कहा हमने दस बार सबसे अच्छी अपनी कार।
0: बहुत अच्छे, सबसे अच्छी अपनी कार, क्योंकि इनके काका जी कार लाए थे तो ऑब्वियसली है कार तो अच्छी होनी ही थी, है ना। और सब लोग मिलके बैठ के एक साथ जाते हैं घूमने के लिए। कौन कौन कहाँ कहाँ गया गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए?
5: नानी
0: के घर,
5: मामा की शादी में।
0: अच्छा, भगवान के दर्शन करने गए। भाई ये अच्छा रहता है, गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो सबसे ज़्यादा खुश होती हैं मम्मियाँ, क्योंकि उन्हें अपने अपने मायके जाने को मिलता है ना। तो अब इनकी मम्मियों से जब हम बात करेंगे तब हम उनके अनुभव भी लेंगे। बाकी अभी तो बच्चों की खुशी दिख ही रही है छुट्टियों की। हाँ, तो अब आगे और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है, कौन क्या सुना रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
7: अनुमित।
0: अनुमित क्या सुना रहे हो?
7: कविता।
0: कविता, एक और कविता। कौन सी कविता है बेटा?
7: देशभक्ति।
0: देशभक्ति से जुड़ी हुई कविता। चलो बच्चों, तो आज हम देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं।
8: मिट्टी की खुशबू, वीरों की शान, तिरंगे से ऊंची भारत की शान, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना, यही है हमारा अभिमान।
0: अनुमित आपकी उम्र क्या है बेटा? 8 साल। देखो, इतनी छोटी उम्र में अपने देश के लिए इतनी अच्छी भावनाएं रखना, वाकई में हमारे बच्चे देश से कितने जुड़े हुए हैं ये बात हम समझ सकते हैं। अब और कौन हमारे साथ क्या साझा कर रहा है? बेटा नाम बताओ सबसे पहले अपना।
9: निशान जैन।
0: निशान, क्या तैयार करके आए हो?
9: मेरा परिवार।
0: मेरा परिवार क्या है, कविता है कि कहानी?
9: कविता।
0: कविता, चलो सुनाओ।
9: दादी मेरी कहे कहानी, दादा दे पौधों को पानी, दीदी भैया खेल खिलाते, मम्मी पापा शेर कराते।
0: बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी कविताएं ये छोटे छोटे से बच्चे तैयार करके आए हैं। अब अगला और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
10: आराध्या जैन।
0: और आराध्या क्या सुना रही है हमें?
10: आज मैं आपको एक कहानी सुनाने।
0: कहानी, अच्छा चलो बढ़िया है। कौन सी कहानी है?
10: दो बैलों की कथा।
0: दो बैलों की कथा सुनाओ।
10: दो बैलों की कथा है। पहली बैल का नाम होता है हीरा, दूसरे का मोती। दोनों अपने मालिक जूरी के साथ रहते थे और जूरी उनसे जो भी काम कराता वह करते और जो खाने को देता वह सिर झुका के खा लेते। एक दिन जूरी का साला आया और उन दोनों बैलों को लेके अपने यहाँ लेके चला गया। उन दोनों बैलों को सूखा भूसा दे दिया और एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया। वो दोनों जब वह सब खाने बैठे तब वहाँ से एक छोटी सी बच्ची आई और अपनी एक एक रोटी खिला के चली गई। फिर जब वो चली गई

0: मुख भाषा में बातें की कि अगर हमारे पास वाणी होती तो हम अपने मालिक से पूछते कि उनने हमें क्यों भेजा यहाँ पे सूखा भूसा यहाँ पे दे रहे हैं। जब वह सब सो गए फिर वो दोनों अपने मालिक के पास चले गए। जब जूरी सुबह उठा उन दोनों को देख के जूरी बहुत खुश हुआ। फिर गांव वाले तालियां बजाने लगे और गांव वाले उन दोनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने लगे।
1: बहुत ही अच्छी कहानी है दो बैलों की कथा। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, हमारे सुनने वाले सभी बच्चों को हम बता दें कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है जिसमें दो मूक पशुओं हीरा और मोती की कहानी बताई गई है। इस कहानी के माध्यम से ये भी बताया गया है कि दोस्ती क्या होती है, दोस्ती के साथ साथ स्वामी भक्ति क्या होती है, ये भी इस कहानी के द्वारा बताया गया है। तो अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है, नाम बताओ बेटा आप अपना।
2: मेरा नाम तरुष जैन है।
1: तरुष क्या सुना रहा है?
2: मैं एक कविता यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ।
1: कविता, चलो भैया एक और कविता हमारे साथ लेके आए हैं तरुष।
2: सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे टिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर हरी भरी थी जो सुकुमा, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख फसा, तब समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार।
1: एक छोटी सी चिड़िया की कहानी कविता के माध्यम से हमने तरुष से सुनी। सच बात है, चिड़िया हमें पंख फैला के उड़ना ही नहीं सिखाती, बल्कि सिखाती है कि हम अनुशासन से यदि अपने माता पिता की बात मानें तो हम बड़े आराम से पूरे आसमान को अपने वश में कर सकते हैं। अब आगे और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है बेटा? सबसे पहले आप अपना नाम बताओ।
3: वीर जैन।
1: वीर क्या तैयार करके आया है?
3: कविता।
1: कौन सी कविता है?
3: फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी ढालियों से नित सीखो शीश झुकाना, दूध थता पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना।
1: देखो वीर ने कितनी अच्छी कविता सुनाई है। प्रकृति की हर एक चीज़ हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए और अपनी हर एक चीज़ को बिना किसी शर्त के साझा करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति कभी भी हमसे किसी चीज़ की मांग नहीं करती, बस देती है और देती है, वो हमें देना सिखाती है। अब और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
4: आगम जैन।
1: आगम, आगम क्या तैयार करके आए हो?
4: मैं एक कहानी।
1: कहानी, कौन सी कहानी है?
4: दो दोस्तों की कहानी।
1: दो दोस्तों की कहानी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी भी एक कहानी हमने सुनी, वो भी दोस्ती पे आधारित थी, ये भी है, सुनाओ।
4: दो दोस्त थे, एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था हामिद। वो लोग रेगिस्तान को पार कर रहे थे। अमन की लड़ाई हो गई हामिद से कुछ देर बाद, तो अमन ने हामिद को थप्पड़ मार दिया, तो हामिद ने रेत पर जाके अपनी उंगली से लिखा कि आज अमन ने मुझे थप्पड़ मारा। और फिर कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगने लगी, तो अमन को दूर से एक तालाब जैसा कुछ दिखा, तो उन लोगों को लगा कि वहाँ पे पानी है। वो लोग दौड़ के गए, अमन उस तालाब पर डूब गया, लेकिन वो तालाब नहीं था, दलदल था। फिर अमन गिर गया था दलदल में, तो फिर हामिद ने उसके अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। फिर अमन ने पत्थर पर फिर से लिखा कि आज अमन नहीं, हामिद ने मेरी जान पे खेलकर रक्षा की। फिर हामिद ने यह पूछा कि जब मैंने तुम्हें मारा थप्पड़ तो तुमने रेत पर क्यों लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर क्यों लिखा। तो अमन ने हामिद को यह जवाब दिया कि जब तुमने मुझे मारा तो मैंने इसलिए वो रेत में लिखा कि जब हवा चलेगी तो वो मिट जाएगा। और जब तुमने मेरी जान बचाई तो मैंने पत्थर पर इसलिए लिखा क्योंकि जितनी भी आंधी चल जाएगी लेकिन पत्थर में से वो जो मैंने लिखा है वो नहीं मिटेगा।
1: बहुत अच्छी कहानी है। देखो दो दोस्तों की ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए और बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। अच्छी चीज़ें हमेशा साथ जाती हैं और बुरी चीज़ें अगर हम याद रखेंगे तो सब कुछ ख़राब कर देती हैं। क्या नाम है? अभ्यांक। अभ्यांक कितने साल के हो?
5: 4 साल
1: के हो। अच्छा पढ़ते हो?
5: हाँ।
1: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
5: LKG
1: में पढ़ते हो। क्या सुनाओगे हमको? सुनाओ
5: कविता।
1: कविता सुनाओ।
5: बालक माँ का प्याला ना देख हमारे सबसे महान दाहिन।
1: सही बात है, देश हमारा सबसे महान। और इस महान देश के नाम के साथ समय हो रहा है सभी बच्चों से विदा लेने का। मेरे साथ सब बोलेंगे
6: जय।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। ये आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसमें पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की आवाज़ में फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से।

जतिन ललित का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, अभिजीत की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म का नाम है यस बॉस।

0: जतिन ललित का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म यस बॉस से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेनजोंगा की 5 धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। सरकार वजन और माप की जाँच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जाँच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दिल्ली से आई 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। आज शाम उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कल तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में अब से कुछ देर में 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की संध्याकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसके अंतर्गत रात 7:30 से प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य विषय पर श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर के निमा। कार्यक्रम सुर्खियों में सुनिएगा रात 8:00। 8:15 पर सुनिएगा इंदौर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की, विषय होगा जल जीवन मिशन। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में रात 10:00 सुनिएगा पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है सुधीर बाबू पांडे के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। लीजिए प्रस्तुत है सुधीर बाबू पांडे के आवाज में ये पहला लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुधीर बाबू पांडे द्वारा गाए लोकगीत, प्रस्तुत है एक बधाई गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुधीर बाबू पांडे द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी भोपाल है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत, जहां पहले गीत आपको सुनवा रहे हैं प्रतीक जोसेफ की आवाज़ में फिल्म जोड़ी नंबर 1 से।

0: हिमेश रेशमिया का संगीत प्रतीक जोसेफ के लिखे बोल, उन्हीं की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जोड़ी नंबर वन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जोड़ी नंबर वन। माफ़ कीजिएगा, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जोरू का गुलाम से सोनू निगम और आदेश श्रीवास्तव की आवाज़ में।
1: घोड़ी

आदेश श्रीवास्तव का संगीत समीर के लिखे बोल सोनू निगम और आदेश श्रीवास्तव की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जोरू का गुलाम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है बाबुल सुप्रियो और जसपिंदर नरूला की आवाज़ में फिल्म हेलो ब्रदर से।

साजिद वाजिद का संगीत फैज अनवर के लिखे बोल, बाबुल सुप्रियो और जसविंदर नरूला की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हेलो ब्रदर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म का नाम है हद कर दिया आपने।

आनंद राज आनंद का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हद कर दी आपने से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सोनू निगम, विनोद राठौड़, पूर्णिमा वैजयंती और साथियों की आवाज़ में फिल्म चल मेरे भाई से।

आनंद विनोद का संगीत समीर के लिखे बोल, सोनू निगम, विनोद राठौर, पूर्णिमा वैजयंती और साथियों की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म चल मेरे भाई से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म दूल्हे राजा से, आवाज़ है विनोद राठौर की।

आनंद मिलन का संगीत समीर के लिखे बोल विनोद राठौर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दूल्हे राजा से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर कहा कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य और प्रदूषण के समाधान के साथ ही ईंधन की बचत भी होती है। श्री मांडविया ने कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। सरकार वजन और माप की

0: जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों जीएटीसी की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियमों में संशोधन किया गया है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आज एम्स भोपाल में दिल्ली से आई विशेष फॉरेंसिक टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। आज शाम उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में जारी है। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण।

0: सिंधियत जी सुरहाण ॿुधण वारे सभी रेडियो श्रोताउनि खे कविता चांदवानीअ जी सिक भरी नमस्कार। जय झूलेलाल दोस्तों। दोस्तों, आराम हराम आहे इहो पहाको चयो हो असांजे देश जे पहिरें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जन, जंहिंजो जनम 14 नवंबर 1899 में इलाहाबाद, जंहिंखे असां हाणे प्रयागराज जे नाले सां ॼाणंदा आहियूं, उत्तर प्रदेश में थियो। उन्हनि जे पिता जन जो नालो हो मोतीलाल नेहरू जी, जेके हिकु ॼातल सुञातल वकील हुया। उन्हनि जी लंदन जे हीरो स्कूल ऐं कैम्ब्रिज कॉलेज में पंहिंजी बैरिस्टर जी पढ़ाई पूरी कई। 1919 में महात्मा गांधीअ सां उहे प्रेरित थिया ऐं स्वतंत्रता आंदोलन में अची विया। उन्हनि जो असहयोग आंदोलन ऐं नमक सत्याग्रह जहिड़नि घणेई आंदोलन में बि उन्हनि जो सहयोग रहियो ऐं लॻभॻि 10 सालनि ताईं उहे जेल में रहा। 15 अगस्त 1947 खां वठी 27 मई 1964 ताईं देश जा पहिरियां प्रधानमंत्री बि रहिया। उन्हनि देश में IIT, एम्स, इसरो जहिड़ियूं वॾियुनि वॾियुनि संस्थाउनि जी नींव रखी। उन्हनि देश जी अर्थव्यवस्था खे मज़बूत ठाहिण लाइ पंचवर्षीय जहिड़ियूं योजनाउनि खे बढ़ावो ॾिनो। दोस्तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिकु महान लेखक बि हुया। उन्हनि खे ॿारनि सां ख़ासि लॻाव हो ऐं उन्हनि खे ॿार प्यार सां चाचा नेहरू बि चवंदा हुया। इन करे ई उन्हनि जे जनम ॾींहं खे 14 नवंबर खे असां देश में बाल दिवस जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। त दोस्तो, अचो 27 मई उन्हनि जी पुण्यतिथीअ ते उन्हनि जा जेके ॾेखारियल रस्ता आहिनि उन्हनि खे अपनायूं, त उहा ई उन्हनि लाइ सची श्रद्धांजलि हूंदी। दोस्तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जन खे ॿारनि सां प्यारु हूंदो हो। ॿार चाचा नेहरू उन्हनि खे चवंदा हुआ त अचो इन ई ते ॿुधूं था ॿारनि जो ई सुहिणो गीत आयो फूकड़नि वारो। ढोलन राही जंहिंजो ॻायल ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत।
1: आयो आयो आयो यारो मुल्क सॼे में नाले वारो फूकड़नि।

0: दोस्तों इन गीत खां पो बुधंदासीं ओम प्रकाश टहलियाणी जन जो काव्य पाठ।
1: मेहरबानी कविता, ॾाढो सुठो लॻो। असांजा नई तहीअ जा ॿार मथे था अचनि ऐं हिननि प्रोग्रामनि खे कंपेयर था कनि।
2: धन्यवाद भाउ।
1: तव्हां सां मुखातिब थी मां पंहिंजो कविता पाठ प्रारंभ थो कयां।
2: बिल्कुलु।
1: ग़ज़ल पेशा, मतलाए नेणन जादर नेठ दरे, नेणन जादर नेठ दरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। नेणन जादर नेठ दरे, कुंड पुसाई लुड़क जरे। शेर ॾिसो, ख्वाब ॾिसण जो ढंग न हो, ख्वाब ॾिसण जो ढंग न हो, रहियुसि निंड खां परे परे, कुंड पुसाई लुड़क ज़रे। ऐं नाहक पंहिंजनि जी ॻोल्हा, नाहक पंहिंजनि जी ॻोल्हा, केरु जीए गॾु केरु मरे। नाहक

0: रंजन जी गोला केर जिए गद केर मरे कुंड पुसाई लुड़क जरे। यही शेर दिसो। उन्या उन्या सदा जिन नजरन में, उन्या सदा जिन नजरन में, तिन सा किन जो हाँ ठरे। उन्या सदा जिन नजरन में, तिन सा किन जो हाँ ठरे। ऐं ॼार विछाइण जी साज़िश, ॼार विछाइण जी साज़िश सयादनि सां केरु करे।
1: तमाम सहणो।
0: ॼार विछाइण जी साज़िश सयादनि सां केरु करे। कुंड पुसाई लुड़क ज़रे ऐं झूना थी विया रांदीका, झूना थी विया रांदीका, हिकड़ो न हिकड़ो रोज़ खरे। झूना थी विया रांदीका, हिकड़ो न हिकड़ो रोज़ खरे। कुंड पुसाई लुड़क ज़रे। ऐं मक्ता खां पहिरीं हिकु ॿ शेर ॿिए बि। किन यारनि घर माउ ॾिसी, किन यारनि घर माउ ॾिसी, मूं जहिड़ो हर ॿार ॻरे। किन यारनि घर माउ ॾिसी, मूं जहिड़ो हर ॿार ॻरे। कविता, माउ असां ॿोलीअ खे बि चवंदा आहियूं, यादि?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: किन यारनि घर, किन यारनि घर माउ ॾिसी, मूं जहिड़ो हर ॿार ॻरे। ऐं यार अची वञ, यार अची वञ महफ़िल में, तो बिन मुंहिंजी की न सरे। यार अची वञ महफ़िल में, तो बिन मुंहिंजी की न सरे। कुंड पुसाई लुड़क ज़रे। ऐं हाणे पखी घर हलणो आ, हाणे पखी घर हलणो आ, नंढड़ा नंढड़ा पेर भरे, नेणन जा दर नेठ दरे, कुंड पुसाई लुड़क ज़रे।
1: वाह वाह वाह वाह, तमाम सुहिणी।
0: मेहरबानी कविता, हिकिड़ो ही गज़ल ॾिसो। यादि ईंदे ई बस हली अचिजे, यादि ईंदे ई बस हली अचिजे, दिलि न भरिजे वरी वरी अचिजे। यादि ईंदे ई बस हली अचिजे, दिलि न भरिजे वरी वरी अचिजे। ऐं हाल बीमार जो था रोज़ पुछो, हाल बीमार जो था रोज़ पुछो, का दवा भी कॾहिं खणी अचिजे।
1: वाह वाह, ॾाढी सुंदर
0: हाल
1: सुहिणी।
0: बीमार जो था रोज़ पुछो, का दवा भी कॾहिं खणी अचिजे। दिलि न भरिजे वरी वरी अचिजे। ऐं हाय हाय कातिल अदा ऐं बाहे अखियूं, हाय कातिल अदा ऐं बाहे
1: बाहे अखियूं,
0: अखियूं, दिल करे थी बरी ठरी
1: अच्छे
0: अचिजे। दिल न भरजे वरी वरी अचिजे। ऐं घाव घाव आशिक ॾियण छॾे बि नथो, घाव आशिक ॾियण छॾे बि नथो, हल वरी हिकु दफ़ो मरी अचिजे। घाव आशिक ॾियण छॾे बि नथो, हल वरी हिकु दफ़ो मरी अचिजे। ऐं खाली पैमानो भरिजी वेंदो वरी, खाली पैमानो भरिजी वेंदो वरी, मैक दे मां न बुत बणी अचिजे।
1: वाह वाह वाह वाह, मजो अची वियो।
0: खाली पैमानो भर जी वेंद वरी मैं कदे मान बुत बने अचजे दिल न भर जे वरी वरी अचजे ऐं मक्ता है भल परावा पखी लगन पंहिंजा भल परावा पखी लगन पंहिंजा झुंड पंहिंजे फिरी घिरी अचजे झुंड पंहिंजे फिरी घिरी अचजे दिल न भरजे वरी वरी अचजे याद ईंदे ई बस हली अचजे। अचो हिकिड़ो गज़ल ॿियो बि ॿुधूं। तुंहिंजी ॻाल्हियुनि खे ॿुधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? तुंहिंजी ॻाल्हियुनि खे ॿुधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? डोड़ा तो लाइ बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? तुंहिंजी ॻाल्हियुनि खे ॿुधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? डोड़ा तो लाइ बीहण जी कंहिंखे फुर्सत
1: आहे?
0: ऐं ख़ूबसूरत गुल भली वण ते लुॾी केॾो ख़ूबसूरत गुल भली वण ते लुॾी केॾो अख खणी तो ॾे ॾिसण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? डोड़ा तो लाइ बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? ऐं भल अदब खे प्यार रखनि जीअरो कलम वारा भल अदब खे प्यार रखनि जीअरो कलम वारा पर किताबनि खे पढ़ण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? डोड़ा तो लाइ बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? ऐं का गिला कंहिंजी न किल किल चोट अखरनि जी का गिला कंहिंजी न किल किल चोट अखरनि जी अहिड़ी दुनिया ॾे वधण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? डोड़ा तो लाइ बीहण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? ऐं मज़हबी माण्हुनि मज़हबी माण्हुनि सिंधियुनि खे छॾियो चीरे मज़हबी माण्हुनि सिंधियुनि खे ई छॾियो चीरे घाव गहरनि खे भरण जी
1: कंहिंखे फुर्सत आहे?
0: घाव गहरनि खे भरण जी
1: कंहिंखे फुर्सत आहे?
0: कंहिंखे फुर्सत आहे? ऐं मक्ता आहे मोह माया खां पखी मोह माया खां पखी न्यारो सदा रहिजे मोह माया खां पखी न्यारो सदा रहिजे अहिड़ा पर खोले उॾण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? अहिड़ा पल खोले उॾण जी
1: कंहिंखे फुर्सत
0: आहे? डोड़ा तो लै भेण जी कंहिंखे फुर्सत आहे? महिरबानी भेण कविता, महिरबानी सभिनी। सिंधी जिंदाबाद।
2: हिन काव्य पाठ खां पोइ ॿुधंदासीं हिकु सुहिणो गीत, सिक आहे या सूर, कमला केसवानी जंजो ऐं सतराम रोहिड़ा जंजो गायल ऐं गोर्धन भारती जंजो लिखियल, सी अर्जुन जंजी म्यूज़िक में ॿुधंदासीं हीउ सुहिणो गीत।

दोस्तों अचण वारी 28 मई ते ईद उल अजा जैके अस बकरीद के नाले से भी जानना आयो इस्लाम धर्म जो ही तमाम महत्वपूर्ण दिन है। हि दिन असा के करुणा त्याग सेवा समर्पण ए भगवान के प्रति समर्पण जो संदेश दींद। दोस्तों तांके खबर आ तो भारत सरकार राज्य सरकार से मिली करे वक्त वक्त ते अल्पसंख्यक समुदाय आहिन उनन जे कल्याण ला तमाम योजनाओं हलाइंदी आ। इनन योजनाओं जो मकसद यो आ त देश में शिक्षा रोजगार विकास आर्थिक सहायता ए समाज जो कल्याण थे। दोस्तों सरकार हर तकते ला हर माण्हू ला अलग अलग योजनाओं हलाइंदी आ। जे जेके बार पढ़न था पहिरीं खां ॾहीं क्लास ताईं उन्हनि लाइ अलॻि योजनाऊं हूंदियूं आहिनि। जेके ॾहीं खां वधीक क्लास था पढ़नि उन्हनि लाइ अलॻि योजनाऊं आहिनि। अलॻि अलॻि इस्पतालूं खोलंदियूं आहिनि, अलॻि अलॻि कॉलेज खुलंदा आहिनि, नई रोशनी जहिड़ियूं योजनाऊं जंहिंमें माइयुनि खे उन्हनि खे विकास लाइ उन्हनि खे ट्रेनिंग ॾेई वेंदी आहे जीअं उहे अॻियां वली पंहिंजे पेरनि ते बीह सघनि। सीखो कमाओ योजना जंहिंमें सेखारे करे उन्हनि खे नौकरी ॾेई वेंदी आहे जीअं उन्हनि जे घर जो ख़र्च बि हले। घटि व्याज ते उन्हनि खे पैसा ॾींदा आहिनि अगरि उन्हनि खे पंहिंजो धंधो चालू करिणो आहे, कमु चालू करिणो आहे त उहो बि चालू था करे सघनि। जेके ग़रीब ॿार आहिनि पढ़ी नथा सघनि, जंहिंखे UPSC SSC बैंक जे जहिड़ा एग्ज़ामनि जी तयारी करण लाइ उन्हनि लाइ योजनाऊं आहिनि। दोस्तो तमामु अहिड़ियूं योजनाऊं आहिनि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। त दोस्तो चवण जो मक़सदु इहो ई आहे त देश में अगरि कहिड़ो ॿार पढ़णु चाहे त उन लाइ योजना अलॻि आहे। कहिड़ी माई अगरि चाहे मूंखे कमु करिणो आहे जाइफ़ा त उहो पंहिंजो कमु थी करे सघे। केरु अगरि उधमी आहिनि नया ॿार आहिनि जंहिंखे लॻे थो की मूंखे पंहिंजो बिज़नेस चालू करिणो आहे पर मूंखे उन बिज़नेस लाइ पैसा कोन्हनि त गवर्नमेंट उन लाइ योजनाऊं आहिनि चालू कयूं आहिनि। पर दोस्तो सुजाॻी ज़रूरी आहे। योजनाऊं ॾाढियूं आहिनि, असांखे फ़ाइदो तॾहिं मिलंदो जॾहिं असां में सुजाॻी हूंदी। अगरि असांखे ख़बर आहे त फ़र्ज़ु आहे त असां पंहिंजे जेके रिश्तेदार मिट माइट दोस्त यार आहिनि सभिनि में ॿुधायूं कीअं उन्हनि जो फ़ाइदो वठी था सघूं, कीअं उन्हनि जा पोर्टल आहिनि, कीअं उन्हनि जा फॉर्म भरे करे उन्हनि जा जेको फ़ाइदो आहे मिली सघे थो। दोस्तो इन ॼाण खां पोइ ॿुधंदासीं भगवंती नावाणी जन जो ही सुहिणो गीत सारे जग जा।

दोस्तो, हिन गीत सां गॾु ई अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थियो आहे। पर दोस्तो, हलंदे हलंदे मां हिकु नंढी हिदायत तव्हांखे ॾियणु चाहींदसि त ॿाहिरि ॾाढी उस आहे, लू जा थपेड़ा था हलनि। दोस्तो, सावधानी रखो, पंहिंजो ख़्यालु रखो जेतिरो थी सघे, अगरि ॾाढो ज़रूरी न आहे। दोस्तो, मजबूरी आहे, नौकरीअ ते वञिणो आहे, कम ते वञिणो आहे, अगरि ज़रूरी न आहे त घर खां ॿाहिरि न निकिरो, पंहिंजो ध्यानु रखो। हिन सां गॾु ई अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थियो। वरी जल्द मिलंदासीं हिकु नए समाचार सां, हिकु नई ख़ुशीअ सां। जेसिताईं पंहिंजी रेडियो साथी कविता चांदवानीअ खे ॾींदा इजाज़त। जय झूलेलाल, सभ जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुनहान। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर ग।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी भोपाल है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र की 11वीं कड़ी।

0: प्रणाम श्रोतागण, आप सबके साथ मैं भी प्रस्तुत हूँ पंचतंत्र की कथाओं का रसास्वादन करने के लिए। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पंचतंत्र का चौथा प्रकरण लब्ध प्रणाशम, जिसे पंडित विष्णु शर्मा ने इस प्रकार प्रारंभ किया। समुत्पन्नेषु कार्येषु
1: समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते स एव दुर्गतरति जलस्थो वानरो यथा। अर्थात कार्य में विपत्ति के आ जाने पर जिस व्यक्ति की बुद्धि क्षीण नहीं होती है वह दुर्गम मार्गों को भी पार कर सकता है। जैसे जल में निवास करने वाले रक्तमुख नाम के वानर ने अपनी बुद्धि के द्वारा एक बहुत बड़ी विपत्ति को पार कर लिया। वत्सगण सुनो, समुद्र के किनारे सभी ऋतुओं में फलने वाला एक विशाल जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर रक्तमुख नाम का एक वानर निवास करता था। किसी दिन संयोग से कराल मुख नाम का एक मगर समुद्र से निकलकर उस वृक्ष के नीचे कोमल बालुका भूमि पर बैठ गया। उसे देखकर रक्तमुख ने कहा,

0: महाशय, आप मेरे घर आए हुए अतिथि हैं। आइए इस अमृत के समान मधुर जामुन का आनंद लीजिए। अतिथि तो नारायण का रूप होते हैं।
1: अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है मित्र, मैं अवश्य मीठे जामुन खाऊंगा। आज से हम मित्र हैं, मैं तुम्हें शास्त्र पाठ सुनाया करूंगा। वाह, अरे वाह मित्र वाह, ये तो सचमुच बड़े स्वादिष्ट है। मैं कुछ फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। हाँ, अरे वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी, वो बेचारी अकेली घर में रहती है, ऐसे फल उसे कहाँ मिलते हैं।
0: अवश्य मित्र, परंतु तुम्हारे भाग का तुम खा लो, मैं भाभी के लिए और मीठे जामुन तोड़ कर ला देता हूँ, और भाभी को देवर की ओर से प्रणाम देना मित्र।
1: अवश्य दूंगा मित्र, अवश्य दूंगा, आज मैं चलता हूँ भाई। प्रिय प्रिय, अरे कहाँ हो तुम? अरे शीघ्र आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ।
2: नाथ, अच्छा
1: देखो देखो।
2: वाह क्या स्वाद है, तुम इन अमृत तुल्य फलों को कहाँ से लाए हो?
1: भद्रे, रक्तमुख नाम का वानर मेरा अत्यंत घनिष्ठ मित्र हो गया, वही प्रेम पूर्वक प्रतिदिन इन फल को देगा, वो इसी फल वृक्ष में रहता भी है।
2: अच्छा। जो सदा इन अमृत तुल्य फलों को खाता है उसका हृदय भी अमृत के समान होगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उसका हृदय ला कर दो, ताकि उसे खाकर मैं अमर हो जाऊं और तुम्हारे साथ आनंद भोगती रहूं।
1: प्रिय, ऐसी बात न कहो, वो मेरा भाई है, इस बात को मैं स्वीकार कर चुका हूँ, वो रोज फल देता है, मैं उसे मार नहीं सकता, इस निरर्थक आग्रह को तुम छोड़ दो।
2: इससे पूर्व कभी तुमने मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं किया, जान पड़ता है वो कोई वानरी है, तुम्हें उससे अनुराग हो गया है, इसी कारण तुम दिन भर वहीं रहते हो।
1: ये तुम क्या कह रही हो, तुम व्यर्थ ही संदेह कर रही हो।
2: आज मैं तुम्हें भली भांति समझ गई हूँ, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रसन्न मन से नहीं दे रहे हो और मेरे मन की कोई इच्छा भी पूरी नहीं करते हो। धूर्त, तुम्हारे हृदय में मेरी ही तरह कोई दूसरी प्रियतमा है।
1: नहीं नहीं प्राण प्रिय, अब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर चुका हूँ और दास्ता के लिए प्रस्तुत हूँ, मुझ पर इतना प्रसन्न क्यों हो रही हो?
2: देखो इस प्रकार मेरे चरणों में बैठकर झूठे प्रेम का ढोंग करना व्यर्थ है। यदि वो सचमुच वानर है तो उसके प्रति तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह क्यों? यदि तुमने मुझे उसका हृदय लाकर नहीं दिया तो आज से मेरा अनशन है।
1: क्या करूं? अरे अरे मैं उसे कैसे मार सकता हूँ?
0: आओ आओ मित्र, आज इतने दिनों बाद क्यों आए? क्या बात है, सदा की भांति प्रसन्न नहीं हो, इस उदासी का क्या कारण है?
1: मित्र, तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत डांटा फटकारा।
0: हाँ?
1: उसने मुझसे कहा है कि मैं कृतघ्न हूँ।
0: क्यों बोला?
1: और मैं उसे अपना मुंह न दिखाऊं।
0: अरे रे रे, ऐसी क्या बात हो गई?
1: क्योंकि भैया मैं रोज तुम्हारे घर आकर जामुन खाता हूँ और तुम्हारा कोई भी उपकार नहीं करता, कभी तुम्हें घर भी नहीं ले जाता, इसलिए आज मैं तुम्हें घर लेकर ही चलूंगा, अन्यथा वो मुझसे परलोक में ही मिलेगी।
0: ओह ये बात है, अरे मित्र इसमें कौन सी आपत्ति है, चलेंगे कभी, चलेंगे जरूर चलेंगे।
1: नहीं नहीं मित्र, आज ही चलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ,
3: तुम्हारी भाभी तुम्हारी प्रतीक्षा में चौका सजाकर सुंदर गहनों और वस्तुओं से श्रृंगार करके द्वार पर वंदनवार सजाकर उत्कंठा पूर्वक बैठी है।
0: मित्र, मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूँ, परंतु हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, जल के भीतर कैसे जा सकते हैं? आप भाभी को यहाँ ले आए जिससे मैं प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद ले सकूं।
3: रक्तमुख भाई, समुद्र के भीतर एक अत्यंत रमणीय टापू पर मेरा घर है।
0: अच्छा,
3: तुम मेरी पीठ पर बैठकर अत्यंत सुख से निर्भय होकर वहां पहुंच सकते हो।
0: यदि ऐसी बात है तो विलंब क्यों, शीघ्र चलें। लीजिए, मैं आपकी पीठ पर चढ़ जाता हूँ।

0: भाई तनिक धीरे धीरे चलिए, जल की इन लहरों से मेरा शरीर भीगता जा रहा है, ऐसा लगता है मैं अभी डूब जाऊंगा।
1: अब तुम्हें ऐसे बीच सागर में ले आया हूं, ये अब मेरे वश में है, कहीं इधर उधर भाग नहीं सकता।
0: संभाल के थोड़ा।
1: अब मुझे असली अभिप्राय कह ही देना चाहिए ताकि ये अपने इष्ट देव को स्मरण कर ले।
2: रक्तमुख, स्त्री की बातों का विश्वास दिलाकर मैं तुम्हें यहां मारने के लिए लाया हूं। तुम अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो।
0: भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिससे आपने मेरे वध का निश्चय किया?
2: मेरी स्त्री ने कहा है कि नित्य मधुर जामुन को खा खा कर तुम्हारा हृदय स्वादिष्ट हो गया है, इसीलिए वो तुम्हारे हृदय मांस को खाना चाहती है।
0: दुष्ट, अभी बताता हूं। भद्र, यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना हृदय जामुन वृक्ष की कोटर में सुरक्षित रखा है, मैं उसे लाकर भावी को समर्पित कर देता। आप मुझे हृदयहीन बनाकर यहाँ क्यों लाए? हम वानर हृदय को सुरक्षित रखने के लिए अपने शरीर से अलग ही रखते हैं।
2: अरे मित्र, यदि ऐसी बात है तो फिर मैं पुनः तुम्हें उसी जामन वृक्ष पर पहुंचा देता हूं। तुम मुझे अपना हृदय दे देना ताकि मैं अपनी दुष्ट पत्नी के अनशन को तोड़ सकूं।
0: हे प्रभु, शीघ्र ही किनारे पहुंचा दो।
2: लो मित्र, तट आ गया। अरे तुम तो पहले ही कूद गए हैं। अरे वृक्ष पर भी पहुंच गए।
0: आज बड़े भाग्य से मेरे प्राण बच गए और मैं सकुशल लौट आया।
2: अरे मित्र, ए मित्र।
0: हाँ?
2: अरे अपना वो हृदय तो मुझे दे दो जिसे खाकर तुम्हारी भाभी अपना अनशन व्रत तोड़ दे।
0: मूर्ख, विश्वासघाती, क्या किसी के दो हृदय होते हैं? तुम इस जामुन के पेड़ के नीचे से शीघ्र ही चले जाओ और फिर कभी इधर ना आना।
2: अरे अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। चलो पुनः प्रयत्न करता हूं, संभव है मेरे कहने में आकर वो पुनः मेरा विश्वास कर ले। अरे मित्र, अरे मैंने तो तुम्हारी मित्रता की परीक्षा ली थी। तुम्हारी भाभी को हृदय की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
0: दुष्ट, यहां से तत्काल चले जाओ। अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। प्रियदर्शन सर्प से कह दो कि अब गंगदत्त पुनः कुएं में जाने वाला नहीं है।
2: क्या मतलब? अरे जरा साफ साफ समझाओ।
0: किसी नगर में गंगदत्त नाम का एक मेंढक रहता था। उसने अपने कुटुंबजनों से अपमानित होकर प्रियदर्शन नाम के एक सर्प को उन सभी कुटुंबजनों को मारने के लिए नियुक्त किया।
2: अच्छा, अच्छा।
0: उस सर्प को उसी कुएं में रहने का प्रबंध भी कर दिया। जब उस प्रियदर्शन सर्प ने उसके सारे कुटुंबजनों को खा लिया, तब गंगदत्त के परिवारजनों को खाना प्रारंभ कर दिया। गंगदत्त अपने किए पर पश्चाताप करने लगा, किसी तरह कुएं से निकलकर भागा। प्रियदर्शन के लाख समझाने और मित्रता की दुहाई देने पर भी वो कुएं में नहीं लौटा। इस कारण मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगा कराल मुख।
2: मैं जानता हूं मित्र, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, परंतु यदि तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं अनशन करके यहीं पर प्राण त्याग दूंगा।
0: तुम्हारे जो मन में आए करो, परंतु तुमने जो कपट किया है वो अक्षम्य है। तुम स्त्रैण हो, पत्नी की बातों में आकर तुमने अपने मित्र के प्राणों को लेने की सोची। सच है, स्त्री की बातों में आकर पुरुष उन्हें क्या क्या नहीं दे डालता। क्या क्या नहीं करता। तुमने नंदवर रुचि की कथा सुनी है?
2: नहीं तो।
0: तो सुनो, किसी राज्य में नंद नाम का अत्यंत प्रसिद्ध बलवान और पराक्रमी राजा राज्य करता था।
2: अच्छा।
0: अनेक राजाओं की मुकुटमणियों की

0: पूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था। उसका वररुचि नाम का एक मंत्री था।
1: अच्छा।
0: वो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। एक बार उसकी स्त्री के साथ उसका कलह हो गया।
1: अच्छा।
2: पिए, ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे रुष्ट हो गई? कल से तुम्हारे स्वभाव में ये परिवर्तन देख रहा हूँ।
3: आप मुझसे न ही पूछे तो उचित होगा। इस समय मैं अपने आपे में नहीं हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दें।
2: पिए, तुम जैसे भी प्रसन्न हो सकती हो कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करूँगा।
3: यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुने। अगर आप अपना सिर मुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर जाएं, तो मैं प्रसन्न हो सकती हूँ।
4: वर रुचि ने वही किया। फिर उसकी स्त्री मंदारी प्रसन्न हुई। इधर संयोगवश महाराज नंद से उनकी महारानी कुपित हो गई थी। किसी भी प्रकार महाराज उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे।
5: महारानी, आप क्यों क्रोधित हो रही हैं? आपको ये करना क्या शोभा देता है?
6: महाराज, मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये आप मुझे ना समझाएं। मैं भी महाराज अधिराज अमर शक्ति की एकमात्र पुत्री हूं। महारानी की क्या मर्यादा है, ये मैं आपसे नहीं सीखूंगी।
5: प्रिय, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुम्हें मनाऊं।
6: आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपके मुख पर लगाम लगाकर दौड़ाती हूं। मेरे दौड़ाते समय यदि आप घोड़े की तरह हिन हिन आएंगे तो मैं आप पर प्रसन्न हो जाऊंगी।
5: अरे आप यह क्या कह रही हैं?
4: विवश होकर राजा ने वही किया जो महारानी ने कहा। तदंतर वो भी प्रसन्न हो गईं।

दूसरे दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज नंद के समक्ष जब वररुचि आए तो उनको मुंडित देखकर राजा ने पूछा,

0: वरुचि, किस पर्व पर तुमने ये मुंडन कराया है?
1: महाराज, स्त्रियों के आग्रह से मनुष्य क्या नहीं करता। जिस पर्व में वो घोड़ी की तरह हिनहिनाता है, मैंने उसी पर्व में मुंडन करवाया है।
0: अच्छा।

0: दुष्ट मकर, तुम भी नंद और वर रुचि की तरह स्त्रैण हो, इसलिए उनके कहने से तुमने मुझे मारने का प्रयास किया।
1: मगरमच्छ अभी वार्तालाप कर ही रहा था कि किसी जलचर ने आकर कहा कि उसकी स्त्री जो अनशन पर बैठी थी वो उसे देर होती देख और स्वयं को तिरस्कृत समझकर मर गई। कराल मुख वज्रपात के समान शब्दों को सुनकर शोक से व्याकुल हो उठा।
2: ओह, मुझे अभागे पर ये क्या विपत्ति आ गई। मित्र, मैंने जो तुम्हारा अपराध किया है इसके लिए क्षमा कर दो। अब मैं स्त्री के वियोग में अग्नि

0: अग्नि में प्रवेश करके प्राण दे दूंगा।
1: अरे भाई, ये तो मैं पहले ही जान गया था कि तुम स्त्री से वशीभूत हो। अब तो पूर्ण विश्वास भी हो गया। मूर्ख, ये तो आनंद का अवसर है। ऐसी स्त्री के मर जाने पर तो उत्सव मनाना चाहिए।
0: हे वानर, तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु मैं क्या करूं? मुझ पर तो एक साथ दो विपदाएं आ पड़ी हैं। एक तो स्त्री के मर जाने से मेरा घर भी नष्ट हो गया है, दूसरा मेरे मित्र से मनोमालिन्य हो गया है।
2: इसी वार्तालाप के बीच एक अन्य जलचर ने आकर मगरमच्छ से कहा कि तुम्हारे घर में किसी दूसरे मगरमच्छ ने आधिपत्य कर लिया है।
0: हाय हाय, अरे मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा मित्र भी शत्रु बन गया है, उधर मेरी स्त्री भी मर गई, साथ ही मेरे घर में भी किसी ने आधिपत्य कर लिया। पता नहीं अभी और क्या क्या होने वाला है। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं? साम दाम दंड भेद किसका प्रयोग करूं?
1: अरे कृतघ्न पापी, मेरे मना करने पर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुम्हारे जैसे मूर्ख को मैं कोई उपदेश भी नहीं देना चाहता। यद्यपि स्त्री संसार में सबसे प्रिय होती है, तथापि उसके कहने से मित्रों और भाइयों को समुद्र में नहीं डुबोया जाता।
0: भद्र, विद्वानों का कथन है, एक साथ सात पग चलने से ही सज्जन दूसरों को अपना मित्र मान लिया करते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे साथ बहुत दिनों तक बैठा हूं, अतः पुरानी मित्रता को सामने रखकर इस विश्वासघाती मित्र को उचित परामर्श देने की कृपा करो।
1: भद्र, यदि ऐसी बात है तो वहां जाकर उस मगर के साथ युद्ध करो। युद्ध में अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि भाग्य से जीवित बच गए तो घर के साथ साथ यश भी मिलेगा।
0: अच्छा।
1: नीति शास्त्र में कहा गया है कि समान शक्ति संपन्न शत्रु के साथ युद्ध करके उसे शांत करना चाहिए।
2: कराल मुख ने वानर के विचार को सुनकर युद्ध करने का निश्चय करके घर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वो अपने घर में घुसे आतताई के साथ युद्ध करने को प्रवृत्त हो गया, और अपनी दृढ़ता और साहस से उसने पुनः अपना घर प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगा।

सच ही कहा गया है। बिना पुरुषार्थ के अनायास ही प्राप्त होने वाली लक्ष्मी से यदि सुख मिल भी जाता है तो उससे उतनी प्रसन्नता एवं तुष्टि नहीं हो पाती जितनी की पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की हुई लक्ष्मी से होती है। रसिक जन, कैसी लगी ये कहानी हमें अवश्य बताएं। लब्ध प्रणाशम नामक ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रकरण अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय सुनना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम पंचतंत्र, ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल के उर्दू नशरियात के तहत समात फरमाएं सोमवार सुबह 9:30 उर्दू प्रोग्राम आईना।
2: आकाशवाणी भोपाल का ये आईना दर हकीकत उर्दू अदब का आईना है, जिसमें हम शायरी, मजाकरे, मजामीन और अफसाने जैसी अदब की मुख्तलिफ असनाफ आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
3: दुनिया को जिन्होंने अहिंसा का मंत्र दिया वो थे महात्मा गांधी।
4: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।
3: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।

0: भारत के संविधान की प्रस्तावना।
1: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के संविधान की प्रस्तावना।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, 5 बजने वाले हैं। डीटीएच के साथ अब हमारा प्रसारण मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्ज पर आरंभ होता है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर कहा कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य और प्रदूषण के समाधान के साथ ही ईंधन की बचत भी होती है। श्री मांडविया ने कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। गंगा दशहरा पर्व के पावन अवसर पर 25 मई को जल गंगा संवर्धन अभियान को जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक जल संरक्षण गतिविधियों और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जन जन को इस पुनीत कार्य से सीधे जोड़ा जा सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में जारी है। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 5:02 हुए हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे गर्मी के मौसम में लू से बचे विषय पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय है मरकोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का पालन करने और राष्ट्र के हित में योगदान देने पर। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें विषय पर। वार्ताकार है प्रज्ञा गौतम। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा जैसी संगत वैसी रंगत। और दोस्तों, हम आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं गर्मी के मौसम में लू से बचे विषय पर। दोस्तों, गर्मी के मौसम में लू से बचाव आवश्यक है। गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, उच्च तापमान और कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में यदि सही सावधानी न बरती जाए तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। सही खान पान, पर्याप्त पानी का सेवन और दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेनी है। शरीर से पसीने के रूप में पानी की कमी तेजी से होती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त

लें और सलाद का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, इस मौसम में धूप से बचाव भी अत्यंत आवश्यक है। तेज धूप में अधिक देर तक रहने से लू हीट स्ट्रोक लग सकती है, जो गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए दोपहर के समय खासकर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सर ढककर, हल्के ढीले कपड़े पहनकर, धूप का चश्मा लगाकर या छाते का उपयोग करके जाना चाहिए। इससे शरीर को धूप के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों, गर्मियों में पर्याप्त आराम और नींद लेना भी बेहद जरूरी है। अधिक गर्मी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए दिन भर में थोड़ा विश्राम करना और रात में पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। साथ ही हल्का व्यायाम, योग करना भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। गर्मी में चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहने, सकारात्मक सोच रखने और ठंडी जगहों पर समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। संगीत सुनें, किताबों को पढ़ें और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान होती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव से संभव है। यदि हम पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें, धूप से बचाव करें, तो हम इस मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं और लू से अपने आप को बचा सकते हैं। साथियों, अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय मार्कहॉर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों, मार्कहॉर एक खूबसूरत और दुर्लभ जंगली बकरी है, जो अपने लंबी और मुड़ी हुई सींगों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रजाति मुख्य रूप से भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्राणी की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मार्कहॉर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मार्कहॉर की आबादी पिछले दशकों में बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण शिकार, प्राकृतिक आवास का विनाश और घरेलू पशुओं के साथ चराई के लिए संसाधनों की प्रतिस्पर्धा है। ग्रीन बेल्ट के संरक्षण के प्रयासों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही यह प्रजाति अब धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य लोगों को इस प्राणी और इसके आवास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। साथियों, इस दिन का महत्व केवल मार्कहॉर की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह दिन हमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को भी याद दिलाता है। मार्कहॉर शाकाहारी होते हैं और वे पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पतियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए मार्कहॉर की सुरक्षा केवल एक प्रजाति को बचाने का नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा का संदेश देती है। मार्कहॉर के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई गांवों ने संरक्षण के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। वे अपने इलाके में राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों का ध्यान रखते हैं। इन क्षेत्रों में पारंपरिक शिकार को नियंत्रित करने और पर्यटन के माध्यम से आय बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार स्थानीय लोग संरक्षण के साथ साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्कहॉर की सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर जैसी संस्थाएं सरकारों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मार्कहॉर की आबादी पर नजर रखती है और कानूनों का पालन सुनिश्चित करती है। यह सहयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जंगली जानवरों की सुरक्षा केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रह सकती। दोस्तों, कह सकते हैं कि मार्कहॉर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं है, बल्कि यह हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और जैव विविधता के महत्व का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि प्रजातियों की सुरक्षा में हमारा योगदान आवश्यक है और हमारे छोटे छोटे प्रयास भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मार्कहॉर की सुरक्षा न केवल इस सुंदर प्राणी के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मार्कहॉर का अस्तित्व हमें आशा, धैर्य और प्राकृतिक सुंदरता की याद दिलाता है। इसे संरक्षित करना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा दायित्व भी है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का अनुसरण करें और राष्ट्रहित में योगदान दें पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 प्रमुख अपील जनता से की। उन्होंने कहा ईंधन का बचाव करें, विदेश यात्रा से बचें, सोने की खरीदारी कम करें, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, खाद्य तेल का उपयोग कम करें, रासायनिक उर्वरकों में कटौती करें, साथ ही वोकल फॉर लोकल का पालन करें। दोस्तों इन सभी बातों का मुख्य उद्देश्य खपत को कम करना है। साथियों हम सभी अगर इन बातों का अनुसरण करते हैं तो इससे हमारा ही फायदा है। जैसे ईंधन का बचाव अगर होता है तो पेट्रोल डीजल का उपयोग हम कम कर पाएंगे, इससे हमारा खर्चा कम होगा और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इससे हमारी मुद्रा विदेश में जाने से बची रहेगी। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है प्रज्ञा गौतम।
1: आज के इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हमारे दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने से लेकर व्यवसायों को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। साथियों सोशल मीडिया विभिन्न प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विचारों एवं सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों सोशल मीडिया की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 5 अरब से भी अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं जो विश्व की लगभग 62% आबादी के बराबर है। साथियों सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने, दूसरों के साथ बातचीत करने और समुदाय बनाने की अनुमति देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। साथियों आज हम सोशल मीडिया के समझदारी पूर्वक उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों डिजिटल युग में सोशल मीडिया के फायदे निर्विवाद हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने से लेकर एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल के रूप में काम करने तक सोशल मीडिया भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को एक साथ लाता है और हमारे संवाद करने को एक नया रूप देता है। दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठे अपने दोस्तों और परिजनों से वीडियो कॉल करके जुड़ सकते हैं, उनके साथ होने का अनुभव कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं साथियों, व्यवसाय एवं उद्योग जगत में भी सोशल मीडिया के साधनों के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। दोस्तों वर्तमान समय में शिक्षा क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी सुलभता से करते हैं। निसंदेह सोशल मीडिया तेज गति वाले डिजिटल युग में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है जो हमारे

जुड़ने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को नया आकार देता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया ने जहां कनेक्टिविटी के लिए कई लाभ और अवसर प्रदान किए हैं, वहीं यदि इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया जाए तो इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन करते समय विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है और बच्चे, यहाँ तक कि बड़े विद्यार्थी भी पढ़ाई करते हुए अन्य मनोरंजक चीज़ें देखने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी वायरल पोस्ट या संदेशों के माध्यम से फर्जी खबरें और दुष्प्रचार करना बहुत आसान है, जिससे गुमराह होने की अधिक संभावना रहती है। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने और डेटा चोरी जैसी घटनाओं से उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता होता है और दोस्तों, कई बार तो यूज़र को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का सबसे बुरा प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर पड़ा है। लोग सार्थक रिश्तों के स्थान पर सोशल मीडिया पर जुड़े रिश्तों को अधिक समय और महत्व देने लगे हैं। आजकल हम देखते हैं कि एक ही घर में सभी सदस्य साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद हानिकारक है। इससे लोगों की वास्तविक रिश्तों और खुशहाली में बाधा उत्पन्न होती है। साथियों, गुमनाम और फेक अकाउंट्स के माध्यम से मशहूर हस्तियों सहित जनसाधारण को ट्रोल करना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही फर्जी अकाउंट बनाकर पहले लोगों से दोस्ती करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना और बाद में ब्लैकमेल करने जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इन सब का कारण कहीं ना कहीं लोगों का लापरवाही से सोशल मीडिया का उपयोग करना है, जैसे अनजान लोगों से दोस्ती करना, उन पर भरोसा करना लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना आजकल बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में लोगों से व्यक्तिगत संपर्क, संचार और सामाजिकता कम हो रही है, जिससे व्यक्ति सबसे कटकर अकेला रहना पसंद करने लगा है। साथियों, एक अध्ययन से पता चलता है कि लोगों में, विशेष रूप से किशोरावस्था में, सोशल मीडिया का उपयोग उनके आत्मसम्मान, चिंता और अवसाद का कारण भी बन रहा है। परफेक्ट सेल्फी प्रस्तुत करने तथा लाइक और कमेंट प्राप्त करने के लिए पोस्ट पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से दूसरों के साथ अवास्तविक तुलनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे चिंता और अवसाद बढ़ता है। सोशल मीडिया घोटाले और धोखाधड़ी फैलाने में भी जिम्मेदार हो सकता है। फर्जी खबरें, फिशिंग हमले और फर्जी योजनाएं सामाजिक माध्यमों से आसानी से फैल जाती हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी का कारण भी बनती हैं। आए दिन हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नौकरी देने का झांसा देकर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथियों, इसमें दोष सोशल मीडिया का नहीं है, दोष हमारी लापरवाही का है, जो हम भ्रमित सूचना पर भरोसा कर धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव छोटी उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। इनके अत्यधिक उपयोग के कारण बच्चे इसके आदि हो गए हैं, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी हो रहा है। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखकर वास्तविक जीवन जीना सिखाएं। हम यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या उसका उपयोग खराब है या हानिकारक है। निश्चित रूप से इसने हमें कई सुविधाएं प्रदान कर हमारे जीवन को आसान बना दिया है, किंतु दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया ने वैश्विक रूप से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए या बिना सोच विचार के किया जाए तो निश्चित ही इससे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं।
ऐसे में दोस्तों हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग अपने हित के लिए करें, ना कि इनके

0: आदि बनकर स्वयं को सोशल मीडिया का गुलाम बनाएं, बल्कि इसका उपयोग अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए करें। दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दें। यदि घर में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि वे कम से कम इसका उपयोग करें और आपकी देखरेख में ही करें। साथियों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया कुछ सीमा तक हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा के लिए सावधानीपूर्वक और सीमित मात्रा में ही करें। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगी। सोशल करते हो, क्या सोशल मीडिया पर ही मरना है? बाहर निकलो इस जाल से तुम, अब कुछ ख्वाब हकीकत करना है। चाहत रखो जीने की तुम, सब कुछ करके दिखलाओगे। सोशल मीडिया से दूर तो जाओ, ख्वाब हकीकत पाओगे। बैठे हो तुम दोस्त बनाए सोशल के हथियारों से। हुई जरूरत अगर तुम्हें तो हो जाओगे बेकारों से। सच कहती हूँ मान लो कहना दूर रहो बहकावे से। जीना है जीवन अच्छा तो साथ चलो अपनाने से। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अंत में बस यही कहूंगी दोस्तों, समय बहुत अनमोल है, इसे सोशल मीडिया पर व्यर्थ ही बर्बाद ना करते हुए अपने और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित के लिए अच्छे कार्य करने में लगाएं।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें पर। वार्ताकार थी प्रज्ञा गौतम। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय जैसी संगत वैसी रंगत पर चर्चा करने का। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन समाज के बीच ही विकसित होता है। वह जिन लोगों के साथ रहता है उनके विचारों, व्यवहार और आदतों का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। इसी सत्य को दर्शाने वाली कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है उसका स्वभाव और चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जबकि बुरी संगति उसे पतन की ओर ले जाती है। दोस्तों, संगति का प्रभाव सबसे अधिक बच्चों और युवाओं पर पड़ता है। बचपन और युवा अवस्था सीखने की अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखता है। यदि बच्चे अच्छे मित्रों और संस्कारी लोगों के संपर्क में रहें तो उनमें अच्छे गुण विकसित होते हैं। वे ईमानदार, मेहनती, अनुशासित और विनम्र बनते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी संगति गलत लोगों से होती है तो वे झूठ बोलना, आलस करना, अनुशासनहीनता जैसी बुरी आदतें सीख जाते हैं। साथियों, अच्छी संगति हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करती है। अच्छे मित्र कठिन समय में हमारा साथ देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें मेहनत करने, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यालय और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अच्छी संगति विशेष रूप से आवश्यक होती है, क्योंकि यही समय उनके भविष्य की नींव को तैयार करता है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में संगति का अर्थ केवल प्रत्यक्ष मित्रों तक ही सीमित नहीं रह गया। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मनोरंजन के साधन भी हमारी संगति का हिस्सा बन चुके हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं उसका भी हमारे विचारों, व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच, ज्ञानवर्धक चीजों को अपनाना चाहिए और नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। मनुष्य का चरित्र और भविष्य उसकी संगति पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। अच्छी संगति जीवन को सुख, सफलता और सम्मान से भर देती है, जबकि बुरी संगति जीवन को दुख और असफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो।
3: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दी,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा,
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
7: जी,
6: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
7: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
6: पर ये होगा कैसे?
7: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
6: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
7: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
6: बस
7: बस
6: समझ गया।
7: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम। मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
9: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
10: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें।
9: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
10: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
9: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
10: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
9: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
10: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
9: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
10: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
9: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
10: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
9: थोड़ी सी सावधानी
10: दूर करे सभी परेशानी।
11: बाजू

0: कहते हैं प्यारे पम पम पम।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।
2: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा हूँ नई नई, जलूंगी सारी रात।

शालमली खोलगड़े की आवाज़ में अभी आप वेलकम टू कराची फिल्म का गीत सुन रहे थे। कौसर मुनीर ने इसे लिखा था और जीत गांगुली ने इसकी धुन बनाई थी। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की मिली जुली आवाज़ों में। फिल्म का नाम है तुम बिन

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में। फिल्लौरी फिल्म का गीत है, अनविता दत्त ने इसे लिखा है और शाश्वत सचदेव की धुन है।

मंजर बलियावी का लिखा हुआ एक गीत आपको सुनवाते हैं, पलक मुछाल और अमित मिश्रा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम तिश्नगी।

0: पैडमैन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पीपुल्स पद्म के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड, न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित कार्यक्रम, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं भारत भवन भोपाल में सदानिरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। गंगा दशहरा पर्व के पावन अवसर पर 25 मई को जल गंगा संवर्धन अभियान को जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण और नगरी क्षेत्रों में व्यापक जल संरक्षण गतिविधियों और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जन जन को इस पुनीत कार्य से सीधे जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले हैं। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में जारी है। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 6 बजे हैं। आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: अरे मोनू, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ मिलने पड़ते हैं यार।
1: ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक यार।
0: अरे कहावत है यार।

हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे संजय दत्त, गोविंदा, अलका याग्निक, सुदेश भोंसले और सोनू निगम की आवाज़ों में। नितिन रायकवार के बोल थे, संगीत अनु मलिक का था। कार्यक्रम का अगला गाना बड़े मियां छोटे मियां फिल्म से, अलका याग्निक और उदित नारायण के साथ अमित कुमार की आवाज़, समीर के बोल, विजू शाह का संगीत।

आदेश श्रीवास्तव की बनाई धुन पर आपको सुनवाते हैं श्यामराज का लिखा गीत, उदित नारायण, रंजना जोगलेकर और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जाने तमन्ना।

और आइए अब आपको उदित नारायण के साथ सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज़। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण और फिल्म का नाम राजा।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है यस बॉस फिल्म से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, बोल जावेद अख्तर के और धुन जतिन ललित की।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण की धुन और फिल्म का नाम मोहब्बत।

नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया एक और गीत आपको सुनवाते हैं, समीर का लिखा हुआ, अलका याग्निक के साथ आवाज़ है अभिजीत की और फिल्म का नाम जुदाई।

अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज़ों में अभी आपने इतिहास फिल्म का गीत सुना। समीर ने इसे लिखा था और धुन बनाई थी दिलीप सेन, समीर सेन ने। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की मिली जुली आवाज़ों में इश्क फिल्म का गाना। राहत इंदौरी की बोल हैं, अनु मलिक की तर्ज़।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कवि श्री राग तेलंग,
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है, और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भूमि।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7 बजने को ही अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर

0: सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी भोपाल से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसमें 7:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। हेलो ग्राम सभा, विषय होगा ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज रात 8:00 आप

पेश करेंगे और रात 10 बजे सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसमें सुनिएगा विश्व थायराइड दिवस पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावर से बातचीत। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफ़र पर आकाशवाणी के नियमित श्रोता जिगर पंड्या से बातचीत। नौतपा के दौरान लू से बचाव के बारे में डॉक्टर अभिजीत देशमुख से जानकारी। सुरमई सवेरा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:15 पर सुनिए रामदयाल लोधी और साथियों के गाए बुंदेली गीत। उर्दू कार्यक्रम आईना पेश किया जाएगा सुबह 9:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर की तकरीर फ़न और शख्सियत डॉक्टर रजिया हामिद। इसके साथ ही आप सुनेंगे मसूद रजा का कलाम। जिले की चिट्ठी सुबह 10:00, 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम होगा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला, इसमें आप सुनेंगे पंडित रामस्वरूप रतोनिया का तबला वादन 3 ताल। ग्राम सभा कार्यक्रम में कल शाम 7:21 पर आकर्षण होगा लोकरंग। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के प्रमुख कार्यक्रम। कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से जो प्रमुख कार्यक्रम प्रसारित होंगे उनकी जानकारी इस प्रकार है। कल शाम 5:00 आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। समय याद रखिए कल शाम 5:00। पूर्वाह्न 11:00 फोन इन कार्यक्रम होगा, फोन करें गीत सुनें आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश करेंगे। दोपहर 12:00, दिन में 2:30 और रात 10:00। दोपहर 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम पंचतंत्र होगा। 1:10 पर स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति सुनिएगा घुटनों का दर्द और ऑस्टियो आर्थराइटिस कारण लक्षण और उपचार, विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से भेंटवार्ता। लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:30 रमा मिश्रा के गाए बुंदेली गीत सुने जा सकते हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 1:45 पर, जिसमें आप सुनेंगे पुष्पा रानी की गाई भक्ति रचनाएं। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा। शाम 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम आजकल। रात 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम होगा। 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा पंडित रामस्वरूप रतोनिया का तबला वादन झपताल। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कल शाम 5:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण। इसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: हाँ, फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब

0: बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना।
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर कल उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल की ट्रिशा शर्मा मृत्यु मामले में आज दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा। यह दल समग्र IT अवसंरचना की मजबूती, लॉगिन प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली, भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में विशेष रूप से है।
6: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
5: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में वहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरिया, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदानीरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
7: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल

0: इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में आपका स्वागत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फॉरेंसिक पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय त्विशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION डिजिटल जोन प्रेस्टीज श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी कोकता बाईपास रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन RGPM सनखेड़ी दानिश कुंज कोलार रोड पर स्थित है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और यह इसी वर्ष जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले 4 दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाण सागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधोलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजाति ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये देख कैसे।
1: Happy birthday, भाई।
0: दीका? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: I know, ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: I know, pa. सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: I know, na.
4: RBI कहता है,
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: दादी, कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
7: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
7: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
7: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
8: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
9: ये ग्वालियर का आकाशवाणी केंद्र है, बहने सुने अपना प्रिय कार्यक्रम घर आंगन।

घर आँगन कार्यक्रम सुनबे बारी हमई सबै बिन्ना हरन को भौजी हरन को कल्पना बहन की राम राम। और करत हैं आज के घर आँगन कार्यक्रम में अपनी बहनन को स्वागत। तो बहनों सबसे पहले जे बताओ कि आप और उनके कैसे का हाल चाल है। हम समझ रहे हैं कि अब जा टाइम हमई बहनें भीषण गर्मी में बहुत ही ज़्यादा परेशान है और ना तो देखो भीतर चैन मिल रहो और ना बाहर चैन मिल रहो और ना तो कोनो काम काज करवे को मन कर रहो। बस ऐसा लग रहा है कि बिजना लेके पूरे टाइम हवा करत रहे या फिर देखो कूलर के सामने जाके बैठ जाए या फिर पंखा के नीचे जाके बैठ जाए। और तो और कबन कबन तो ऐसा लगता है कि घनी पेड़ के छाया में जाके वहाँ पर जाके बैठ जाए। लेकिन क्या करें, हमारी बहनन पर जिम्मेदारी इतनी होते कि बिन्हें अपने घर परिवार के लिए अपने मौड़ा मौड़न के लिए और खुद के लिए फिर देखो रसोई घर में जाने ही पड़ते हैं। और सभी को देखो पोषक तत्वों से भरपूर भोजन भी बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। लेकिन बहनों स्वस्थ रहने हैं तो देखो खान पान पर भी ध्यान रखने पड़ते हैं और संग संग में जो हमारे पशुधन है बिनकी भी देखभाल करना पड़ते हैं। बिनको समय पर चारा भूसा पानी जे सभी देना पड़ते हैं। अब देखो जे खूब ही गर्मी पड़ रही है तो हम सब तो परेशान हैं और संग संग में हमारे पशु पक्षी भी परेशान हैं। तो बिनके रहवे की जगह हवादार छायादार और खुलो होए और साफ सुथरा होए, अगर हो सके तो बिनको भी पंखा लगा सकते हैं जहाँ से वे गर्मी से बचे रहें और वे स्वस्थ रहें। ऐसे ही बहनों देखो अपने घर के आसपास कई पशु पक्षी आ जाते हैं तो बहनों घर के बाहर बिनको पानी भर के रखें जहाँ से वे आके पानी पी सकते हैं और अपनी मुड़ेर पे भी जाके पानी के सकोरे भर के रख दें कोई या फिर कोई बर्तन में पानी भर के रख दें हैं जहाँ से जो पक्षी आते हैं वे पी सकते हैं। और कचू दाना रोटी चावल डारें हैं और कहे से कहते को बहनों देखो इतना तो बच ही जाता है कि जैसे कि अपनी रोटी बच गई तो टुकड़े करके डाल दे, चावल बच गए तो बिना डाल दे जहाँ से भी इनको पेट अच्छे से भर जाए। ऐसे ही बहनों देखो गाय बैल कुत्ता ये सब ही अपने दरवाजे पे आ जाते हैं हैं तो वे भी पानी पी सकते हैं और मैंने कछु खावे को भी दे रहे हैं। तो बहनों कहता ना कि प्यासे को पानी और भूखे को भोजन खिलाओ बहुत ही दान पुण्य को काम होता है। बहनों देखो पशु पक्षी से प्रेम दया की भावना रखने हैं और जई तरह से बहनों देखो अपने घर परिवार में सबसे मिलजुल के रहने हैं, प्रेम प्यार से सभी से बातचीत करने हैं और सभी के प्रति दया की भावना भी रखने हैं, चाहे वो देखो माता पिता हो, सास ससुर हो, भाई बहन हो या फिर देखो पति पत्नी हो। तो बहनों देखो जब पति पत्नी की बात आ निकली है तो आज हम चर्चा करेंगे कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने की। तो बहनों पति पत्नी को रिश्ता परिवार की एक नींव होता है तो ये रिश्ते में प्रेम विश्वास और सम्मान बनो रहे तो परिवार में सुख शांति और खुशहाली भी बनी रहता है। तो बिना हरो देखो दाम्पत्य जीवन को मधुर बनावे के लिए सबसे पहले एक दूसरे को सम्मान करवो बहुत ही जरूरी होता है और पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं और विचारों की कद्र करनी चाहिए। और कोनो भी बात पे अगर झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं तो क्रोध करवे के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करके पाको समाधान निकालने चाहिए। और बहनों देखो घर की जिम्मेदारियों को मिलजुल के निभाने से आपसी समझ बढ़ाता है। अगर पति यदि पत्नी के कामों में मदद करत है तो पत्नी को भी पति की समस्याओं को समाधान समझने हैं। तो रिश्ते में अपनोपन बढ़ते और छोटी छोटी बातों पर तानो देवो या दूसरे से तुलना करवो तो जो संबंधों में दूरी पैदा कर सकते हैं। तो भैया बहनों देखो ऐसी आदतों से बचने हैं। बहनों विश्वास भी दाम्पत्य जीवन को महत्वपूर्ण आधार है। एक दूसरे पर भरोसा रखें और कोनो भी बात को छिपाने की बजाय खुलकर चर्चा करने हैं और साथ ही साथ देखो परिवार के लिए समय भी निकालने हैं, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनने हैं और दुख सुख में साथ खड़े रहने हैं। बहनों देखो मधुर व्यवहार, मीठी वाणी और सकारात्मक सोच रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। बहनों जब घर
को वातावरण प्रेमपूर्ण होते तो अपने मौड़ा मौड़िन को विकास भी नीक के संस्कारों के संग होते, फिर वो परिवार समाज के लिए एक आदर्श बनाते हैं। तो बहनों कहते हैं ना कि देखो हम तुम्हें बताएं कि हमारे गांव में रामू कक्का और सीता काकी रहती थी, वे मेहनती तो बहुत थे लेकिन वे छोटी छोटी बातों को लेके लड़त रहते थे, कबों खेत के काम को लेके, कबों घर के काम को लेके, कबों घर के खर्चा को लेके। तो ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे बिन में बहुत तनावपूर्ण होने लगो और बहुत ही ज़्यादा तनाव करने लगे दोनों। तो एक दिन इनके गांव में एक संत बुजुर्ग संत आए, तो वे अपनी समस्या को लेके संत के पास पहुंच गए। तो संत को उन्हें सारी बात बनाई, फिर संत ने एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी डाल के दी और पीवे के लिए कहो तो वो मीठो लगो, और फिर एक मुट्ठी नमक डालो और पीवे को कहो वो कड़वा लगो। तो जय इस बात को लेके संत ने कहा कि बेटा जब मीठा मीठी वाणी बोलोगे तो ये चीनी की तरह मिठास रहता है, और जब क्रोध अहंकार और कटु वचन नमक बोलोगे तो नमक की तरह कड़वा होता है, तो रिश्ते को ये कड़वा बना देते हैं। और ये तुम्हारे हाथ में है कि जीवन कैसे जीने हैं। तो बहनों देखो, तो भैया बहनों देखो, जे सभी प्रेम विश्वास सहयोग और सम्मान की भावना को अपना के अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी सफल और मधुर बनाना है। तो देखो हमें बिन्ना हरण के मन में और भौजी हरण के मन में बस एक ही चाह होता है कि जो हमारे पतिदेव है ना, वे समय समय पे देखो जैसे कोई खास दिन आता है, जैसे कोई जन्मदिन है, कोई शादी की सालगिरह है, कोई खास त्यौहार है, तो वे बढ़िया उपहार ला के दें, बिना घुमाएं और जगह जगह की सैर कराएं। तो देखो अपनी उर्मिला बहन का कह रही हैं, लेकिन बात से पहले लेते तनक विराम।

0: बेनो कहते ना कि माँ बनो एक सौभाग्य की बात होते, तभी जीवन सफल होते और परिवार भी तभी पूरा होते। तो बिना हरो देखो, जब हमारी बहने भौजी गर्भवती होते तो शुरू से लेके और शिशु के होबे के बाद भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप खान पान पे भी अच्छे से ध्यान रखें और डॉक्टर के बताए रास्ते पे भी चलने हैं और टाइम टाइम पे चेकअप करवाने हैं। तो मैंने देखो आज जय संबंध में एक विशेष जानकारी लेके आए हैं, जाको विषय है गर्भावस्था में ध्यान देने योग्य बातें। ये की जानकारी दें हैं डॉक्टर प्रतिष्ठा डालमिया और उनसे बातचीत करेंगी कल्पना प्रदीप। तो सुनते हैं जो नौनी सी जानकारी।
1: श्रोता बहनों नमस्कार, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रतिष्ठा डालमिया को और आप जानकारी देंगी कि गर्भावस्था में ध्यान देने योग्य बातें क्या हो सकती हैं। प्रतिष्ठा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं, नमस्कार।
2: धन्यवाद।
1: गर्भावस्था में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि कोई भी महिला जब गर्भ धारण करती है तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसका रहने का तरीका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आप एक डॉक्टर की हैसियत से क्या होना चाहिए आप बताइए।
2: कल्पना जी, गर्भावस्था एक नारी के जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाओं में से एक है। इस अवस्था में हर कोई जो फीमेल होती है, लेडी होती है, वो चाहती है कि वो किसी समय पर माँ बने और माँ के सुख को भोग सके। एक परिवार बड़ा उत्साहित होता है जब जब एक बच्चा उन्हें खबर मिलती है कि अब हाँ भाई बच्चा हमारे घर में आने वाला है। गर्भावस्था को हम मेडिकली तीन पार्ट्स में, जैसे एक 9 महीने का जो पीरियड होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेडिकली। उनको हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर्स बोलते हैं, जो कि तीन तीन महीने का अप्रॉक्सीमेट अगर हम माने तो एक पीरियड होता है। तीनों ही ट्राइमेस्टर्स में अलग अलग चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान तो लगभग वही रखना होता है, पर थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कि हमको स्ट्रेस देके उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
1: यानी कि हर महिला जानती है कि 9 महीने का ये समय होता है और शुरू के 3 महीने, फिर बाद के 6 महीने और आखिर के 9 महीने हमें कैसे बिताने हैं, हमें किन किन बातों पर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, वो बातें हैं। तो पहले तो आप शुरू के 3 महीनों के बारे में बताइए।
2: शुरू के 3 महीने जो होते हैं कल्पना जी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस समय पर जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसके ऑर्गन का फॉर्मेशन, उसके अंग बनने का काम हो रहा होता है।
1: हाथ पैर नाक,
2: तो हाँ जी, हाथ पैर नाक, अलग अलग पार्ट बॉडी के
1: सभी
2: 12वें 11वें 12वें हफ्ते 10वें से 12वें हफ्ते के बीच में ये बन रहे होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय पर फॉलिक एसिड का मिलना बॉडी को। फॉलिक एसिड जो होता है वो हमें खान पान से उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसलिए अलग से एक छोटी सी टैबलेट होती है फॉलिक एसिड की। वो फॉलिक एसिड की टैबलेट बहुत ही ज़रूरी होती है, जो कि शुरू के 3 महीने में ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंगों का प्रॉपर विकास हो सके। तो क्या होता है, ये देखने में आता है कि शुरू के दो महीने तो लगता है हाँ है नहीं है, घर में टेस्ट कर लिया पॉजिटिव है, बैठे हैं, चलो जाएंगे, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, और वो टाइम हम निकाल देते हैं घर में। लेकिन उस समय पर इम्पॉर्टेंट है कि भाई अगर आपके पीरियड मिस हो रहे हैं तो आप जो है टेस्ट करके आपको मालूम है कि आप
1: प्रेगनेंसी है,
2: हाँ, या आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर तो अपने आप ही आपको फॉलिक एसिड लिख के देगी, है ना। और कुछ एक ब्लड के टेस्ट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि शुगर का टेस्ट होता है और थायराइड का टेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे के प्रॉपर ऑर्गेन बनने के लिए, अंग बनने के लिए।
1: कुल मिलाकर के आप ये कह रही हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहली बात तो ये कि जैसे ही हमें पता चल जाता है, समझ में आने लगता है, हमें फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: और फिर डॉक्टर जैसी भी सलाह देती हैं कि हमें उन खास टेस्ट कौन से कराने हैं, वो फौरन करा लेने चाहिए।
2: जैसे थायराइड का टेस्ट होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हमें देखने को आता है कि थायराइड बढ़ा कम है, या हाइपोथायराइड कंडीशन जिसको हम बोल रहे हैं, TSH का टेस्ट कराते हैं, वो बढ़ा हुआ होता है या हाइपोथायराइड होती है। हाइपोथायराइड कंडीशन बच्चे में जो है कुछ मेंटल एबनॉर्मेलिटीज ला सकती है और प्रॉपर डेवलपमेंट भी उसका रोक देती है।
1: अच्छा।
2: तो एक जरा सी गोली से हमको ये ये जो प्रॉब्लम है इसको हम निवारण पा सकते हैं, इसलिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें डॉक्टर को कोई ये नहीं है, डॉक्टर आपकी हेल्प ही कर रही है कि एक आप समाज में एक स्वस्थ बच्चा ला सकें।
1: बिल्कुल सही बात है। ये तो बात हुई शुरू के 3 महीनों की, अब उसके आगे यानी कि हम 4th महीने पर आ जाते हैं और आगे के 6 महीने जो होते हैं उसके बाद की जो सेकेंड स्टेज होती है उसके लिए फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें भी मेनली बेबी का ऑर्गेन्स ही प्रॉपर जो होते हैं डेवलप होते हैं, सारे अंग अच्छे से दिखने लगते हैं, उसमें भी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम ये पता लगाना हमारे को ज़रूरी होता है कि भाई बच्चे के सारे अंग प्रॉपरली डेवलप हो गए हैं कि नहीं, किसी तरह के बच्चे में जन्मजात विकृतियाँ तो नहीं हैं। ये जो है कुछ एक अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उसमें हम 18वें से लेके 21वें हफ्ते के बीच में वो अल्ट्रासाउंड होते हैं, उनसे हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे के आँख नाक लिवर किडनी हार्ट हाथ पैर सारे अंग प्रॉपर डेवलप है कि नहीं है, है ना। कुछ एक ब्लड टेस्ट भी होते हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि भाई बच्चे के जो है किसी तरह की मानसिक विकृति तो नहीं है, है ना, मेंटल रिटार्डेशन जिसको कहते हैं वो भी। और रूटीन जो टेस्ट होते हैं वो तो ज़रूरी है ही कि हीमोग्लोबिन कराना है, शुगर कराना है, यूरिन का टेस्ट कराना है, और जो नॉर्मल इस समय पर हम फॉलिक एसिड बंद करके आयरन और कैल्शियम की टैबलेट चालू करते हैं, प्रोटीन पाउडर चालू करते हैं, तो वो बच्चे के ग्रोथ में हेल्प करता है आयरन कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर। तो वो दवाइयाँ वो चेंज होती हैं, ब्लड के रूटीन टेस्ट तो होते ही हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक इस समय के लिए टेस्ट होते हैं वो होते हैं, एक तो ये जिसको हम Type 2 scan बोलते हैं, इसमें बच्चों के अंग की प्रॉपर स्कैनिंग होती है। और
1: ये आप जो बता रही हैं ये उस समय, जबकि पहले की अगर हम बात करें कुछ सालों पहले की, कि जब बच्चा पैदा हुआ तो पता चला कि उसके होठों में ही कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, या कहीं आँख में कोई प्रॉब्लम है, या नाक थोड़ी सी तिरछी है, या हाथ में कुछ, या पैर, मतलब कुछ भी है।
2: हाँ, बच्चे कई बार तालू कटे हुए पैदा होते हैं, थोड़े से उनके 6 उंगली हैं सपोज, ऐसा होता है, या 1 किडनी है, या बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ये सब कुछ आजकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि अल्ट्रासाउंड 4D अल्ट्रासाउंड के जरिए ये सारे ऑर्गेन्स हम स्कैन 18वें हफ्ते में भी पता चल जाता है। उसका एडवांटेज कहाँ होता है कल्पना जी, जैसे कि अगर बच्चे में कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमें पता है कि ये बच्चे को हमको जब डिलीवरी होगी किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे हम उस बच्चे को उसी समय इमीडिएट केयर दे सकें, उस चीज को, उस खराबी को लेकर, और बच्चे को बचाया जा सके। या बच्चे को कई बार हमें पहले से पता होता है तो हम उसको ऑपरेट भी, 1 दिन का या 2 दिन का बच्चा आराम से ऑपरेट, पर हम उस तैयारी से रहते हैं। मेन पर्पज क्या है पता लगाने का, कि हम तैयारी में है कि भाई ये जो है कंडीशन है इस बच्चे को और हमें क्या तैयारी से बच्चे को रिसीव करना है।
1: बिल्कुल ठीक बात है। तो जब हमें ये सब कुछ अल्ट्रासाउंड से पता चलता रहता है, और ये अल्ट्रासाउंड हमें कराते रहना चाहिए, अल्ट्रासाउंड की बात जो आप कर रही हैं जिनसे इन सब बातों का पता चलता है, कई बार अल्ट्रासाउंड पहले तो होते ही नहीं थे बहुत ज़्यादा, है ना, लेकिन अब अल्ट्रासाउंड इतनी जल्दी जल्दी होते हैं कि लगता है कि क्या इनकी ज़रूरत हमें है, और अगर है तो क्या बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने पर इनसे जो रेज निकलती हैं उनका क्या कोई गलत बुरा प्रभाव भी पड़ता है, कहते हैं कि बार बार नहीं कराना चाहिए।
2: नहीं कल्पना जी, जो एक नॉर्मल हम कहते हैं 9 महीने के ड्यूरेशन में कम से कम 4 अल्ट्रासाउंड तो ज़रूरी हैं।
1: अच्छा,
2: एक एक 3 महीनों के जो मैंने बताए, और बीच में 1 अल्ट्रासाउंड और करीब 28वें 29वें हफ्ते पर, उससे हमें बेबी की प्रॉपर ग्रोथ का पता लगता है। तो एक 9 महीने के पीरियड में 4 अल्ट्रासाउंड होना तो ज़रूरी है, ताकि हमें समय समय पर बच्चे की ग्रोथ का पता चलता रहे। नहीं तो क्या होता है हमें बाद में पता,
1: अल्ट्रासाउंड से कोई ऐसा जिसको हम दुष्प्रभाव समझते हैं ऐसा कुछ नहीं?
2: नहीं नहीं, इससे बहुत ज़्यादा ऐसा, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कई बार अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, 6-7 बार भी करना पड़ जाता है कई बार। अगर बच्चे को ब्लड की सप्लाई अच्छी नहीं जा रही है, या आंवल नीचे है जिसके कारण ब्लीडिंग बार बार हो रही है पेशेंट को, तो ये देखना है बेबी ठीक है कि नहीं है, अंदर पानी तो कम नहीं हो रहा है, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो, वजन कम तो नहीं है, है ना। अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, जैसे मदर अगर डायबिटिक हो गई है, है ना, या मदर को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, या इस तरह की कोई और कंडीशन मदर में है, तो भी हमें कई बार अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है कि बेबी
1: माँ ठीक है, बच्चा तो ठीक है, लेकिन माँ भी ठीक है,
2: माँ भी ठीक है, हाँ जी, कि बच्चे पर माँ की कंडीशन का बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है, और हमें कब ऐसा पॉइंट डिसाइड करना है कि माँ और बच्चे को दोनों को हम सेफ होकर ठीक कर सकें।
1: ठीक बात है। तो जब भी अल्ट्रासाउंड की बात होती है तो डॉक्टर जब ज़रूरत समझते हैं तभी करवाते
2: हैं।
1: हाँ
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। इसके अलावा कहते हैं कि खान पान का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है,
2: बिल्कुल
1: है ना। एक गर्भवती कोई भी स्त्री होती है तो उस महिला का खान पान कैसा होना चाहिए?
2: देखिए, खान पान तो हमेशा ही अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, स्वस्थ होना चाहिए। खाने में फल है, सब्जियां हैं, दूध है, पनीर है, दालें हैं, है ना, स्प्राउट्स हैं जो
1: भिगो कर
2: हाँ भिगो कर हम खाते, अंकुरित खाते हैं, वो सब चीज़ें हम बच्चे के ग्रोथ में बहुत हेल्प करती हैं, है ना। और इसमें एक ये भी है कि आप थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो वो बेबी की ग्रोथ तो प्रॉपर करता ही है और साथ में माँ का वजन भी बढ़ने से रोकता है।
1: प्रोटीन के लिए जैसे दालें
2: हैं, दूध है, छेना है, पनीर है, राजमा है, छोले हैं, इस तरीके स्प्राउट्स हैं, भुने चने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। फल और सब्जियां, सीजनल जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो सब तो हमेशा अच्छा है ही। मेरा ये मानना है, हर किसी का मानना होता है कि भाई हर एक का शरीर एक सा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जो आपको हुआ हो वो मुझे भी वैसा ही होगा, या कोई दवाई आपको सूट करी हो तो मुझे भी करी हो। हर किसी को भी दवाई का कोई रिएक्शन हो सकता है, किसी को परेशानी हो सकती है। तो कभी भी, केवल गर्भावस्था के दौरान ही नहीं, आप कभी भी कोई भी दवाई खाने से पहले डॉक्टरी सलाह लें,
1: बिल्कुल
2: हमेशा ही आपके लिए बेनिफिशियल, आपकी सेहत के लिए अच्छा है।
1: क्योंकि हर माँ या हर परिवार एक स्वस्थ बच्चा चाहता है। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं कि जब कोई भी गर्भवती स्त्री किसी डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर अपनी कोई बात उनको बताती है, कहती कि भाई आपको ऐसे रहना है या ऐसे खाना है या ऐसे करना है या ऐसा नहीं करना है, जबकि दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या रोल होता है, मतलब किसी भी डॉक्टर का क्या रोल हो सकता है, क्या होना चाहिए कि उस लेडी को, जबकि वो गर्भवती है उस समय।
2: देखिए, जो गर्भवती स्त्री होती है उसको वो बड़ी सेंसिटिव होती है, उसको वो अपने लिए और अपने बच्चे के लिए बिल्कुल सेंसिटिव होती है। उस समय जो भी अच्छी बातें उसे बताई जाती हैं वो ज़रूर उन चीज़ों का पालन करती है। और ये एक जनरल बातें हैं कि आपको सारे जो अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, सब अच्छे से रहना है, सावधानी से रहना है, वजन नहीं उठाना है, आपको दौड़ भाग के काम नहीं करना है, हील्स नहीं पहनने हैं, है ना, दौड़ दौड़ के सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है,
1: मतलब ऊंची चप्पलें सैंडल नहीं पहननी है,
2: बिल्कुल। तो ये तो एक कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर एक स्त्री पे लागू होती हैं, लेकिन कुछ एक मेडिकल कंडीशंस होती हैं, कई चीज़ें जो प्रेगनेंसी के साथ आती हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, किसी की आंवल नीचे है, या किसी को और किसी तरीके से बेबी और या मदर रिस्क में है, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर उनको जो बता रही है वो उन चीज़ों को ज़रूर, उन प्रिकॉशंस को उनको लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सपोज़ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है किसी का, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ्रेंड का भी बढ़ा था और उसने फॉलो नहीं किया तो आपको भी नहीं करना है। तो आपकी डॉक्टर बेहतर समझती है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनकी सलाह को आप ज़रूर माने
1: और परेशान ना हो, बिल्कुल भी डरे नहीं, है ना, भय की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहें, डॉक्टर की सलाह माने, खुश रहें, चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, तो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। डॉक्टर डालमी, अगर आप कुछ और हमारी बहनों को सजेस्ट करना चाहती हूँ, सलाह देना चाहती हूँ,
2: तो अच्छी सलाहों में यही है कि अच्छे से आप सुबह उठें, कुछ थोड़ा सा व्यायाम करें, है ना, बहुत हैवी एक्सरसाइज या इसकी ज़रूरत नहीं है, वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग भी काफ़ी है, चलते फिरते रहना चाहिए, और अच्छे से खाए पिए, अपने खाने का ध्यान रखें, पानी अच्छे मात्रा में लें, क्योंकि कई बार यूरिन इन्फेक्शन वगैरह कॉमन होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, वो हो सकता है, अच्छी किताबें पढ़ें,
1: बिल्कुल,
2: जिससे कि हाँ जी अच्छे हमारे धर्म ग्रंथ हैं कई, उनमें अच्छी चीज़ें पढ़ें, जिससे कि बच्चे के अंदर भी वो संस्कार हाँ जी जाते हैं, वो सब चीज़ों का ध्यान रखें, प्रॉपर नींद लें, दोपहर में भी कम से कम 1-1.5 घंटे लेट के आराम करें, रात में भी 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए।
1: डॉक्टर प्रतिष्ठा डालमिया, आज आप हमारे स्टूडियो में आईं और गर्भावस्था में ध्यान देने की खास बातें क्या हो सकती हैं, इन सभी बातों को आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारी श्रोता बहनों को बताया। हमें उम्मीद है कि बहनें इन बातों पर ज़रूर गौर फरमाएंगी, ज़रूर ध्यान रखेंगी। स्टूडियो में आने के लिए, इन बेहतर बातों को बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहनों देखो, अभी आप सुन रही थी जो भेंट वार्ता, जाको विषय तो गर्भावस्था में ध्यान देने योग्य बातें, जाकी जानकारी दे रही थी डॉक्टर प्रतिष्ठा डालमिया और उनसे बातचीत कर रही थी कल्पना प्रदीप। तो बहनों देखो, हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारी बहनों ने जो अब भेंट वार्ता सुनी बड़े ध्यान से सुनी होगी और हमारी डॉक्टर बहन ने जो इतनी सारी बातें बताई हैं उनका लाभ जरूर लेंगी। अब बहनों देखो, अब बहुत ही गर्मी को समय तो चल रहा है और जब मौसम में लू लगवे को भी खतरा होता है, तो इसे बचवे के लिए शरीर में पानी और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी नहीं हो तो जाके लिए देखो नींबू पानी, छाछ, लस्सी, आम को पना, नारियल पानी, बेल को शरबत, सत्तू को घोल, ये सभी चीज़ें शरीर को बड़ी ठंडक देते हैं। और संग संग में देखो तरबूज, खरबूजा, खीरा और मौसमी फल जो बहुत ही लाभदायक होते हैं। और बहनों देखो, संग में अंकुरित चने और अनाज, दालें जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बहनों खूब पानी पिएं और जहाँ भी जाओ संग में पानी लेके चलें। और अब जा टाइम ज़्यादा मिर्च मसालों मसाले वाली चीज़ें तलो बनो नहीं खाने हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगी। बहनों देखो, चर्चा तो अपन आगे और भी करें हैं, पहले लेते हैं तनक विराम।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं।
7: जैसे?
6: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
7: तो लेन देन?
6: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
7: ओ,
6: जैसे यूपीआई से?
7: अच्छा।
6: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
7: वो क्या है मम्मी जी?
6: तुम्हारी मुँह दिखाई भी यूपीआई से मिलेगी।
7: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
0: बहनों देखो, ब्राह्म के बाद फिर से स्वागत है घर आंगन में। बहनों देखो, अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो बहनों कहते ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी सभी को जरूरत पड़ती है। तो जाके लिए हमें भैया बहनें खूब मेहनत मजदूरी करते हैं और अपन घर चलाते हैं। तो गाँव में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने हैं। और भैया देखो, और हमारे भैया बहनों को सपना ये भी होता है कि उनके पास सुरक्षित और मजबूत घर होए। तो जय सपने को पूरा करवे के लिए हमारी भारत सरकार ने ये योजना शुरू करी है। और यह योजना के तहत ऐसे परिवारों को सहायता दी जाते है जैसे कच्चो मकान है या फिर रहवे के लिए घर नहीं है, तो ऐसे परिवारों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर करो जाता है। तो भैया और देखो, जो चुने वाले हैं उनको पक्को मकान बनावे के लिए आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाता है। और इसके साथ ही साथ शौचालय निर्माण के लिए भी अलग से सहायता दी जाती है, जिससे हमारे भैया बहनें और मोड़ा मोड़ी स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। तो इससे गाँव के परिवारों को जीवन स्तर बेहतर होता है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीवे को अवसर भी मिलता है। जब भैया देखो घर मकान बनता है तो मजदूरों को भी रोजगार मिलता है, जैसे बिन को घर को खर्चा पानी अच्छे से चलत रहता है। तो बहनों यदि गांव में अगर कोई भी परिवार ऐसा है बाई जा योजना के बारे में नहीं पतो और वो लाभ ले नहीं जानते, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत

या फिर संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकत है। तो बनो ई योजना से जुड़ी जानकारी की पात्रता की जांच समय पे पंचायत स्तर पर करी जाते है। तो बनो हम सब मिलके ये योजना की जानकारी जरूरतमंद जनमानस तक पहुँचाएँ, जैसे ग्रामीण परिवार को पक्के घर को सपना साकार हो सके। तो बनो सुरक्षित आवास केवल एक मकान ही नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है, जैसे हमारे भैया बहन उनके परिवार के सदस्य सभी सर्दी गर्मी वर्षा आने तूफान से बच सकें। अब बहनों देखो चर्चा तो आगे और भी, अब बहनों देखो मनोरंजन की बारी है, तो सुन लेते हैं जो 900 लोकगीत विजयलता पारासर से।

0: थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।

0: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
1: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
0: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उससे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। 4 प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जल है तो कल है। वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गाँव में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा कामों का पहला क्षेत्र है। दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे गाँव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है। इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड रिलेटेड स्ट्रक्चर, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की, कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार ये हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है, कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फ्रिक्वेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं अगर इसे समअप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जी राम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है और उससे विकास की भी जो है एक इन्विसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ।
1: जी बिल्कुल, ही आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बता रही है 4 प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है, 20 जून तक की कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का, जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप, मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए। इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी

0: प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे, तो ये एक वाइडर या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, हमारे एकेडमिशियंस हो, या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाए। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इससे अपेक्षा है।
1: रोहिणी जी, बेहतर व्यवस्था की और सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
0: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है जिससे कि हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने ऑल रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी, सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन जाए अंडर विकसित भारत जी राम जी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली मिलता रहे
1: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
0: बिल्कुल सही बात कही, यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, या ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8 से 10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है, तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष विकसित भारत जी राम जी में अगर आप देखें सोनू जी, तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जी राम जी के लिए भारत सरकार ने किया है, तो इस 95,692 करोड़, दैट इज द बजट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड, तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन के एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
1: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को, रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है, एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
0: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम ये रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं, ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं जिन्हें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहा

Surgiome. नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी

0: Surgiome.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
1: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
2: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है।
0: सुर्खियों में
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।
4: डगर विकास की, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों पर केंद्रित है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

0: नमस्कार, आज हम उस अंचल की यात्रा पर हैं, जहां रेवा की लहरें संस्कृति की कहानी सुनाती है। इंदौर की आधुनिकता से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक और बुरहानपुर के ऐतिहासिक दर्रों से लेकर खंडवा के किशोरदा की यादों तक आज एक ही चर्चा है। वो चर्चा है जल जीवन मिशन की, एक ऐसा मिशन जिसने मालवा की पथरीली जमीन और निमाड़ की तपती धरती पर ठंडे पानी की फुहार पहुंचा दी। ये केवल पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों में विश्वास का रंग भरने की कहानी है।
1: हर घर में नल लग गई है, साफ सुथरा पानी है, मशीन लगी है, उसके बाद दिक्कत खत्म हो गई।
2: अब ये यहाँ सुविधा होने से बहुत आनंद है गाँव में।
3: अब भी तो अच्छी व्यवस्था होगी, अब नल चालू हो गए हैं ना।
4: अभी नल लग गया तो अच्छा सुकेज करिए सरकार ने।
5: जो टंकी से नल का पानी हो गया तो बढ़िया हो गया,
4: नल लग गया।
0: जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो गौरव से सीना तब चौड़ा हो जाता है जब बुरहानपुर का नाम आता है। जुलाई सन 2022 में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। यहाँ के 254 गांवों के सभी 1,01,000 से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। भले श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED मध्य प्रदेश।
6: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश का सर्वप्रथम हर घर जल प्रमाणित होने का पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए ना सिर्फ बुरहानपुर, पूरा मध्य प्रदेश काफ़ी प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि हर घर जल प्रमाणित होना अर्थात बुरहानपुर जिले के पूरे 1,00,000 से अधिक ग्रामीण घरों में हमने शुद्ध जल टोटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है। और ये पूरे प्रदेश के लिए इसलिए भी बहुत ही शुभ होगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये हमारे राज्य के अन्य जिलों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि आज बुरहानपुर को ये सम्मान मिला है, कल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को भी ये सम्मान प्राप्त होगा।
0: बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह।
7: जब हमने ये काम शुरू किया था तब हम लोग लगभग 37,000 कनेक्शन बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और आज हमने जो जितनी भी पात्र जनसंख्या है जो JJM के मापदंड को पूरा करती है, लगभग 1,00,000 कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए हैं। और बुरहानपुर की सबसे विशेषता ये है कि इन जल जीवन मिशन की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी हमने ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह को दी है। इससे न केवल लोगों को पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि ये जल जीवन मिशन एक तरह से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। और जल जीवन मिशन के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण भारत सरकार की स्कीम को जोड़ा है, वो है जल शक्ति मिशन। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिशन के बिना अधूरा है। जल शक्ति मिशन के तहत हम लोग जल जीवन मिशन के स्रोतों के चारों तरफ कुंडी, बावड़ियाँ, नए जल संरचनाओं का निर्माण, तालाब, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम, गली प्लग और बहुत से जल संरक्षण की संस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो उससे ये जो जल शक्ति के तहत जो संस्थाएं बन रही है उससे जल जीवन मिशन का स्रोत में पानी बना रहेगा, और जब जल जीवन मिशन के स्रोत में पानी बना रहेगा तो उस पानी से हम गाँव में 12 महीने लोगों को पानी पिला पाएंगे। तो मेरा बुरहानपुर की जनता से अनुरोध रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे देश में इसका नाम हुआ है, तो हम लोग पानी को सहेज के रखें, धरती के अंदर पानी को वापस जाने दें, क्योंकि जितना पानी धरती माता में होगा उतना ही हम पानी वापस ले आ पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही समझदारी से काम लेंगे और अच्छे से जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिशन में काम करेंगे।
0: लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धार और अलीराजपुर की पहाड़ियों पर जहाँ रास्ता बनाना भी एक चुनौती थी, वहाँ पानी चढ़ाना नामुमकिन लगता था। यहाँ काम आए हमारे इंजीनियर्स और सोलर तकनीक। शुद्ध जल का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नल से जल पहुँचा है वहाँ जल जनित रोगों में 40% तक की कमी आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, खंडवा।
8: पानी केवल जीवन नहीं बल्कि हर माँ की चिंता, हर बच्चे की मुस्कान और हर परिवार की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। एक समय था जब गाँव की पगडंडियों पर सिर पर मटके उठाए महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जाती थी। कई बार वही पानी बीमारियों का कारण बन जाता था। लेकिन अब घर घर पहुंचा स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नई उम्मीद भी जगा रहा है। स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है स्वच्छ जल। वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुओं, तालाबों और हैंडपंपों पर निर्भर रहे, जहां कई बार दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अर्थात हर घर जल। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। साफ पानी मिलने से जल जनित रोगों में कमी आई है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। पहले महिलाओं और बच्चियों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे। अब यह समय शिक्षा, रोजगार और परिवार की देखभाल में उपयोगी हो रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की नींव है। जब पानी साफ होता है तो भोजन स्वच्छ बनता है, हाथ धोने और साफ सफाई की आदतें बढ़ती हैं तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में खंडवा जिले में जल जनित बीमारियां जैसे एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड और कॉलरा या हैजा केसों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। एक्यूट डायरियल डिसीज के आउटब्रेक 2019 के पहले काफी संख्या में हुआ करते थे, जिसमें की लगभग 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ में जो जॉइंटिस और टाइफाइड बीमारियां हैं, इनके आउटब्रेक वर्ष 2019 के बाद से जिले में एक भी आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं किया गया है और पिछले 2 वर्षों में कॉलरा या हैजा बीमारी का भी एक भी आउटब्रेक जिले में रिपोर्टेड नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जल जनित बीमारियों की संख्या और उनके आउटब्रेक में बड़ी कमी देखी गई है। नल से जल योजना सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बन रही है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम पानी की बर्बादी रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और इस योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छ पानी की हर बूंद अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य का संदेश बन चुकी है। जब घर के आंगन में नल से साफ जल बहता है, तब बच्चों की मुस्कान, माताओं की राहत और परिवार की खुशहाली भी साथ बहती है। आइए जल को सहेजें, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ भारत के इस सपने को मिलकर साकार करें।
0: जल जीवन मिशन ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। उज्जैन संभाग में हजारों जल सखियां आज इस मिशन की रीढ़ है।
9: सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है तो अपने सभी ग्रामवासियों को सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए
10: कि हमारे वार्ड क्रमांक 1 में जो हमारे को जल कर वसूलना था उसमें से वार्ड क्रमांक 1 के 1200 रुपये आ गए हैं, वार्ड क्रमांक 2 में 790 रुपये आ चुके हैं और वार्ड क्रमांक 3 में 2780 रुपये आ गए हैं।
11: सभी को समझाइश दे रहे हैं कि जल कर अपने को जमा करना है जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनकी जो समस्या है उसके विषय में भी जो वो बताते हैं उसके निदान के लिए हम जलकर समिति को अवगत कराते हैं। जलकर समिति और हम साथ में जाकर के पानी के वेस्टेज नहीं जाने दें, इसके विषय में भी हम सभी बहनों को भी समझाते हैं, सभी भाइयों को भी समझाते हैं। पानी की बचत करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नल अगर पानी भर जाए तो बंद कर देना है, ऐसी समझाइश भी देते हैं जलकर समिति द्वारा।
12: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन भी गाँव में ये दिक्कत आ रही है, पहले से टंकी है या वाटर सप्लाई है और वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर पानी पीने में समस्या आ रही है, पानी घर घर पहुँचने में समस्या आ रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई टंकी का निर्माण करेंगे यहाँ पर।

0: इंदौर और उज्जैन संभाग के हर घर से आती पानी की ये कलकल दरअसल आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है। जहां कभी सूखे के कारण पलायन होता था, आज वहां हरियाली और मुस्कान है।
1: पहले हम कुएं से पानी पीते थे, पेट दर्द होने लग जाता था, बीमार होने लगते थे हम। नल जल का शुद्ध पानी पीने लग गए हैं, अब डॉक्टरी खर्च भी हमारा आधा हो गया है।
2: मजदूरी पहला सर जवाब तो भी नहीं था, पानी में दिन भर वही जाते, हमारे टाइम बहुत व्यस्त हो जाता पहले, और अब पानी वही गयो तो नल चालू करो, पानी भरियो और मजदूरी भी चले जावा।
3: जब से घर घर नल से जल आ रहा है तब से बहुत ही खुशहाली आ गई है, और पूरा परिवार मजदूरी पे जा पाता है और शुद्ध पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है।
0: इस मिशन का लक्ष्य था हर घर जल, जिसे मध्य प्रदेश के इन जिलों ने एक जन आंदोलन बना दिया। पर याद रखिए, ये नल की टोंटी से गिरता पानी केवल एक सुविधा नहीं, एक अमानत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, अब उस रास्ते पर जल संरक्षण के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। विकास के ये रंग यूं ही खिलते रहे, अमृत की ये धारा यूं ही बहती रहे। आज की इस विशेष कार्यक्रम डगर विकास की में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी और सहजते रहिए जीवन की सबसे अनमोल बूंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। धुन बनाई थी राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम था तुम्हारी कसम। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाती हैं देवता फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

आर डी बर्मन की बनाई धुन पर एक और गीत आपको सुनवाते हैं। इस गीत में किशोर कुमार के साथ आवाज़ है आशा भोसले की और फिल्म का नाम ये वादा रहा।

0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 8:45 होने को हैं। अगला प्रसारण कुछ ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly re-poll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jayashankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
3: On the Iran conflict, Mr. Jayashankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with the US, Israel, Iran, as well as other Gulf nations. Dr. Jayashankar also highlighted the importance of people-to-people ties and said legal mobility should not be adversely affected.
4: People-to-people ties are at the heart of our relationship. I apprised Secretary Rubio of challenges that legitimate travelers face in respect of visa issuance. While we cooperate to deal with illegal and irregular mobility, our expectation is that legal mobility would not be adversely impacted as a consequence.
3: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimensions of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. National Security Advisor Ajit Doval today met U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio in New Delhi. In a social media post, Ministry of External Affairs said the discussion focused on defense, security and strategic technology cooperation, including the Trust Initiative. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has registered a landslide victory in the re-poll for the Falta Assembly constituency. Mr. Panda won by over 1,09,000 votes in a seat widely regarded as a stronghold of the Trinamool Congress, whose nominee slipped to fourth place and forfeited his deposit. The Election Commission had ordered a re-poll in Falta following allegations of large-scale malpractice during the polling for the West Bengal Assembly elections. The re-polling was held on the 21st of this month. We have more from our correspondent.
5: Breaking the so-called Diamond Harbour model of the Trinamool Congress, BJP has set a record win in the Falta Assembly seat re-poll today. Party candidate Debangshu Panda won the seat by a margin of 1,09,021 votes, defeating his closest rival CPIM Somunath Kurmi, who has got 40,645 votes. Debangshu Panda has got 1,49,666 votes. In an astonishing turn of event, Trinamool Congress's candidate Jahangir Khan finished fourth with only 7,783 votes. Congress is in the third position. By this win, total number of seats of the Bharatiya Janata Party has increased to 208 out of 294 assembly seats in the Vidhan Sabha. Kollan Laha reporting from Kolkata.
3: The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation and repatriation in line with Ministry of Home Affairs guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. The directive instructs authorities to act as per the MHA framework on deportation and repatriation procedures for Bangladeshi nationals and Rohingyas found residing illegally in India. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, Madras and IIT Kanpur to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. Education Minister Dharmendra Pradhan today spoke with Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman to address technical and payment-related issues being faced by students during the CBSE post-result and re-evaluation process. The Education Ministry said that during the discussion, it was decided that State Bank of India, Bank of

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती माहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूदात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकत दारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नखल व हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत तआवुन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील को की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाजे के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा को

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने दिल एक मंदिर फिल्म का गाना सुना। शैलेंद्र के बोल थे शंकर जयकिशन की धुन, और इसे सुनने के लिए पत्र आप सभी ने लिखे। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु और तासु, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। इसी गीत को पसंद किया था राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन और मुकेश महाजन ने। उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा और कमल निगम। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है साहेब बीवी और गुलाम फिल्म से। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल, हेमंत कुमार की धुन और फरमाइश आप सभी की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्रा। और इसके साथ ही सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में साहेब बीवी और गुलाम फिल्म का ये नगमा।

पसंद पर, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल यादव, अनामिका अमंतिका शिवालिका पारसमणि बाघ पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। इसके साथ ही दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, हिरिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगालपुर से सालिक पुजारी। आप सभी की फरमाइश पर हम पेश कर रहे हैं दिले नादान फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। नक्श लाइलपुरी के बोल हैं और संगीत खयाम का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीति, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सिंहपुर बाड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और आशा भोसले की मिली जुली आवाज़ों में उत्सव फिल्म का गाना, वसंत देव के बोल और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं दिल्ली का ठग फिल्म का गाना, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। SH बिहारी के बोल हैं और संगीतकार हैं रवि। गीत को सुनना चाहते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश। प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, आप हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। और नेपाल पैलेस सागर के हमारे श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रोबिन। आप सभी की फरमाइश पर पेश है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गाना।

दिल्ली का ठग फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। रात के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय Pandit Hara Shankar Bhattacharya. Born in a distinguished musical family of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हर शंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग दरबारी ऑन द सितार बाय पंडित हर शंकर भट्टाचार्य। He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आपसे कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
5: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
4: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha, that is Bakrid.